मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं

आपके अपने पसंदीदा चैनल 100.1 MHz FM गोल्ड पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:38 और 54 सेकेंड। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच का रिश्ता नहीं होती। मोहब्बत अपने काम से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी जिम्मेदारियों से और सबसे बढ़कर जिंदगी से भी होती है। जब दिल में नेकी और अपनापन हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बनता है और हर दिन एक नई रौनक लेकर आता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों से सजा ये अगला नगमा, बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस गीत को अपनी बहुत ही शानदार आवाज से यादगार बनाया है किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब और शैलेंद्र सिंह ने। इन तीनों महान गायकों की ऊर्जा ने और इस अंदाज ने इस गीत को एक अलग रंग दिया है, एक अलग ताजगी बख्शी है। तो आइए इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट, सकारात्मक सोच और दिल में मोहब्बत के इस एहसास के साथ करते हैं। कहते हैं हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका एक अच्छा लफ्ज, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची दुआ किसी की पूरी सुबह खूबसूरत बना दे, पूरा दिन खूबसूरत बना दे। मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और इसलिए अपने अल्फाज में मिठास रखिए, अपने व्यवहार में अपनापन और अपने दिल में उम्मीद। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं इस बेहद खूबसूरत परवरिश फिल्म के नगमे के साथ।

मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए भोर सुहानी से इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। सुबह के 5:53 और 35 सेकेंड हुए हैं। हमारे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं, ये वक्त है कि हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज हमारे साथ इस सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित्र मानस गान बालकांड भाग 104 आप सुनेंगे, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। 6:55 का समय होगा संस्कृत में समाचार का और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सात बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे योग पर आधारित कार्यक्रम। और उसके पश्चात आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है, 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे, वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country's first cooperation-based taxi service, Bharat Taxi, in Gujarat today. Bharat Taxi is a digital mobility platform based on the principles of cooperation, which gives shape to the concept of Sarthi Hi Malik. Under this model, taxi drivers are not merely service providers but are also participants and owners of the platform, enabling them to receive the benefits of economic empowerment, social security and ownership. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India-UK ties are moving towards a defining milestone with the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the business plenary session in London yesterday, Mr. Goyal said that it was heartening to interact with leaders from across sectors, united by a shared belief in the immense opportunities that lie ahead. He also invited businesses across both nations to deepen engagement, accelerate innovation, and invest with greater ambition for shared prosperity as CETA opened new frontiers for growth. In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making destruction more severe. The country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry said in a statement that as part of the operation, 2 Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday, carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts. The relief consignment included a self-reliant Indian Medical Task Force, an Indian Army Field Hospital unit with HADR pallets and medicines, 30 tons of relief supplies, 6 tons of medicines and medical equipment, and 2 Bhishma Cube portable hospitals. U.S. Secretary of State Marco Rubio announced a U.S.-mediated framework agreement between Israel and Lebanon aimed at achieving lasting peace and security. The proposed deal includes a ceasefire, contingent on Hezbollah, halting all attacks and withdrawing from southern Lebanon. Announcing the framework, Rubio described the agreement as the first step toward restoring stability while acknowledging that the path ahead would be challenging but equally vital. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. After Abubakar gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with 7 different goal scorers. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added 4 more goals in the third. Dilpreet Singh completed the rout with a goal in the fourth quarter. India will next face England tomorrow. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, US. Ousmane Dembele scored a first half hat-trick, helping France to finish at the top of the Group 1. In another Group 1 fixture, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. This big win keeps Senegal in contention of reaching last 32 as one of best third-place teams. And that is the end of this news bulletin.

6:11:55 100.1 MHz पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। ये समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का। शनिवार की सुबह सुनीता है आपके साथ। नमस्कार, सुप्रभात।

स्वामी रामतीर्थ ने कहा, जब तक दोष ही देखने की आदत मौजूद है तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यंत कठिन है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय नोट कर लें 6:32:52। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण लेकर साथ हूं मैं सुनीता।

परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान बालकांड से एक अंश, और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 6:54 और 12 सेकंड, यानी अब समय है कि हम जाने देश

0: चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। आइए अब सुनते हैं योग पर आधारित हमारी विशेष श्रृंखला आज का आसन, जिसमें आज बात वक्रासन की।

0: चौखन का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, संस्कृत में योग का अर्थ है जोड़ना, जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का केवल एकमात्र माध्यम है। जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। परंतु अगर हम आजकल के जीवन शैली को देखें, जो कंप्यूटर, मोबाइल, जंक फूड पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है और तनाव वातावरण में भी ग्रस्त होती जा रही है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में एक विकार का रूप ले रही हैं और मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ करती जा रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे आप योग अभ्यास से डायबिटीज यानी मधुमेह को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और यह देखा गया है कि प्री डायबिटीज के केसेस में योग अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनती जा रही है। आजकल के तनाव ग्रस्त आधुनिक जीवन शैली इस समस्या को और अधिक जटिल करती जा रही है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको अपने जीवन शैली में योगासन, प्राणायाम व ध्यान को जोड़ना अति आवश्यक हो गया है। डायबिटीज यानी मधुमेह को कंट्रोल में लाने के लिए आपको योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन, चाहे सुबह या शाम को, जब भी आपको समय लगे, योग अभ्यास अवश्य करें। योग अभ्यास में आप कपालभाति, डायबिटीज की समस्या के लिए आप कपालभाति, पश्चिमोत्तान आसन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन या नाड़ी शोधन प्राणायाम इत्यादि अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको इस एपिसोड में वक्रासन अभ्यास बताऊंगी कि किस प्रकार आप वक्रासन कर सकते हैं। वक्रासन के लिए अपने आसन पर दोनों पैरों को सामने की ओर ले आए और दंड आसन की स्थिति में बैठ जाए। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें या फिर हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और हथेली को जमीन पर टिकाएं, जब तक कि पीठ आपकी सीधी ना हो जाए। अब श्वास को बाहर छोड़ें और शरीर को दाएं तरफ घुमाएं। वक्रासन की स्थिति में अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का प्रयास करें और इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने शरीर को पुनः स्थिति में वापस ले आए और श्वास छोड़ते हुए शिथिल हो जाए। अब इसी अभ्यास को आपको दूसरी तरफ यानी बाएं तरफ भी करना है। यह आसन पैनक्रियास की कार्य क्षमता को बढ़ाने में और मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। यदि आपको ज्यादा कमर दर्द है या कमर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो यह आसन ना करें। दोस्तों, जब भी हम योग अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हर अभ्यास को पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे योग पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आज का आसन।

100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम गोल्ड 27 जून की बेहद खास सुबह, क्योंकि यही वो तारीख है जब एक ऐसे जीनियस ने जन्म लिया है जिसने हिंदी फिल्म म्यूजिक को एक अलग लय तान पहचान दी। गोल्ड सुप्रभात की शुरुआत एज अ कंपोजर उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब के उस गाने के साथ जो कि राग मालगुंजी में है, और इस गाने को जब उन्होंने कंपोज किया तो उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। एंजॉय करते हैं गाना।

लता मंगेशकर जी की आवाज और म्यूजिक आर डी बर्मन यानी हमारे पंचम दा का। और जब हम बात करते हैं पंचम दा की ना, तो बहुत सारे गाने हमें याद आते हैं। 1939 में 27 जून को जन्म हुआ पंचम दा का, और इतने सारे लोकप्रिय गाने उन्होंने कंपोज किए जो एक से बढ़कर एक हैं। अब जैसे कि हम बात करें 1960 से 90 तक के दशक का, जिसमें उन्होंने 331 फिल्मों में संगीत निर्देशन किया, गाने गाए भी और म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट्स भी किए।

जैसे कि ये जो गाना है इसकी शुरुआत जब हुई तो उसमें आप नोट कीजिएगा कि उन्होंने जो म्यूजिक क्रिएट किया है वो एक कंघी से किया है। ध्यान से सुनिएगा इस गाने को।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: गोल्ड सुप्रभात पर आज छाया है जादू RD बर्मन का। ये है आकाशवाणी FM गोल्ड। दिल का मौसम पंचम में है और बाहर मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 33 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। एंजॉय करते रहे रेट्रो RD म्यूजिक सुनीता के साथ।

0: लेकिन अभी समय है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का, आइए सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार। कहते हैं सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर आती है ना, तो अपने साथ उजरे कल की कुछ यादें और आने वाले कल की कुछ उम्मीदें लाती हैं। एक बेहद हसीन सुबह का सलाम आप सबको। मैं हूं आपका दोस्त नवीन सक्सेना और अपने साथ आज लाया हूं तन्वी खुराना को, और हम दोनों के साथ इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो का सबसे खूबसूरत कोना आज सवेरे।
1: Yes, absolutely. This is our wonderful program, News Magazine program, Aaj Savere, and we have a lot in store for all of you, be it national or international news, Metro City updates, some historical information related to this particular day, that is 27th of June 2026, and much more. So good morning and a very warm welcome to all of you. And today is Saturday, so just want to wish you a very happy Saturday and a very happy weekend.
0: और आज की इस खुशनुमा सुबह में एक मखमली एहसास भी है तन्वी, क्योंकि आज का दिन जुड़ा है उस हस्ती से जो कहता है चुरा लिया है तुमने।

0: सो विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आज सवेरे, जहां देश विदेश की खबरें, आपके शहर का मौसम, मिजाज और खेलों का पन्ना। सबसे पहले बात सेशल्स यात्रा की, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भी भाग लेगी।
1: In Venezuela, death toll in 2 powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. India has launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. External Affairs Ministry in a statement said, as part of the operation, 2 Indian Air Force C-17 Globemaster aircraft departed for Venezuela yesterday carrying humanitarian relief supplies and a 41-member rescue team to assist the ongoing relief and rescue efforts.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है।
1: Jammu and Kashmir Police have launched Project Hawkeye, a tech-based surveillance system to monitor the Amarnath Yatra route round the clock ahead of the pilgrimage starting from 3rd of July. Police, along with the CISF and BSF, carried out long-range patrolling in the Arnia border belt covering Rathna, Salehar, Chakjaktu and adjoining areas to strengthen border surveillance and deter anti-social activities. Security forces are carrying out mock drills and joint exercises across the region to test emergency response. In another round of security strengthening, forces conducted patrols, area domination exercises and vehicle checks in sensitive border and highway areas including Arnia, Bishnah, Miran Sahib and parts of the Jammu Srinagar National Highway. These measures aim to ensure the safe and smooth conduct of the Amarnath Yatra.
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत होगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
2: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस कार्यक्रम को आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो कल सुबह ट्यून कर सकते हैं 9:10 पर।
1: And moving towards sports, in FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Centre in London last night. Abu Bakr gave Pakistan the lead in the first quarter, converting a penalty corner. India had 7 different goal scorers in the match. Sukhjeet Singh and Harmanpreet Singh turned the tide against Pakistan with a goal each in the second quarter, before Hardik Singh, Jagraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal found the back of the net to add 4 goals in the third quarter. Dilpreet Singh hammered the last nail in the coffin in the fourth quarter and India will now face England tomorrow.
0: और अब बात फीफा विश्व कप की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप ई में शीर्ष पर आ गया है। नॉर्वे राउंड 32 में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल इस अंतिम राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। वहीं इस समय उरुग्वे का सामना स्पेन से और केप वर्दे का सामना सऊदी अरब से हो रहा है। तो यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अरब आपके शहर की खबरें, तो तन्वी कहां से शुरू कर रही है?
1: लेट्स बिगिन विद चेन्नई। इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन क्लीन एनर्जी विद द इनॉग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी बेस्ड ऑन द कॉपर क्लोराइन थर्मोकेमिकल साइकिल यूजिंग न्यूक्लियर प्रोसेस हीट। द फैसिलिटी सेट अप एट द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कलपक्कम वॉज इनॉग्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेक्रेटरी डॉ अजीत कुमार मोहंती। Developed jointly by Bhabha Atomic Research Center, BARC, and IGCAR, the plant demonstrates the use of nuclear energy for carbon-free hydrogen production. It will help improve the technology and support future large-scale commercial hydrogen production.
0: Baat Delhi ki. दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कल एक फर्जी गैस कनेक्शन और डिस्कनेक्शन धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को झारखंड और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जनकल्याण से जुड़े कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय खेल महासंघ के बीच एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिल्ली के शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद की उपस्थिति में किया गया यह समझौता अगले वर्ष आयोजित होने वाली ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय रेसलिंग प्रतियोगिता और ISF अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी के संबंध में हुआ है।
1: And moving towards Bangalore, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has announced the full reopening of jungle safaris at Bandipur and Nagarhol National Parks after a technical committee approved regulated tourism based on the park's carrying capacity. The move is expected to promote ecotourism, create local jobs and also boost the economy while ensuring wildlife conservation. And some more news from Bangalore itself. The fifth edition of the Maharaja Trophy T20 tournament will begin in Hubli today. Shivmoga Yodhas will face Kalyani Bangalore Blasters in the first match, followed by Mysore Warriors taking on Gulbarg Mystics. Kalyani Bangalore Blasters currently lead the points table with 6 points from 4 matches.
0: Rukh karte hain Mumbai ka. महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने अधिकारियों और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार आशा कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों तक करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने को कहा है, जिनकी मासिक आय 21,000 रूपये से कम है। इस प्रस्ताव में अन्य कम आय वाले श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान

0: करने के लिए विचार किया जाएगा। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि आगामी सभी प्रारंभिक परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। आयोग का लक्ष्य परिणामों की घोषणा 21 दिनों के भीतर करना और भर्ती प्रक्रिया को उसी वर्ष पूरा करना है।
1: And about Hyderabad, thousands of people took part in the annual Bibi Ka Alam procession on Yom-e-Ashura, marking the 10th day of Muharram and remembering the martyrdom of Hazrat Imam Hussein in the Battle of Karbala. The city saw prayers, religious gatherings and charity activities including food and drink distribution for the needy and visits to hospitals and old age homes by volunteers. Large crowds gathered along the route and smaller processions joined the main event. Officials and community members offered respects to the holy relic at various points. Police Commissioner V.C. Sajjanar also paid tribute near Char Minar. Police made strong security and traffic arrangements to ensure the event went smoothly.
0: बात कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो वरिष्ठ अधिकारियों को अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए आवश्यकता अनुसार साप्ताह अंत और सार्वजनिक अवकाशों पर भी कार्य करें। रोस्टर प्रणाली से कर्मचारियों की न्यूनतम उपस्थिति सुनिश्चित होगी और आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों में भी इसी प्रकार के नियम लागू किए जा सकते हैं। तो ये थे आपके शहर की खबरें। तन्वी अब रुख करते हैं देश के उन शहरों की तरफ जहां आज आसमान खुद अपनी कहानी लिख रहा है।
1: सो लेट्स बिगिन विद चेन्नई। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और इवन थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम ऑफ 29 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 39 डिग्रीज सेल्सियस। बेंगलुरु विल एक्सपीरियंस अ जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 डिग्रीज व्हाइल द मैक्सिमम मे रीच 31 डिग्रीज सेल्सियस। नाउ Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 31 degrees Celsius.
0: और तन्वी दिल्ली मुंबई और कोलकाता की भी कहानी लगभग लगभग ऐसी ही है। दिल्ली की सुबह आज थोड़ी मेहरबान है। तपती धूप के बाद आसमान में मखमली बादलों का हल्का सा डेरा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह तो ऐसा ही है और ऐसा लगता है कि दिल्ली की सूखी सड़कों को और बहुत जल्द बारिश मिलेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 के आसपास रहेगा। मुंबई का रुख करें तो आसमान आज खुलकर बरस रहा है। समंदर में ऊंची लहरें और खिड़की पर पड़ती बारिश की बूंदें। मुंबई की सुबह पूरी तरह से रोमांटिक है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं अपनी छतरियां साथ ले जाना ना भूलें। अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 27 डिग्री। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय। हुगली नदी के किनारे धुंध की पतली सी चादर। कोलकाता में भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला और आज की सुबह शहर को एक पुराना विंटेज लुक दे रही है तन्वी, जहां पर नुक्कड़ पर चाय के कुल्लड़ से उठता हुआ धुआं मौसम को और हसीन बना रहा है। बहरहाल सुबह सुबह की चाय हम दिल्ली में भी दिल्ली के खुशनुमा मौसम में एक सिप में और तन्वी तो ले ही चुके हैं विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो हमने आज आपके लिए निकाले हैं। और कुछ ताजातरीन इतिहास के पन्नों में जब आप झांकेंगे वो हमने इतिहास चाय की चुस्कियों के साथ ही ढूंढा है ना तन्वी?
1: Absolutely, what a beautiful day and what a beautiful description by you, Naveen.
0: बहरहाल अगर आप कोलकाता में इस समय हैं तो then you will feel 27 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहेगा। और बातें इतिहास की, लेकिन उससे पहले आज का दिन क्यों है खास?
1: Absolutely, today is 27th June as we all know, but every year 27th of June is celebrated as Micro, Small and Medium Sized Enterprises Day, that is MSME Day. And this day was established by the United Nations General Assembly, that is UNGA, to recognize the tremendous contribution of small businesses to local economies and global sustainable development goals. The theme for this particular year is empowering MSMEs through innovation and sustainable industrial development that emphasizes strengthening MSMEs through innovation, digital transformation and also sustainable practice.
0: और तन्वी, भारत में एमएसएमई अर्थव्यवस्था का एक वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीडीपी, विनिर्माण, निर्यात और रोजगार में

0: महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन्हें कई सरकारी योजनाओं के माध्यम से समर्थन भी दिया जाता है। वहीं आज है वर्ल्ड पीटीएसडी अवेयरनेस डे, यानी पीटीएसडी जागरूकता दिवस, जो आज ही के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, और ये एक गंभीर मानसिक स्थिति है जो किसी आघातपूर्ण घटना का अनुभव करने या उसे देखने के बाद व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसा अक्सर होता है तन्वी, अगर आपने कोई एक्सीडेंट देखा, अगर हिंदी का शब्द हम यूज करें तो बहुत भीषण एक्सीडेंट आपने देखा, तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां पर होता, अगर मैं ऐसा होता, then I think this is called the post traumatic history, जिसे कहते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर, और शायद उससे उभरने के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह की स्थिति आजकल चल रही है स्ट्रेस की, उसमें ये लोगों को बहुत आसानी से पीड़ित कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली, एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, ईदर डू योग और मेडिटेट और डू समथिंग और द अदर, एंगेज योरसेल्फ एंड बी हैप्पी, जस्ट मेक श्योर दैट नथिंग गिव्स यू स्ट्रेस और एंग्जाइटी your depression, stay away and stay yourself, keep yourself calm.
0: Stress, anxiety and depression, इन तीनों से निकलने का एक ही रास्ता है, योग and meditation. बहरहाल चलिए अब इतिहास में कुछ और पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का दिन क्यों खास है।
1: Let's begin with the year 1898 when Canadian sailor Joshua Slocum successfully completed the world's first solo circumnavigation of the globe, arriving in Nova Scotia after a historic 3-year sea journey.
0: आज ही के दिन सन 1923 में विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई थी, जब कैप्टन लॉवेल एच स्मिथ और लेफ्टिनेंट जॉन पी रिक्टर ने दो DH-4B द्विपंखी विमानों के बीच हवा में पहली बार सफलतापूर्वक ईंधन भरकर लंबी दूरी की उड़ानों को एक नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया था।
1: इन द ईयर 1940, आफ्टर 6 इयर्स ऑफ यूजिंग द सोवियत 6-डे कैलेंडर, द USSR रिटर्न टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड ऑफिशियली रिस्टोर्ड संडे एज द वीकली डे ऑफ रेस्ट।
0: 1954 आज ही का दिन सोवियत संघ ने मॉस्को के पास ओबेंसिक में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आधिकारिक तौर पर शुरू किया था, जिसने नागरिक ग्रिड को बिजली की आपूर्ति की थी।
1: इन द ईयर 1967 द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन व्हिच वी कॉमनली नोन एज ATM वाज ऑफिशियली इंस्टॉल्ड एंड ओपन्ड टू द पब्लिक बाय बार्क्लेज बैंक इन एनफील्ड लंदन।
0: वैसे तन्वी, वो दिन भी क्या खूब रहा होगा ना 1967 में, जब लोगों ने मशीन से पैसे निकलते हुए देखे होंगे।
1: Absolutely a revolution that came.
0: और अब ये इतना आसान और इतना कॉमन हो चुका है कि शायद लोगों ने बैंक जाना छोड़ दिया है। 2008 आज ही के दिन 22 वर्षों के गौरवशाली अंतरराष्ट्रीय खेल करियर के बाद भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने आधिकारिक रूप से फिडे रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 का स्थान हासिल किया था।
1: That also was a very proud day for all the Indians and for all the chess lovers.
0: बिल्कुल।
1: And in 2015, based on the discovery of British scientist Robert Edwards, an international medical guideline was issued to make the world's first test tube baby, that is IVF, which is commonly known as in vitro fertilization technology, safer.
0: तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब याद करते हैं उन महान व्यक्तियों को जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं और जिन्हें हम याद कर रखे हैं। सबसे पहले बात शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की। आज के दिन 1839 में सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा था। शेरे पंजाब क्यों कहते थे? क्योंकि वो एक ऐसे राजा थे जिनकी केवल एक ही आंख थी, लेकिन खौफ ऐसा था कि अंग्रेज उनके जीते जी कभी पंजाब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और कहते हैं कि लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर उनके मुकुट की शान था।
1: एब्सोल्युटली। एंड द नेक्स्ट पर्सन इन आवर सेलिब्रिटी लिस्ट इज Helen Keller. I'm sure each and every one of you has heard this name, Helen Keller. She was not just an American author, she was not just a political activist or a lecturer, she was much more than that. She was also a disability rights advocate. Born in West Tuscumbia, Alabama, she lost her sight and her hearing after a bout of illness when she was only 19 months old. She then communicated primarily using home signs until the age of 7.

0: But when she met her first teacher and lifelong companion, Anne Sullivan, everything changed. Anne Sullivan taught Helen Keller a language that included reading and writing, which was new for her and for her parents as well. And after an education at both specialist and mainstream schools, Helen Keller attended Radcliffe College of Harvard University and became the first deaf-blind person in the United States to earn a college diploma. We have a portion of her speech that was reenacted by Anne Sullivan, and this is when she was honored in 1925. So let's just hear a portion where she herself is talking.
1: Dear lions and ladies, I suppose you have heard the legend that represents opportunity as a capricious lady who knocked on every door but once, and if the door isn't opened quickly, she passes on never to return. And that is as it should be. Lovely, desirable ladies won't wait. You have to go out and grab them.
0: Helen Keller, she has written 14 books and hundreds of speeches and essays on the topics ranging from animals to even Mahatma Gandhi. And since 1954, it has been operated as a house museum and sponsors her own birthplace, and an annual Helen Keller Day is also celebrated.
2: और अब बात करते हैं हमारे आधुनिक भारत के सबसे बड़े रॉक स्टार से, एक फील्ड मार्शल सैम बॉनेकशॉ की, जिनका आज ही के दिन 2008 में निधन हुआ था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले सैम बहादुर जितने जांबाज थे, तन्वी उतने ही हाजिर जवाब थे। जब उनसे युद्ध की तैयारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीना तानकर कहा था, आई एम ऑलवेज रेडी। उनकी इसी बेबाकी और बहादुरी के किस्से आज भी हमारी सेना की रगों में जोश भरते हैं। हिंदी फिल्म भी उन पर बन चुकी है, उसी के एक डायलॉग हम आपके लिए लेकर आए हैं, सुनते हैं।
3: याद रहे, हम सोल्जर्स हैं, जंग में नजर सिर्फ दुश्मन पर, किसी के माल असबाब पर नहीं। मेरा एक भी सोल्जर किसी भी औरत को हाथ नहीं लगाएगा। सोल्जर से पहले हम जेंटलमैन हैं। आज मैं आप सबको गौर से देखने आया, आप सबको सल्यूट करने आया। लड़ाई के बाद शायद आप में से कुछ चेहरे ना दिखे। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।
0: And today is the birthday of Tobey Maguire. I think you must be wondering who this particular person is. So let's tell you.
4: Who are you?
5: You know who I am.
4: I do.
5: Your friendly neighborhood Spider-Man.
0: You heard it. He is the Spider-Man. He is the Spider-Man, the actor and the film producer. He was there in the Spider-Man 1, Spider-Man 2, 3 and even the Spider-Man No Way Home. Not just that, you must have seen him in The Great Gatsby, Brothers, The Good German, Seabiscuit and much more. Let's hear a portion of his interview.
6: I think I can especially relate to Spider-Man because I feel like a superhero in general in my life. No, I think he's a great character, and then one of the main themes, which is with great power comes great responsibility. Every day that I wake up, I have a responsibility to myself and to others.
2: तन्वी, आज का दिन भारतीय संगीत के इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि आज जन्मदिन है उस फनकार का जिसने हमें मोहब्बत को महसूस करना सिखाया। संगीत के दीवानों के लिए आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि आज जन्मदिन है उस जादूगर का जिसने भारतीय संगीत को रॉक, पॉप और जैज का तड़का दिया। बात राहुल देव वर्मन यानी पंचम दा की, जिन्होंने धुन को एक नया सलीका दिया, नया मिजाज दिया। बहुत से गीत हैं जो उन्होंने कंपोज किए हैं, किसको भूलें किसको याद करें समझ नहीं आता। हालांकि मौसिकी उन्हें विरासत में मिली थी, पिता एसटी बर्मन बहुत बड़े संगीतकार थे। लेकिन आज इस हसीन सुबह को और भी खुशनुमा बनाते हैं पंचम दा के बहुत चुनिंदे हुए गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक मैट्री बनाई है और उम्मीद करते हैं आज ही आपका दिन जरूर बना देंगे।

0: यादों का कारवां, मौसम की नजाकत, पंचमदा के सुर, नितिन मुकेश की आवाज, उम्मीद है आज की सुबह आपके दिल को छू गई होगी। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभाता हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित

0: आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में 8 से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
5: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले

0: ट्वेंटी क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद-ए-बाहमी के

0: कर्मकाजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। एफआईएच मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में दो बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हार्मिनी से बातचीत करेंगे और दो तरफा ताउन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अलाक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता है। बोहरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वजीर आजम के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेन्द्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है जिसकी वजह से ज्यादा माली फायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। यह सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं और यह सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वज़रा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर ओहदेदार और माहिरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निजाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के आवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आरजी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के आवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगमील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदु किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुस में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीज का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी माहिदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना

0: और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस मुआहिदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि यह पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला, माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के एफआईएच प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मैक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। यह मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमरीका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए दो T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजी खारजा ए जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चोहियोन के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने के अज्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी और दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वजीर आजम के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है, जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासिर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और एफआईएच मर्दों के प्रोलीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड, जानी पहचानी ये फ्रीक्वेंसी है 100.1 मेगाहर्ट्ज। वैसे हम आपके फोन और लैपटॉप पर भी आपके साथ हैं पूरा दिन। 8:46 और 6 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली की लेकर हाजिर हूं मैं सुनीता।

संगीतकार राहुल देव बर्मन जी को उनका तीसरा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इसी फिल्म के लिए। जुलाई 1994 में ये फिल्म रिलीज हुई। 1942 अ लव स्टोरी पर पंचम इस फिल्म और इसके संगीत की सफलता देखने से पहले ही 4 जनवरी 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका म्यूजिक आज भी हिट है और उनकी आवाज अनमैच्ड।

0: ये फिल्म थी सनम तेरी कसम और ब्यूटीफुल म्यूजिक और दमदार आवाज आर डी बर्मन की। एक छोटा सा विराम लेते हैं फिर वापस आते हैं।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

0: हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आठ बजकर 56 मिनट और 20 सेकंड हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और सुनीता है आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली के साथ और मुलाकातों, बातों और यादों का सिलसिला जारी है।

सो नाउ इट्स टाइम टू से गुडबाय। सुनीता फिर मिलेगी बातों और गीतों के साथ नेक्स्ट सैटरडे। अब समय हो चला है समाचार का, तो आप जानिए देश दुनिया का हाल और जुड़े रहिए FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में दो सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना

0: शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताज शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। भारत का कल मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 2 बार का विश्व विजेता उरुग्वे ग्रुप एच के अंतिम मुकाबले में स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर राउंड 32 में पहुंच गया है। इससे पहले ग्रुप आई के मैच में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermine, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch

नजारों का मजा लीजिए, आप बहुत अच्छे से अपने सफर को तय कीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि अगर आप अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका वाहन इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आपका पोल्यूशन चेक जो है वो समय समय पर होते रहना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका होता है सफर को सुकून से पार करने का, तय करने का, कि आप ये सब चीजें अपने पास रखें और हमारे साथ धीमे धीमे प्यारे प्यारे गाने सुनते हुए अपने सफर को तय करें। और हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं ऊपर, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट गाड़ी का, और पोल्यूशन कंट्रोल चेक जो है ये इसका सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए और अपडेट होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए, है ना। तो सफर का मजा लीजिए और अपने आसपास ध्यान से देखते हुए ड्राइव

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अमोरे मियो दोवे साई तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

मोहब्बत की कहानी को जितने आर्टिस्टिक तरीके से बयां किया जाता है ना, उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और ये संगीत के माध्यम से भी हो सकता है, ये कला के माध्यम से हो सकता है। मतलब कला कई प्रकार की होती है ना, कई बार हम अपनी बातों को शब्दों में बताते हैं, कई बार चित्र के माध्यम से बताते हैं, कई बार अपनी सिलाई कढ़ाई बुनाई इसके माध्यम से ही बनाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कला के माध्यम से हम तक जब पहुंचती हैं तो सीधे दिल में उतरती हैं, है ना। खूबसूरत सी साड़ी अगर हम पहने और अपने आंचल को लहरा कर एक खूबसूरत सा चित्र उस पर दिखाकर अपने दिल की बात को बयां करें, तो ये भी कोई कम इफेक्टिव, कम प्रभावी नहीं होता, है कि नहीं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम ये उन कलाकारों के लिए है जो अपनी कला को संजो कर रखते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दस्तकार, कारीगर जो कला का काम करते हैं, उनको सशक्त करना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, उनकी कला को बाजार तक पहुंचाना और वोकल फॉर लोकल के तहत उसको विकसित करना, ये इस योजना का, इस कार्यक्रम का जो है वो मेन उद्देश्य है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कंपनीज में काम करने वाले जो कारीगर हैं, दस्तकार हैं, वो किसी भी प्रकार की कला से अपने प्रेम की कहानी बता रहे हों, जता रहे हों, मतलब चाहे वो प्रिंटिंग कर रहे हों, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर रहे हों, चाहे वो कपड़े को सजा रहे हों, या फिर किसी दूसरे आर्टिस्टिक पीस पर अपनी कला दिखा रहे हों, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और उनको बाजार मिलना चाहिए ताकि वो अपनी चीजों को हम तक पहुंचा सकें, है कि नहीं। इसमें ना अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना जो है वो बहुत कारगर है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जितने भी कारीगर हैं ना, उनको ग्रुप में इकट्ठा कर लेते हैं या फिर कंपनीज के हिसाब से कि इस कंपनी के इतने जो वर्कर्स हैं वो आ जाएंगे या कारीगर जो है वो आएंगे, उनको डिजाइन और उनको अलग अलग टेक्निकल एजुकेशन देना, डिजाइन सिखाना, उनको टूल किट्स जो है वो उपलब्ध कराना, ये इसमें होता है अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना में। कौशल विकास होता है, यानी गुरु शिष्य परंपरा, और इस तरह से उनको सिखाना प्रोफेशनल्स के जरिए, और फिर आधुनिक बाजार के अनुकूल उनकी चीजों को बनाना, कला को समय समय पर मॉडर्न करते रहना भी बहुत जरूरी होता है ना, जितना उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट करना, देश विदेश से जो है मेले प्रदर्शनियां उनको आयोजित करना और कारीगरों को वहां तक पहुंचाना, उनकी कला को वहां तक पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देख सके, मार्केटिंग जो है वो अच्छी हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी होता है, मतलब इंडिया हैंडमेड नाम से ई कॉमर्स पोर्टल भी चलाया जा रहा है इन्हीं कारीगरों के लिए। तो इतना सब कुछ किया जा रहा है ताकि हमारी कला हमेशा जिंदा रहे, और जब हम उस कला से जुड़ी चीजों को पहनते हैं या अपने सजावट के इस्तेमाल में लाते हैं तो फिर हमारी मोहब्बत का इजहार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और प्यार जो है वो कुछ चरम पे पहुंच जाता है।

मोहब्बत कभी बंद नहीं हो सकती, वो हमेशा चलती रहती है एक सी एक फ्लो में, एक गति के साथ सबके लिए, क्योंकि ये वो एहसास है जो सबको होता है कभी ना कभी अपने जीवन में। अब आज का जो दिन मनाया जाता है ना, जैसे कि अभी हमने कारीगरों की बात करी थी कि जितने भी कारीगर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की योजना है, इसी तरह से सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के जो उद्यम हैं उनको भी अपनी मोहब्बत प्रदान करती है हमारी सरकार और पूरा विश्व। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो कुल व्यवसाय हैं इस तरह के, इनको कहा जाता है MSME, और आज MSME डे है, आज MSME दिवस है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस। 90% से अधिक MSME है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, और वैश्विक रोजगार का लगभग 60-70% हिस्सा प्रदान करते हैं ये, इसलिए इतने खास हैं और इसीलिए इनका दिन मनाया जाता है। भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है MSME, GDP में भी अपनी खास भूमिका निभाता है MSME, इसलिए बहुत बहुत बहुत खास हम सबके लिए। और इनको आगे बढ़ाने के लिए, जो छोटे हैं, लघु हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं या मध्यम आकार के हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण, सब्सिडी, ये सब सरकारी योजनाएं जो है वो चलाई जाती हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर खास मैं नाम बताऊं ना, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ये है, कॉलेट्रल यानी गिरवी के लोन की सुविधा जो है वो भी इसको मतलब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। और जो भुगतान होते हैं ना MSME के, जो लोन लेते हैं या फिर किसी भी प्रकार से पैसा लेते हैं बैंक से या दूसरी सरकारी संस्थानों से, तो उन्हें 45 दिन का जो है वो नया नियम लागू किया गया है कि भुगतान सुनिश्चित करने के लिए। ये सब चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि ये जो हमारे छोटे लघु सूक्ष्म और मध्यम आकार के जो उद्योग हैं MSME के अंडर जो आते हैं वो आगे बढ़ सकें और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो और मजबूत हो सके और हम गर्व से कह सकें कि हमारे जितने भी MSME क्षेत्र के जो भी व्यवसाय इसके अंडर आते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: समय मिला लीजिए 9:44 हो गए हैं। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी। मैं भावना संजीवा।

माई के जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वो सारे काम करती रहती है और आप कुछ भी हाथ नहीं बटाते, है ना। वैसे कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण होता है कि नहीं। इसलिए चलिए हर दिन की शुरुआत एक अच्छी बात के साथ आज प्रण लेते हैं कि पूरा दिन अपने काम समय के साथ निपटाते चलेंगे। ऐसा करने से दो फायदे होंगे, एक तो सारे काम निपट जाएंगे और दूसरा अगले दिन पर टालने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और हाँ, एक बात और, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे वाह, हम तो एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके साथी के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो पराकाष्ठा पर पहुंचेगा और आपके साथी के हृदय में प्रेम बढ़ जाएगा और वो प्रेम में मदहोश होकर अगर मायके गया है आपका साथी तो वापस आ जाएगा।

आज 27 जून है और आज बहुत सारे खास दिन मनाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया, आज महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि भी है। सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे और शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं फटकने दिया था। उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और अमृतसर के हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से हम जानते हैं, उसको सोने की परत से सजवाया था। उनकी बरसी के अवसर पर हर साल सिख श्रद्धालुओं का एक जत्था जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से उनकी समाधि पर प्रार्थना करने जाता है।

जी हाँ, हम और आप साथ साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स, ये प्रोग्राम लेकर मैं भावना आपके साथ रहूंगी। ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868686853। इस पर आप हमें अपने संदेश लिखकर भेज सकते हैं, हम जरूर शामिल करेंगे और आपकी पसंद के गीत सुनवाएंगे। तो 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम में मैं भावना साथ रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्बनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी।

0: शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रखे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
1: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला रविवार को होगा। वहीं फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बयाना ने स्पेन के लिए विजयी गोल किया। ग्रुप एच में काबूवेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबूवेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement ahead of his 3-day visit to Seychelles, Mr. Modi said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared diplomatic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural and people-to-people ties. As a key maritime neighbour in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in this program. Secretary, Department of Atomic Energy, Ajit Kumar Mohanty has inaugurated the world's first hydrogen production facility based on the copper chlorine thermochemical cycle, utilizing the nuclear process heat generated from the fast breeder test reactor at the Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalapakkam. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a productive roundtable interaction with the Asia House and senior executives from leading global firms in London. During the meeting, discussions on strengthening economic ties and exploring future opportunities were deliberated. In a social media post, Mr. Goyal said that India and the United Kingdom are poised to deepen their economic partnership through the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude, both occurring close to the surface, making destruction even more severe. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran overnight. Meanwhile, Iran's state news agency reported that Islamic Revolutionary Guard Corps Navy has announced that it had targeted U.S. military positions in the region in retaliation for American airstrikes against Iranian coastal areas. In the FIFA World Cup 2026, two-time world champion Uruguay knocked out of tournament after losing 1-0 to Spain in the final Group H clash at Guadalajara Stadium in Mexico this morning. In the another Group H fixture, tournament debutants Cabo Verde advanced to the round of 32 after a goalless draw with Saudi Arabia at Houston Stadium in United States. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी, मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की तीन दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और महासागर दृष्टिकोण तथा विकासशील देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार बताया है। 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध आपसी विश्वास और लोकतांत्रिक

0: मूल्यों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि सेशल्स की राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों की व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। विश्व दर्पण के लिए मृगनयनी पांडे।
0: परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन होने पर इसके गंभीर परिणामों का पता चलेगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि अमरीका के हवाई हमलों के जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल-फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि ईरान माकूल जवाब देने के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्लाह को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते

0: की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इस शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 963 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 672 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ये वृद्धि मुख्य रूप से सोने के भंडार में वृद्धि होने से आई है। भारत में सोने का भंडार 4.1 बिलियन अमरीकी डॉलर बढ़कर 107 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर रहा। खेल के 42वें मिनट में एलेक्स बायना ने स्पेन के लिए विजयी गोल दागा। ग्रुप एच के अन्य मुकाबले में काबो वेर्दे सऊदी अरब के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में पहुंच गया। इससे पहले ग्रुप आई में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर रहा। नॉर्वे 6 अंक के साथ अगले राउंड में पहुंच गया। सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथी होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से कल मुलाकात की। श्री प्रधान ने बताया कि चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना, 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी। मृतकों की संख्या 920 हुई। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में ईरान पर फिर हमले किए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे स्पेन से 0-1 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपके दिल की बातें हम करते हैं, आपके ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हम शामिल करते हैं। तो हमारा ईमेल आईडी fmgoldairdelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868886753। मैं हूं आपके साथ भावना और दो नाम मैं ले लेती हूं। शुरुआत में ही हमारे पास जो मैसेज आ गए हैं, शम्सुल कमर राही साहब हैं, शाहीन फातिमा हैं, अदनान खान हैं, अनु खान हैं, गंज डुंडवारा से इनका हमें संदेश मिला है, आदाब। हमारी तरफ से भी आपको आदाब। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या

वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा सुधाकर जाधव जी हैं और प्रशांत राजे जाधव जी हैं, संचित वायाल हैं, प्रथमेश देशमुख हैं, प्रणाली सरवद और सानवी देशमुख हैं, साथ हैं हर्षता देशमुख। कहां से लिख रहे हैं ये अपना संदेश? ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। ओके, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने हरे भरे पेड़ हमें लगाकर भेजे हैं, लगता है पर्यावरण से बहुत प्रेम है इन्हें। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हैं, भारत भूषण जी हैं, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, ये वाइट फील्ड बेंगलुरु से अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ये कौन है? जी हाँ, ये हैं

कृष्ण जटोलिया जी, राजेंद्र जटोलिया जी, उषा जी, पूजा, कोमल, आरव जटोलिया, दिल्ली नांगलोई से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कौन है जी? हाँ, ये है अफरोज शेख, नेमुआ सुपौल बिहार से इनका संदेश आया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा संदेश है, ये है कनक राम जी। और कनक राम जी ने हमें लिखकर भेजा है कि इनकी एक छोटी सी दुकान है जहां पर सब लोग चाय पीने आते हैं या फिर नाश्ता करने आते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है सबको अच्छी अच्छी चाय पिलाना, और कहते हैं अगर मेरी पसंद का गीत आपने सुनवाया तो चाय का स्वाद बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि सबको अच्छी अच्छी चाय मिले। और कोशिश कीजिएगा एक चाय अगर आप यहाँ आकाशवाणी भी भिजवा सके दिल्ली में, लेकिन आप तो बहुत दूर है ना। ये हमें मेरठ से संदेश भेज रहे हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से। और ये रहा आपकी पसंद का गाना कनक राम जी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के

0: घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
2: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
3: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
4: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
4: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
5: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
6: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स। मैं हूँ आपके साथ भावना, और भागवत वर्मा जी हैं, शांति वर्मा जी हैं, लीलावती हैं, विनेता वर्मा हैं, रुद्र वर्मा हैं हमारे साथ दतरेंगी से। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खाली अपनी जगह का नाम लिख देते हैं, दतरेंगी या कुछ भी ऐसा, तो अपनी स्टेट का भी नाम लिखिए कि कौन से स्टेट से है। मतलब क्लियर होना चाहिए सुनने वाले को, जिनको ना भी पता हो, जिनको पता है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि ये है जगह कहां पर, तो आप उनके लिए पूरा लिखिए अपना पता, हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जयराम खोरवाल जी हैं, सचिन खोरवाल हैं, अमन दीपांशु खोरवाल हैं, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से इनका संदेश हमारे पास आया है, और गाना सुनना चाहते हैं ये।

भगवती सिंह है पुल प्रहलादपुर नई दिल्ली से, इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। ताज मोहम्मद है और गुलाम साबिर रही है, मेहरा जहां है, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी जी ने तहे दिल से शुक्रिया हमें भेजा है। और किसी भी गीत के साथ हमें शामिल कर लीजिए, ये हमें लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसके अलावा तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य है, मेघा मस्कीन है, ये सब गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से हमारे साथ जुड़े हैं। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना, ये सब हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो हैं कमल पाठक जी, कमल पाठक हैं, सुनील पाठक हैं, गाव्या मल्होत्रा हैं और भाई सुच्चा सिंह पाठक हैं। और दिल से शुक्रिया ये कह रहे हैं, मतलब लिख के भेजा है दिल से शुक्रिया, तो हमारा भी आपको दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत, है ना। तो हाँ, अनारकली बाजार जगराओं से इनका संदेश हमें मिला है, मैं पता बताना भूल गई थी। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया है, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन है, कौशल्या देवांगन है, हेमलता डिंपल देवांगन है और इनकी पसंद का गीत हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़ भी हैं शोभापुर मेरठ कैंट से, और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनना चाहती हैं और बहुत ही प्यारा सा गाने के बोल हैं, रिक्शे पे मेरे तू आ बैठी, ऐसे बोल हैं कुछ। और इसी के साथ मतलब एक और हमारे पास संदेश आया है, ये है सविता नागपाल जी हैं और इनका संदेश हमें राजस्थान से मिला है। और ये कहती हैं कि हम रेडियो सुनते हुए, एफएम गोल्ड की बात कर रही हैं, ये आकाशवाणी की बात कर रही हैं, कि सुनते हुए हम इतने पुराने दौर में कभी कभी पहुंच जाते हैं कि जब आसपास ज्यादा जो है ना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के साधन नहीं हुआ करते थे, हम लोग बहुत मुश्किल से रिक्शे भी मिला करते थे। और मतलब आज से करीबन ये कह रही हैं कि उस जमाने की बात है, मतलब ये 50s की बात कर रही हैं, 1950 51 52 के जमाने की बात कर रही हैं। तो कहती हैं कि मतलब बहुत उस समय जो है मजा आया करता था, और जब हम वो गाने सुनते हैं, वो फील लेते हैं, तो बड़ा मजा आता है। और ये जो गीत ये सुनना चाहते हैं दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़, बहुत ही मतलब अचंभे की बात है कि ये भी वही गीत सुनना चाहती हैं। तो ये रहा वो गीत, सुनिए, और वो जो दिन है जो ये याद कराना चाहती हैं वो आप भी याद कीजिए।

शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का संदेश हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे पास संदीप मक्कड़ जी का संदेश आया है, साथ में मन्नत मक्कड़ भी हैं, भारत मक्कड़ हैं, कमल साहनी है पिंगावाला चौक गोरैया जलंधर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश अनेजा जी भी हैं, साथ में बिमला अनेजा है और हार्दिक अभिनंदन कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं हमारा हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंडीगढ़ सिटी से इनका संदेश हमें मिला है और हमारे पास संदेश आया है खोरवाल परिवार का, बोधराज खोरवाल जी हैं उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी है, गीतिका खोरवाल है, भानु प्रकाश है और ये कह रहे हैं कि हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और किसी भी सुपरहिट गाने के साथ हमें भी शामिल कर लीजिए। तो ये लीजिए चलते चलते आपकी पसंद का ये गीत।

इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार

0: के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप से भीषण तबाही हुई है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रोजेक्ट हॉकाई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैनात की गई हैं। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला अब इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप 2026 में दो बार का विश्व कप विजेता उरुग्वे स्पेन से 1-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। इसके साथ ही स्पेन ग्रुप एच में शीर्ष पर है। ग्रुप एच में काबो वेर्दे और सऊदी अरब का मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इसके साथ ही काबो वेर्दे राउंड 32 में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार कहीं घूमने जाते हैं आपको साथ लेकर। मैं हूं आपके साथ भावना, और जहां आज हम घूमने वाले हैं, जाने वाले हैं, साथ साथ चलने वाले हैं, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का खूबसूरत अंडमान। सफेद रेत वाले समुद्र तटों, मूंगा चट्टानों और रोमांचक पानी के खेलों के लिए मशहूर है ये जगह। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। तो चलिए मिलकर साथ साथ चलते हैं।

अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर से यात्रा शुरू करना सबसे सही रहेगा, है ना? यहाँ की सेल्यूलर जेल, इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे जो शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है वो बहुत बहुत मशहूर है और इतिहास की याद दिलाता है ये लाइट एंड साउंड शो। यहाँ की सेल्यूलर जेल जो है उसे देखकर बीते समय को महसूस किया जा सकता है, किस तरह से हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसे लड़ा गया, किस तरह से एक एक कैदी को यहाँ पर रखा जाता था, उनको क्या क्या सज़ा दी जाती थी, इसके बारे में जानने को मिलता है यहाँ पहुँचकर। बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि मतलब किस तरह से कितनी शालीनता के साथ हर काम को किया जाता था। और उसके अलावा यहाँ पे एक चिड़िया टापू है। चिड़िया टापू जब आप जाएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत आपको पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, सूर्यास्त जो है यहाँ का देखने लोग दूर दूर से आते हैं चिड़िया टापू पे। नॉर्थ बे आइलैंड, ये अंडर वाटर सी वॉक है, मतलब यहाँ पर आप ये सब कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर जो वाटर एक्टिविटी हैं बेसिकली आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं नॉर्थ बे आइलैंड पर। जो पोर्ट ब्लेयर है उसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ लोग आते हैं, यहाँ के चिड़िया टापू को देखते हैं, सेलुलर जेल जो है वो मेन अट्रैक्शन है पोर्ट ब्लेयर का, वहाँ जाते हैं, और नॉर्थ बे आइलैंड इसको घूमना भी लोग पसंद करते हैं। तो अंडमान में एक एक करके हम जगह चलेंगे। इसके बाद अब हैवलॉक द्वीप है जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या खास है। बस बने रहिए हमारे साथ और चल निकलिए इस खूबसूरत अंडमान के सफर पर।

पूरी प्रकृति और हम एक हो गए हैं। एक ऐसा संबंध फील होता है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, शब्दों में बयां नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पहुंचकर वो समुद्र के किनारे आप रेत पर चल रहे हैं और लहरों के साथ बहकर समुद्र से वो शंख जैसी आकृति की जो चीजें आती हैं ना बाहर, जिसे हम उठा लेते हैं और खूबसूरती से अपने हाथों में लेकर देखने की कोशिश करते हैं, उनको मूंगा कहते हैं, है? बहुत प्यारे होते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग आकार के, बहुत प्यारे लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खास है ना वो है क्रूज या फेरी। ये पोर्ट ब्लेयर से ना आप क्रूज से या फिर फेरी द्वारा यहाँ पर पहुंच सकते हैं, यहाँ पर हैवलॉक द्वीप पर। और हैवलॉक द्वीप जो है बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का जो राधा नगर बीच है ना, उसे एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। यहाँ का शांत नीला पानी और सफेद रेत मंत्रमुग्ध कर देती है सचमुच। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं यहाँ देखने पे जो हमें पुराने जमाने में इतिहास में ले जाती हैं, और उनको फील करके बहुत बहुत अच्छा लगता है।

नील द्वीप अंडमान का वनस्पति भंडार है, बहुत ही खूबसूरत सुरमई ये द्वीप हरे भरे जंगलों और मुलायम रेतीली समुद्र तटों से सुशोभित है, सजा हुआ है। यदि आप किसी शांत और एकांत जगह पर छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे हैं ना, तो ये नील द्वीप आपके लिए एकदम ठीक जगह है। यहाँ पर पर्यावरण जो है ना, उसके प्रति जागरूक पर्यटकों का जो है रुझान अपने आप झुक जाता है, क्योंकि ये जो नील द्वीप है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान की, वहां से नाव द्वारा जुड़ा हुआ है। आराम से नैया में बैठकर आप यहाँ पर जाइए और चार दिन के लिए आराम से आप यहाँ पर समय बिता सकते हैं। इस द्वीप के शांत जो समुद्र तट हैं, वहां पर आप छुट्टियां बिताइए। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप ग्रामीण जीवन का बहुत ही अच्छे से आनंद उठा सकते हैं। यहाँ का जो भरतपुर बीच है ना, शीशे जैसा साफ पानी है और कोरल यानी मूंगा देखने के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये जगह। लक्ष्मणपुर बीच है नील द्वीप का, यहाँ का सूर्यास्त यानी सनसेट दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और हावड़ा ब्रिज, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ रॉक ब्रिज है और इसे देखने भी लोग दूर दूर से आते हैं। लोगों की तमन्ना होती है कि यहाँ आए और इसे निहारें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
6: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
7: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
8: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
7: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
8: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: .1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है तस्वीर, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं खूबसूरत अंडमान की। लॉन्ग आइलैंड है यहाँ पर, लालाजी खाड़ी में एक शानदार रेतीला समुद्र तट है। यहाँ की सदाबहार वन और यहाँ का स्वच्छ वातावरण, ये इसे बहुत खास बनाता है। और पता है, यहाँ पर ना आपको अक्सर समुद्र में डॉल्फिन्स के झुंड दिखाई देंगे। आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि बहुत सारी डॉल्फिन्स एक साथ सामने आ रही है, डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा होगा। वो यहाँ आप आकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं, बहुत बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और जब सीजन होता है ना, तो उसके दौरान यहाँ पर पर्यटन निदेशालय कैंपिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। बहुत ज्यादा जो रोमांच करना चाहते हैं, पसंद करते हैं रोमांच को, वो यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी सपने में आ गए हों हम, इतना खूबसूरत।

अगर आप प्रकृति की शांति को महसूस करना चाहते हैं, सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे खास जगह है अंडमान में रंगत। यहाँ का जो सरल ग्रामीण जीवन है, यहाँ की जो सुंदरता है, वो सबको अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। और पता है, दिसंबर से फरवरी के मौसम में ना कटबर्ट बे बीच है यहाँ पर, वहां पर कछुओं के घोंसले देखे जा सकते हैं। यहाँ पासे में कछुआ अभ्यारण्य भी है, जहां पर लोग जाते हैं उसे देखते हैं। और यहाँ के खास जो आकर्षण है उनमें से एक है पंचवटी जलप्रपात, यहाँ का बहुत खूबसूरत है ये झरना, और आम कुंज बीच, ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सी चीजें हैं जो अंडमान में देखने घूमने लायक हैं, बस आप हमारे साथ साथ चलते रहिए।

बहुत ही खूबसूरत अंडमान की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर माया बंदर एक ऐसा द्वीप है जो बहुत ही सुंदर तो है ही, मैंग्रोव से घिरी खाड़ियां जो हैं ये इसको और भी ज्यादा खास बना देती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आकर बहुत आसानी से सुकून से अपना जो है

हम तो पास करते हैं, साथ ही कछुओं के घोंसलों को बनते हुए आप देख सकते हैं। बहुत सारे कछुए अपने घोंसले बनाते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखने लोग काफी उत्साह से यहाँ आते हैं। यहाँ से नाव में बैठकर कालीघाट भी जाया जा सकता है, वो भी एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ देखने के लिए। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में डिगलीपुर जाना जाता है अपने संतरों के लिए, चावल के लिए और समुद्री जीवन के लिए। पर्यावरण के प्रति जो जागरूक पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं, इसे देखते हैं। पता है इस द्वीप का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना, 732 मीटर ऊंचा सैंडल पीक यहीं पास में ही है, और अंडमान की एकमात्र नदी कल्पोंग यहीं से बहती है। इस द्वीप की पहली जल विद्युत परियोजना इसी नदी पर बन रही है। यहाँ पर आप बहुत सारी जो है ना जल क्रीड़ाएं कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे कर सकते हैं आप। यहाँ पे रामनगर जो है वो भी बहुत खास है, यहाँ पर लोग देखते हैं इस बीच को, रामनगर बीच इस जगह का। और कालीपुर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है ना, ये 30 मिनट की दूरी पर ही, और यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर ही रॉस और स्मिथ नामक दो खूबसूरत जुड़वां द्वीप हैं, मनमोहक रेतीली टीले से जुड़े हुए, बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पर आप गांव के जीवन को फील कर सकते हैं, उसे जी सकते हैं जितनी देर भी आप यहाँ पर हैं। अगर आप अपनी छुट्टियों को खास बनाना चाहते हैं तो शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर आप यहाँ आए। डिगलीपुर पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर के लिए सप्ताह में 2 बार नाव सेवा भी उपलब्ध होती है। बहुत ही खूबसूरत नाव जो है वो यहाँ पर जब चलती है तो ऐसा लगता है कि बस मतलब क्या ही इतना प्यारा सा माहौल होता है, इतना प्यारा सा कि बस समय बिताने का यहीं पर मन करता है, ऐसा करता है कि बस यहीं पर हम समय बिताएं और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, बहुत सारी चीज़ों को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं।

लिटिल अंडमान द्वीप, यहाँ पर बटलर बे का खूबसूरत समुद्र तट, एक झरना, ताड़ के पेड़ों का बागान, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। बारातांग द्वीप, ये बहुत खास है अंडमान में, अपनी अनूठी चूना पत्थर की गुफाओं और कीचड़ ज्वालामुखी के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप जा सकते हैं, इसे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे बारातांग में। मैंग्रोव के जंगलों के बीच से गुजरना यहाँ का सबसे अनोखा अनुभव है। बहुत बहुत खूबसूरत है अंडमान, पूरा ये अंडमान निकोबार द्वीप बहुत खूबसूरत है। और सबसे ज्यादा खूबसूरत पता है क्या है, जब एक जगह से दूसरी जगह आप नाव में बैठकर जाते हैं तो बस फिर दिल कह उठता है।

12:10 पर घर आंगन प्रोग्राम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी समय हो गया है समाचारों का। मैं भावना अब चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में यह सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ

0: और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service, Bharat Taxi, in 14 major cities in Gujarat at the Mahatma Mandir in Gandhinagar today. Mr. Shah, who is on a 3-day visit to Gujarat, is also scheduled to launch several key initiatives and chair review meetings. Our correspondent reports that along with Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi, representatives from cooperative sector and more than 4,000 drivers will participate in the program. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Rubio also said the relationship between Prime Minister Modi and President Donald Trump is very close, adding that it is important for diplomacy. U.S. Vice President J.D. Vance has warned Iran that any future aggression would be met with force, hours after the United States carried out military strikes on Iranian targets. In a post on X, Vance said, Iran had signed a ceasefire agreement and that the United States had honored it. He added that any disputes over the agreement should be resolved through dialogue, but warned that violence would receive a military response. The U.S. Central Command CENTCOM said

0: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ मनीषा बोस। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमारे साथ आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं FM गोल्ड के साथ साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों और मनीषा तुम्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी अक्सर बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से आसान बनती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिन को बेहतर बनाती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमें अपने लक्ष्य के और भी करीब ले जाती हैं। कुछ नया पढ़ना, समय पर काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत हमारा जीवन बदल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का हमारा जो सवाल है इसी बात से जुड़ा हुआ है दोस्तों कि वो कौन सी आदत है जिससे आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान, बेहतर और खुशहाल बना दिया है। अपने विचार, अपने अनुभव, कहानियां हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर।

0: और ये भी हो सकता है, बताइए आप बोलिए।
1: और हो सकता है कि आपकी एक अच्छी आदत किसी और की जिंदगी को भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो इंतजार रहेगा आपके जवाब का, खत लिखिए, हम उसे जरूर पढ़ेंगे।

0: साथियों, ये गीत आप सुन रहे थे आए दिन बहार के फिल्म से और गायिका थी आशा भोसले। और देखिए ये गीत जैसा था, खत लिख दे बाबू, और खत आ चुके हैं मंजुला जी की मुस्कान से पता चल रहा है।
1: आपके सांवरिया ने भेजा या नहीं भेजा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास मेल आ गए हैं। तो ये लिखा है अंशु माला ने दिल्ली से, बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि मेरी एक छोटी सी आदत सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना, देखने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है लेकिन एक छोटी सी आदत पूरे दिन का मूड और ऊर्जा तय करती है। दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित काम से होती है तो मन को हल्का और सकारात्मक भी रहता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी बात और लिखी है कि ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिला है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। एक विरासत में ऐसी आदत को अपने साथ लेकर चलना बहुत ही बड़ी खूबी है। और अगला जो संदेश है वो भी हमारे एक बहुत ही प्यारे श्रोता साथी का है और उनका नाम है नवीन भाटिया जी, और ये हैं मोती नगर नई दिल्ली से, जिन्होंने लिखा है, जब से मैं एफएम गोल्ड पर जुड़ा हूं तब से मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। यानी कि उनकी ये आदत जो है हमारे एफएम रेडियो से सुनने की, जुड़ने की, ये आदत उनको सबसे बेहतरीन बनाती है।
1: बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत विचार लगता है मनीषा कुछ बताने वाली है।
0: बिल्कुल मेरे पास है दोस्तों, क्योंकि आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने बताया कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी में आपको आपकी खूबी से मिलाती है। उसी तरह दिन की शुरुआत अगर हम किसी अच्छे विचार के साथ करते हैं तो दिन भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो होता है, जब वो अपने आज के आनंद को जीते हुए क्या कभी कल के बारे में सोचता है, कोई योजना बनाता है? सोचिएगा, किसी छोटे बच्चे को याद करके आप सोचिए कि जब वो किसी पानी से भरे तालाब को या पोखर को पार करता है, या कभी उस पोखर को जब वो देखता है पार करता है तो उसे समुद्र की तरह समझता है जब पार करता है। मतलब उसका जो ख्याल है अपनी जीत के जश्न को मनाने का होता है और वो इस तरह अपनी जीत को पाता जाता है, महसूस करता जाता है।
1: और याद कीजिए अपने बचपन के सभी उस क्षण को जो भरपूर आपने जिया था, पूरी तरह से वो उस पल में ही मिल जाया करता था, बिना किसी पूर्वाभास के, फिक्र और चिंता के बगैर, बीते हुए कल के बोझ या आने वाले कल की व्यग्रता के बगैर, क्योंकि वो वर्तमान के अलावा कहीं और होना जानता ही नहीं था। और हाँ, वो कला बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी सिद्धि थी जो हर पल को जीना जानती थी।
0: बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। और देखिए, बचपन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से जादू ही नहीं होता दोस्तों। दरअसल बचपन का जादू तो ध्यान की जो गुणवत्ता होती है उसमें छिपा होता है, यानी वो जब जहां होता है तब सिर्फ वहीं होता है ना। फिर बड़े होने के साथ हम अपने आप को, स्वयं को विभाजित करना सीख लेते हैं। हमारा एक हिस्सा कहीं और बैठा होता है और हम दूसरा हिस्सा कहीं और होता है। हम तन से कहीं और होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। तो यही बात जो होती है वो हमारे एहसास को बदलती जाती है।
1: और यकीन मानिए, एहसास की परतों को हटाते ही बचपन का जादू ठीक वहीं मिलेगा जहां हमने छोड़ा था उसे। और अभी इसलिए सोचिएगा जरूर कि आखिरी बार कब वास्तव में आप वहां गए थे और आप कहां हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त को फिल्म थी सुजाता।
1: और दोस्तों आज का दिन उद्यमिता की दुनिया के लिए बहुत खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। और छोटे और मध्यम उद्योगों के वैश्विक अर्थव्यवस्था नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान को सम्मान देने का ये दिन 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की शुरुआत की थी।
0: और दोस्तों उसी तरह 27 जून का वो दिन है जो हमें भारतीय इतिहास के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाता है। अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और समाजवेशी शासन के लिए प्रसिद्ध पंजाब के इस शेर को हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं।
1: और दोस्तों आज का दिन इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी जिन्हें दो दशकों तक दौड़ के मैदान पर उनकी तेज गति के कारण पायोली एक्सप्रेस, उदन परी और गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा गया। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोल्ली गांव में जन्मी पिलावुल्ला कंडी थेक्के परमपिल उषा यानी एथलीट पीटी उषा, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
0: और आज 27 जून की वो तारीख है दोस्तों जब हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार आरडी बर्मन, राहुल देव बर्मन जिन्हें प्यार से मंचमता भी कहते थे, उनकी भी जयंती है। भारतीय फिल्म संगीत को एक नई पहचान देने वाले रॉक, जैज और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बेहतरीन मिश्रण से संगीत जगत को सजाने वाले इस महान संगीतकार को आज हम नमन करते हैं।

0: दोस्तों, ये गीत आप सुन रहे थे अभी फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। और हमेशा की तरह आज भी हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो है, आपकी कौन सी आदत में ऐसी है जो आपको सफल बनाती है, जिसके बारे में आपको हमें संदेश भेजना है fmgold@gmail.com पर।
1: और मनीषा, इसी बीच एक मेल हमारे पास आ गया है रश्मि का गुरुग्राम से। वो लिखती है कि मेरी छोटी सी आदत है कि ऑनलाइन कुछ खरीदने के पहले 10 बार कार्ट में डालना और फिर बिना खरीदे बंद कर देना और फिर दावा करना कि वाकई क्या ये जरूरी है, फिर ये तय करना कि क्या ये जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें कार्ट में डालते हैं, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, वो बहुत प्यारा सा संदेश है, ये है राजेश्वर राव जी का। और इन्होंने कहा है कि इनकी एक आदत है कि ये जब भी अपनी कार में ड्राइविंग के दौरान बैठते हैं तो वो अपनी ग्लास रखते हैं। तो हमें अपने इस चैनल के माध्यम से ये सबको जरूर बताना चाहिए कि हमें प्लास्टिक जो ग्लास होती है उसको यूज नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक के यूज से, उसके प्रयोग से बचना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरमेंट को शुद्ध रख सकें, उसे साफ रख सकें। बहुत सुंदर संदेश आपका, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा राजेश्वर जी।
1: और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा, ये किसको पसंद नहीं होता। यात्रा केवल नए स्थान देखने का माध्यम नहीं है बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों, नए विचारों से जुड़ने का अवसर भी है। और जब यात्रा का आनंद किताबों से जुड़ जाए तो सफर और भी यादगार बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी हिंदी यात्रा वृत्तांत पुस्तकों के बारे में बताएंगे जिन्हें हर यात्रा प्रेमी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदी यात्रा जो है साहित्य की, उसमें महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांस्कृत्यान की पुस्तक

0: मेरे लद्दाख यात्रा। इसके बारे में ये पुस्तक जो है वो भौगोलिक सुंदरता, वहां के लोगों के जीवन और बौद्ध संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है उनके इस लेखन में। राहुल, सांस्कृत्यान केवल स्थानों का वर्णन नहीं करते थे दोस्तों, बल्कि वो पाठक को उस वातावरण का हिस्सा बना देते थे। ये पुस्तक लद्दाख को अगर आप समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसकी सुंदर जो प्रस्तुति है उसका एक माध्यम है।
1: और अब बात करते हैं उमेश पंत की पुस्तक दूर दुर्गम दुरुस्त की। यह पुस्तक उन रास्तों की कहानी है जहां हर कोई नहीं पहुंचता। लेखक ने दूरस्थ और कम चर्चित स्थानों, जिसको कि आजकल हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अनरियल वाली जगहों की यात्राओं को संवेदनशीलता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक पढ़ते हुए महसूस होता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्तों को जीने का अनुभव है। और अगली पुस्तक है कच्छ कथा, के लेखक है अभिषेक श्रीवास्तव। चलो मनीषा तुम बता दो।
0: बिल्कुल, इसका नाम आते ही ना मंजुला, आंखों के सामने सफेद जो रंग होता है, लोक संस्कृति, रंग बिरंगे उत्सवों की छवि उभर आती है। ये पुस्तक कच्छ की मिट्टी, वहाँ के लोगों, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का ऐसा परिचय कराती है दोस्तों कि पाठक स्वयं को उस धरती पर महसूस करने लगता है। ये केवल यात्रा वृत्तांत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक दस्तावेज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। और अब बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक और खाद्य इतिहासकार पुष्पेंद्र पंत की पुस्तक नैनीताला नैनीताला की। इस पुस्तक में नैनीताल और उसके आसपास के पहाड़ी जीवन को बेहद आत्मीयता से चित्रित किया गया है। लेखक केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं करते बल्कि वहां की संस्कृति, खान पान, लोगों और स्थानीय जीवन के विविध रंगों को भी सामने लाते हैं। यह पुस्तक पाठक को पहाड़ों के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अक्सर कहा जाता है कुछ यात्राएं पैरों से पूरी होती हैं और कुछ किताबों से।
0: वाह, क्या बात कही मंजुला जी। और कुछ किताबों से पूरी होती है, यह आपने बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में किताबों से जुड़े रहने से हम अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये पुस्तकें केवल स्थानों की जानकारी नहीं देती हैं बल्कि उन जगहों की आत्मा से भी हमें परिचित कराती हैं। यदि आप यात्रा के शौकीन हैं दोस्तों, या भविष्य में किसी सफर की योजना बना रहे हैं, तो इन हिंदी पुस्तकों को अपनी पढ़ने की सूची में जरूर शामिल कीजिएगा।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म 12 o'clock से।
1: और साथियों, घर आंगन कार्यक्रम में आज की प्रश्नोत्तरी फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपने अपना रेडियो अभी ट्यून किया है तो सुनिए वो प्रश्न है आज का कि आपकी कौन सी आदत है जिसने आपको सफल बनाया है। और पहला संदेश मेरे पास है जो है दीशिता सोइन का, जिन्होंने लिखा है कि हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना और सकारात्मक रहना मुझे स्ट्रेंथ देता है। बहुत खूबसूरत बात है आपने कही।
0: और अनन्या श्रेष्ठा का भी एक मेल आ चुका है जो लिखती हैं कि मुझे जर्नलिंग करने का बहुत शौक है और बहुत ही फायदा हुआ इससे, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुई है, फोकस बढ़ गया है और यादों को जो संभाल कर रखने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत,
1: बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देते रहते हैं, तो मंजुला जी के पिटारे में एक और जानकारी है, मैं चाहती हूँ आप बताओ, शुरुआत करो।
0: तो अब हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की पारंपरिक थाली और उसके महत्व के बारे में। तो मनीषा बिहार में जो ये है आर्द्रा नक्षत्र, जिसको साधारण भाषा में कई लोग आर्द्रा नक्षत्र भी बोलते हैं, उसकी विशेष सांस्कृतिक और कृषि महत्व है। पीढ़ियों से यहाँ इस नक्षत्र के दिन खीर पूरी, जो मौसमी सब्जी, रसीले आम और जामुन खाने की परंपरा चली आ रही है। और ये केवल एक भोजन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परिवारों को जोड़ने वाली एक सुंदर विरासत है।
1: बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, मुझे भी इसकी जानकारी है। और श्रोताओं, इसमें दाल भरी पूड़ी जो होती है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। वैसे ही खीर जो है वो शुभ अवसरों का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। और जो आम है, फलों का राजा, ग्रीष्म ऋतु की मिठास और प्रकृति के उपहार का प्रतीक है। और इसीलिए इस थाली में ये सब कुछ सजा होता है।
0: और मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम की मिठास, खीर पूरी का स्वाद, यही तो है बिहार की पहचान। और इस नक्षत्र के आगमन पर भगवान इंद्रदेव का स्मरण किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी वर्षा होती है जिससे खेतों में हरियाली और किसानों के जीवन में समृद्धि आती है।
1: हालांकि ये परंपरा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, लेकिन ऋतु परिवर्तन का स्वागत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और नई कृषि जो है उसके लिए ऋतु का आगमन उत्सव के समान होता है। और ये बिहार तक सीमित नहीं रहता, भारत के कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये परंपरा वर्षा ऋतु और कृषि चक्र के आरंभ का स्वागत करती है।
0: बिल्कुल, यही भारत की खूबसूरती है। परंपराएं भले अलग हो लेकिन प्रकृति का सम्मान, अन्नदाता के प्रति आदर और परिवार के साथ उत्सव मनाने की भावना पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तो आइए इस आर्द्रा नक्षत्र पर हम सब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोएं, किसानों के परिश्रम का सम्मान करें और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें।

0: पराया धन। इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा और किशोर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गया है। रमीशा जैन है दिल्ली से, वो लिखती हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आदत जिसने मेरे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों को परिवर्तित किया, तो मेरा उत्तर होगा कि वो आध्यात्मिक

0: साधना और सनातन जीवन पद्धति को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाना, यही वो परिवर्तन है जिसने मुझे भीतर तक दृढ़ बनाया, मुझे संभाला और प्रत्येक कठिन क्षण को मेरे पथ को आलोकित किया।
1: बहुत सुंदर विचार आपने लिखा हुआ है। और मेरे पास हमारी एक नियमित श्रोता साथी हैं, उनका भी संदेश आ चुका है। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने लिखी है कि बिजली, पानी, पेट्रोलियम ऐसे जितने भी उत्पाद हैं और गैस का उपयोग बहुत सोच समझकर हम करते हैं, अन्न को भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और यही आदतें हमें हमारे जीवन में सफल बना रही हैं।
0: और एक और मेल है गौरी शंकर जी का कि आप दोनों बेटियों को राम राम, बचपन की बातें अच्छी बुरी आज भी याद आती है, सुबह जब हम योग करते हैं तो विचारों में बदलाव जरूर आता है, विचार अच्छे ही आएंगे और काम करेंगे तो वो सही ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल करने के लिए।
1: और मंजुला जी, एक बहुत सुंदर सा संदेश है उत्तर प्रदेश भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता का। ये लिखते हैं कि हर दिन सुबह से रेडियो सुनते हुए अपनी दिनचर्या को हम पूरा करते हैं और गीत संगीत सुनकर सुकून पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और देखिए, आपके सुकून को हम बरकरार रखें, यही हमारी कोशिश रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे अजरक प्रिंट की, एक ऐसी हस्तकला की जो अपनी सुंदरता, जटिलता और प्राचीन इतिहास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अजरक की परंपरा इतनी पुरानी है, इसकी जड़ें उन सभ्यताओं तक पहुंचती है जो मिस्र के पिरामिडों के समय में अस्तित्व में थी। कुछ इतिहास का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह की छपाई और ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया जाता था।
1: हाँ, मुझे इसके बारे में एक जानकारी ये भी है मंजुला जी कि जो अजरक शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द अजरक से जुड़ा माना गया है और इसका अर्थ होता है दोस्तों नीला रंग। यही गहरा नीला रंग अजरक की सबसे बड़ी पहचान है और भारत में ये कला मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में विकसित हुई। खत्री समुदाय के लोगों को आप जानते होंगे, उनके जो कारीगर हैं वो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। उनके लिए अजरक सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि विरासत और पहचान का प्रतीक भी है।
0: और अजरक प्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया, एक कपड़े को तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं, इसमें 14 से 16 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रंगों, लकड़ी के ब्लॉकों और पारंपरिक तकनीकों की मदद से हर डिजाइन को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है।
1: और नीले रंग के इंडिगो, लाल रंग के लिए मदार की जड़, पीले रंग के लिए अनार के छिलके, काले रंग के लिए लोहे के घोल का उपयोग किया जाता है। यही प्राकृतिक रंग अजरक को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाते हैं दोस्तों। अजरक की डिजाइनों में तारे, वृत्त, जालियां और अन्य ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। ये केवल सजावट नहीं है बल्कि प्रकृति, संतुलन और ब्रह्मांड के प्रति मानव के जुड़ाव को भी दिखलाती हैं।
0: बहुत ही खूबसूरती से तुमने बताया। और समय के साथ अजरक ने पारंपरिक परिधानों से निकलकर वैश्विक फैशन के जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज साड़ी, दुपट्टे, कुर्ते, जैकेट और आधुनिक परिधानों में भी अजरक की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अजरक केवल प्रिंट नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही कला, संस्कृति और शिल्पकारों की मेहनत की जीवित कहानी है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपरा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी हमारे जीवन को रंगों से भर रही है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म धर्मकांटा से।
1: और दोस्तों अब एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में हम सभी का जागरूक होना जरूरी है। बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो घरों की छत से ही रोशन कर रही है हमारे भविष्य को, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
0: और ऊर्जा की खपत को देखते हुए सरकार ने 2024 से शुरू इस योजना का लक्ष्य रखा है 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का, ताकि लोग खुद अपनी बिजली बना सकें और स्वावलंबन से जुड़ सकें।
1: क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली इस योजना से कार्बन उत्सर्जन को रोकने और देश को टिकाऊ विकास की ओर ले जाने का प्रयास है। और इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना है, यानी कम बिल और ज्यादा बचत।
0: और अगर आप इस स्कीम से जुड़ते हैं तो इसके लिए 78,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी और छत पर सोलर पैनल लगाना भी आसान हो जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक पीएम सूर्य पर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, फिर छत पर सोलर पैनल लगवाएं, फिजिबिलिटी जांच पूरी करें और सब्सिडी प्राप्त करें।
1: आवेदन के लिए आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और नवीनतम बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक, इसकी जरूरत पड़ेगी। हर घर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हर घर की छत जब बनेगी पावर स्टेशन तो एम्पावर होगा हर घर।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है दिल ने फिर याद किया। और इसी के साथ हम अपने आज के इस खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला और
1: मनीषा को इजाजत। लेकिन हम फिर मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कलाकार बेमिसाल में जिक्र एक ऐसे कलाकार का जिसने घर में रखे सामान को एक वाद्य में बदल दिया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गाने में ग्लास का टकराना वाद्य बन गया। सैंड पेपर की आवाज को रगड़कर ट्रेन की आवाज निकाल दिया और गाना बना होगा तुमसे प्यारा कौन। सोडा वाटर की बोतलों से आटा चक्की की आवाज निकाली और गाना बना ओ मांझी रे। स्कूल की बेंच को तबला बना दिया और गाना बना क्या मास्टर जी की आ गई चिट्ठी। ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, जाहिर है आप समझ गए होंगे कि आज हम पंचम दा को याद कर रहे हैं। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और आज जिक्र होगा पंचम दा का। मैं संगीता रहूंगी आप सभी के साथ। नमस्कार।

कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं पंचम दा को। कोलकाता में जन्म हुआ था पंचम दा का। पिता एसडी बर्मन जाने माने संगीत निर्देशक थे और माँ मीरा दत्त रॉय बंगाली फिल्मों की जानी मानी गायिका थी। जाहिर है आरडी बर्मन को संगीत विरासत में मिला। पिता एसडी बर्मन ने उनके हुनर को परखा और बॉम्बे ले आए। बॉम्बे में बाकायदा आरडी बर्मन ने साज और संगीत की तालीम ली। उस्ताद अकबर अली खान से सरोद सीखा, सामता प्रसाद जी से तबला सीखा, जबकि सलिल चौधरी से संगीत की बारीकियां सीखी। 1956 में पिता को बतौर असिस्टेंट ज्वाइन किया और 6 सालों तक संगीत निर्देशन की तालीम हासिल की। समय समय पर पिता की परीक्षाओं से भी गुजरना होता था। पंचम दा ने अपना पहला संगीत 9 साल की उम्र में दिया था।

आज सुबह जब मैं कार्यक्रम करने के लिए घर से निकली तो ऐसे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि मान लो कुबेर का खजाना जो है खुला हो, है ना, अथाह सोने चांदी जवाहरात कोहिनूर हीरे मोती न जाने क्या क्या, और आप जाएं और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें से बस पांच छह चीजें लेके आ सकते हो। तो चलो पांच छह चीजें तो चुन लोगे, लेकिन बाकी का लालच तो रहेगा कि ओहो अथाह खजाना सामने है लेकिन आप उसमें से बस चार पांच चीजें लेके आ सकते हो। ऐसे ही मुझे एहसास हो रहा था कि जब आरडी बर्मन पे प्रोग्राम करना है और आपको गाना चुनना पड़े कि बस महज पांच छह या सात गाने आप चला सकते हो, तो लगता है कि कौन सा गाना ले और कौन सा गाना आरडी बर्मन का छोड़ दे, क्योंकि कुबेर का खजाना है, वहां से चार पांच चीजें लेके आना बड़ा मुश्किल काम है भाई। और खैर इस चुनौती को स्वीकार किया तो कुछ गीत जो है चुनकर लाए हैं आपके लिए। हास्य अभिनेता महमूद की अगर बात करें तो हास्य अभिनेता महमूद ने आरडी बर्मन को बतौर संगीत निर्देशक पहला मौका दिया, फिल्म थी छोटे नवाब, लेकिन बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंचम दा को असली पहचान मिली 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल से। नासिर साहब की फिल्म थी ये, पहले देवानंद को कास्ट किया गया था पर उनके मना करने के बाद इसमें आए

शम्मी कपूर। नासिर साहब ने कहा कि अगर शम्मी कपूर ओके कर देते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। अब यहां आरडी बर्मन थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि शम्मी कपूर की फिल्मों में ज्यादातर जो है शंकर जयकिशन का संगीत होता था। खैर, शम्मी कपूर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, पंचम कुछ सुनाओ। अब आरडी बर्मन कुछ तैयार करके तो गए नहीं थे, तो मौके पर एक नेपाली गाना याद था उनको, उन्होंने उसकी धुन सुना दी और वहीं बैठे बैठे तुरंत धुने बनाकर उन्हें सुनाया। तो इस तरह पंचम दा को फिल्म तीसरी मंजिल मिली। तो चलिए हम भी सुनते हैं इसी फिल्म से ये शानदार गीत।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
5: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
6: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
5: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
6: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल। और अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं बर्मनदा को, आरडी बर्मन को हम याद कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में पंचम दा ने कहा था कि मुझे हर आवाज आकर्षित करती है, चाहे वो पत्तों के सरसराने की आवाज हो या बर्तन के टकराने की। पंचम दा नए साउंड क्रिएट करते थे, उनके धुन बनाने की अप्रोच सबसे जुदा थी। उन्हें इंडियन सिनेमा में वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन तैयार करने के लिए जाना जाता है। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने संगीत के जरिए एक नए युग की शुरुआत की तो जाहिर है गलत नहीं होगा। अमजद खान ने कहा था कि उनके किरदार को सफल बनाने में पंचम की खास भूमिका थी, क्योंकि गब्बर जब पर्दे पर आता है और एक खास तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो डर पैदा करता है, ये पंचम दा ने क्रिएट किया था।

फिल्म शोले से पंचमदा की आवाज में हमने ये कमाल का गीत सुना। पंचमदा ने गुलजार के साथ एक अलग ही अंदाज में काम किया। गुलजार उनके सामने एक चुनौती की तरह थे और उस चुनौती पर पंचमदा को खरा उतरना होता था। गीतकार और संगीतकार का तालमेल हमेशा नहीं बैठता, पर गुलजार और आरडी बर्मन की जोड़ी शायद बनी ही इसीलिए थी कि वो बहुत सारी परंपरागत चीजों को तोड़ सके। अपने एक इंटरव्यू में पंचमदा ने कहा कि गुलजार के लिखे गीत अक्सर मुझे परेशान करते थे। आंधी फिल्म का गाना लेकर गुलजार साहब मेरे पास पहुंचे और मैंने मुखड़े को की जो ट्यून है वो तो बना ली, लेकिन अंतरा ट्यून में फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो मैंने गुलजार साहब से कहा कि भैया अब अंतरे को ट्यून के हिसाब से सेट करो। खैर, गुलजार साहब भी उस पूरी रात सोए नहीं और बोल को धुन में ढालने का प्रयास किया और इस तरह आया आंधी फिल्म का ये सुपरहिट गाना।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 1:44 आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, और आज अपने कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं पंचमदा को। अपने संगीत के दम पर पंचमदा 3 दशक तक बॉलीवुड पर छाए रहे, लेकिन 90 दशक में पंचमदा का संगीत कमजोर पड़ने लगा। वो इस बात से दुखी भी थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वो ऐसा म्यूजिक देंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा।

पंचमदा के करियर की शानदार पारी अभी बाकी थी। किस्मत ने अपना रंग दिखाया और विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए अप्रोच किया। इस फिल्म में म्यूजिक देकर उन्होंने साबित किया कि वो कुंदन हैं जो हर बार आग में तपकर और निखर उठते हैं। पर पंचमदा अपनी इस आखिरी कामयाबी को देखने से पहले ही विदा हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर से भी सम्मानित किया गया।

0: और फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हमने तो कहा ही था कि कितना मुश्किल है कुबेर के खजाने से जरा सी चीज लेकर आना, लेकिन कोशिश की कि अलग अलग तरह के अलग अलग मूड के गाने आपको सुनवा सकूं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और फिलहाल जो समय है वो समाचारों का हो चला है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। संगीता को इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरका अकदार और मफाद रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम का शर्फ हासिल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खुसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का काम अंजाम दे रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम मोदी अपने दौरे के दौरान सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। आज उनके प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन्स में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहेली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना साझेदारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जुनूब की तई वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद उसत देने के मुश्तरक अज़्म को तकवीत फराहम करेगा। सुपर्णा साइकिक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सेशल्स ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सेशल्स आमद से कबल सेशल्स के वजीर खारजा बेरी फोर ने कहा है कि मौजूदा आलमी निजाम और बैनुल अक्वामी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है ताकि ये मौजूदा दौर के हकाइक का बेहतर अक्कासी कर सकें। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी रसूख, अमन कायम करने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत

0: की यह कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिरखा इकतसादी तरक्की की है और वह आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमरीका के करीब तरीन दिफाई शराकत दारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क्यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मौसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वजीर आजम मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफी करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के लिए यह एक अहम बात है। उम्र दाखला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर के महामंदिर में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया। इमदाद बाहिमी पर मबनी अपनी नौइयत की यह पहली टैक्सी सर्विस है और इसे अगले 2 साल के दौरान मुल्क भर के 500 शहरों और कस्बों तक तौसी दी जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी इमदाद बाहिमी के शोबे में तब्दीली लाने की सिमत में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इस सर्विस की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह सर्विस इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्राइवरों को आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मिल सके और मुसाफिर मुनासिब खर्च पर महफूज सफर कर सकें।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: जनाब अमित शाह ने अमूल इमदाद बाहिमी तहरीक की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टैक्सी भी इमदाद बाहिमी के इसी जज्बे के तहत काम करेगी और इज्तमाही मिल्कियत के तवस्सुत से आवाम को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। जनाब अमित शाह ने इन दिनों गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वैंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन जखीरागाहों के अलावा साहिली रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। मारूफ तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके पास पसमांदगान में उनकी अहलिया पूर्णिमा भाग्यराज, एक बेटा, एक बेटी और पोते पोतियां शामिल हैं। भाग्यराज एक मुमताज फिल्मसाज थे जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद स्क्रीन प्ले और हाजिर जवाब मुकालमों की वजह से तमिल सिनेमा में एक खास मकाम रखते थे। उन्होंने कई कामयाब तमिल फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने मकबूल हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता भी उसकी भी हिदायतकारी की थी। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय, डीएमके के सरबराह और साबिक वजीर आला एमके स्टालिन समेत कई अहम शख्सियात ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत नजर किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम कल चेन्नई में अदा की जाएगी। कोलकाता के तारातला इमारत की गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बकिया इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाज इलाकों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु।

0: Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a three-day state visit, described Seychelles as a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India as one of United States' closest strategic partners, sharing common values and interests. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat. Noted Tamil film actor and director K. Bhagyaraj passes away in Chennai at 73. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. And in FIFA World Cup, Egypt reaches knockout stage for the first time after a 1-1 draw with Iran. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रति बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि

0: भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित

0: जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेश रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर स्वागत है आपका। वक्त हुआ है 2:30 और 58 सेकेंड। ये वक्त रहता है हमारे कार्यक्रम किसान की बात का, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और हमारे किसान भाई बहनों के साथ साथ हमारे तमाम श्रोताओं के मन में कृषि से संबंधित जो सवाल होते हैं उनके जवाब से जुड़ा रहता है। तो आज गोल्ड स्टूडियो से आपके सवालों का और शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके साथ हूं मैं, आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा, और मेरे साथ हैं मेरे दोस्त
2: अरविंद, और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। पूजा, बहुत सारे इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, उम्मीद है आपने भी कराया होगा। हेल्थ इंश्योरेंस?
1: बिल्कुल।
2: लाइफ इंश्योरेंस?
1: बिल्कुल कराया है
2: जी हाँ। और लोग अपनी गाड़ी जो खरीदते तो आपस गाड़ी का भी कराया होगा?
1: जरूर जरूर, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ।
2: क्यों इतना आवश्यक क्यों है कि इंश्योरेंस कराया ही जाए?
1: भाई आप भी जानते हैं इसका जवाब, इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि तमाम तरह के जोखिम, तमाम तरह के खतरे हमारे आसपास, हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमारे पास कुछ फाइनेंशियल या ये कहें कि वित्तीय सुरक्षा के तौर पर हम रखना
2: जी
1: चाहते
2: हाँ,
1: हैं।
2: आर्थिक जो पक्ष आपने जो है पकड़ा हाँ। है कि हमारी बहुत मेहनत से कमाई से हमने गाड़ी खरीदी है, हम लोग कहीं किसी खराब स्वास्थ्य की वजह से अपने जो सेविंग से वो सारी गवा ना दें, इस तरह से चाहे हमारे सोने की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए बीमा कराते ताकि आर्थिक पक्ष हमारा उसमें सुरक्षित रहे। और यही लागू होता है हमारे किसानों की फसलों के ऊपर भी।
1: बिल्कुल
2: पूजा, कहा जाता है किसानों की जो मेहनत है उस पर पूरे देश की खुशहाली टिकी होती है, लेकिन जब मौसम की मार, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीटों का प्रकोप उनकी मेहनत पर पानी फेर दे तब उनके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम जो जिन बातों का जिक्र तुमने किया अरविंद, ये सब हमारे बस से बाहर की बातें हो जाती हैं। अब ऐसे में इतनी मेहनत से जिस फसल पर उन्होंने काम किया है, अगर वो इन वजहों से कहीं बर्बाद होती है या उस पर कुछ नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है, तो उस नुकसान की भरपाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, और यही हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी है।
2: जी हाँ, और इसी विषय के लिए, इसी उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। इस योजना को साल 2016 में शुरू किया गया था और आज ये देश की प्रमुख फसल बीमा योजनाओं में शामिल है।
1: बिल्कुल, तो आज का हमारा जो विषय है वो अपने श्रोताओं को बता दें, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी। और इस विषय में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार, जो सहायक आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोल्ड स्टूडियो में।
3: नमस्कार
2: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत भूमिका हमने बांध दी है और इसकी महत्वता क्या है वो हम और आप बेहतर जानते हैं, हमारे जो किसान मित्र हैं वो बखूबी जानते हैं। अगर हम एक आंकड़ों की ही बात करें तो 2016 से अब तक बीमा के जो किसानों ने एप्लीकेशन दी है वो 78 करोड़ से ऊपर हैं। तो हमारे एक बहुत बड़े जो हमारे किसान मित्र हैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बाकी हमारे किसान भाई हैं जो अभी तक इससे अछूते हैं या फिर किसी वजह से जानकारी के अभाव में इस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारी आज हम आपसे लेना चाहेंगे।
1: जी तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सबसे पहले तो यही कहेंगे कि आप सरल शब्दों में बताएं हमें और हमारे श्रोताओं को कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दरअसल है क्या।
3: देखिए, आप लोग ने बहुत अच्छे से बताया कि बीमा क्यों जरूरी है। हर एक चीजों की एक आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका कहीं न कहीं आपका किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, आप एक तरह से कृषि भी है, इस पर आप पूंजी लगाते हैं, पूरे मेहनत करते हैं और इससे एक आशा रखते हैं कि आपको आमदनी आएगी। उस आमदनी को अगर किसी तरह से क्षति हो जाए, क्योंकि किसान भाई जानते हैं, सभी लोग हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, कि जो कृषि जो है मुख्य रूप से जो है कृषि आपदाओं पर निर्भर करती है, और अभी बहुत सारा देख रहे हैं कि अलनीलो और बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसके कारण से जो हमारी कृषि जो एक व्यवसाय है या कृषि जो हमारी एक्टिविटी है बहुत सारा प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर हो गया। तो किसानों को हम लोग जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से एक आर्थिक सुरक्षा दी जाती है, अगर किसी प्राकृतिक आपदा जो नॉन प्रिवेंटेबल हो, मतलब आप जिसको प्रिवेंट कर नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से अगर क्षति होती है तो उसकी जो नुकसान होती है, फसल की जो नुकसान होती है, जो आपकी आमदनी आनी थी उसमें जो क्षति होती है, उसकी भरपाई हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के माध्यम से करते हैं। ये एक बीमा योजना है, इसको भारत सरकार और जो चला रही है, इसमें राज्य सरकार भी भागीदारी होती है और इसमें जो है किसानों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान इसमें अगर बीमा योजना में सम्मिलित होंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। और जैसे आपने बता रहे थे कि बहुत सारे किसान अभी हुए हैं, कुछ किसान छूट गए, अभी तक हम लोग जो है पूरे क्षेत्र में अगर आप देखा जाए अगर तो हम लोग अभी इसको, क्योंकि ये जो है योजना कुछ इसमें आवश्यक दस्तावेज और आवश्यक चीजें होती है जो राज्य सरकार इसमें सम्मिलित होना होता है, क्योंकि किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है और राज्य सरकार के लिए भी स्वैच्छिक है। तो अभी तक जो है 24 राज्यों में इसमें चलाई जा रही है और पूरे देश में अभी अगर आप देखेंगे तो 40% जो क्रॉप ग्रॉस क्रॉप एरिया है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब ज्यादातर किसान इसमें कवर हैं, खास करके जो मंझोले और छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो सारे इसमें कवर हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा 40% क्रॉप एरिया आप लगभग कवर कर चुके हैं, यानी 60% में अभी भी संभावना है। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जहां ये लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है।
3: हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि ये योजना स्वैच्छिक है
1: जी।
3: कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें रिस्क होता ही नहीं है। तो पहला चीज है, किसान भाई देखते हैं कि कुछ ऐसे जहां रिस्क है ही नहीं वहां क्यों इंश्योरेंस कराया जाए। आप कोई जैसे हेल्थ में भी आप देखेंगे कि हर एक आदमी इंश्योरेंस नहीं कराता, जबकि ऐसी है। लेकिन इसी तरह से इसमें है कि जहां हम लोग ये चाहते हैं कि जहां जहां इसमें राज्य सरकार नोटिफाइड करती है, क्योंकि हर एक जगह रिस्क, क्योंकि सरकार को भी पैसा देना होता है, राज्य सरकार को भी पैसा देना होता है, तो हमें अपने बजट के अनुसार ये देखना होता है कि जहां ज्यादा ज्यादा रिस्क है वहां हम कवर करें। तो एक थोड़ी सी लिमिटेशन है इसमें जो चीजों को, लेकिन जहां जहां जिस क्रॉप में ज्यादा रिस्क है, जहां किसानों को होती है, उसको हम लोग नोटिफाइड करते हैं, उसमें किसान भागीदार होते हैं। किसान को भागीदार होना जरूरी है।
2: डॉक्टर सुनील, 2016 फरवरी 2016 से ये योजना शुरू हुई है, लगभग एक दशक पूरा, और कृषि जो है वो सालों साल से हो रही है। आई थिंक सबसे पहले जो व्यवसाय में कृषि ही आती है जब ना ह्यूमन इवॉल्व हो रहा है, खेती करनी, और अभी जाके फसल बीमा का जो है एक शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई? खेती तो सालों से हो रही है, फसल हो रही है, प्राकृतिक आपदाएं पहले भी थी, किसान जानते भी पानी कब ज्यादा होगा कब कम होगा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें?
3: नहीं नहीं, देखिए इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने पहले बीमा योजना लागू नहीं की थी। बीमा योजना जो है 85 से ही भारत सरकार लागू की है। स्वरूप छोटा था, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें विकास होता गया, क्योंकि इसमें विकास इसलिए है कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि कोई चीज अगर हम योजना लगाते हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एक होती है। तो हम बीमा कंपनियों में, क्योंकि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसमें क्षति की गणना हो जाती है, तो हम कैसे क्षति की गणना कर पाए और कहीं सही तरीके से कर पाए, तो ये सारे चीजें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की विस्तार हुई, योजनाओं का स्वरूप बदलता गया। और पहले भी योजना थी लेकिन इतने वृहत स्तर पर किसान उसमें भागीदार नहीं होते थे, स्केल बढ़ा था, उसमें किसानों की

0: वो प्रीमियम ज्यादा थी। अभी धीरे धीरे इसमें प्रीमियम किसानों को कम की गई है, समान रूप से की गई है, बहुत सरल बनाया गया है। इसमें बहुत सारे जोखिम, पहले क्या था कि केवल खड़ी फसल के लिए देते थे, इस योजना में है जो बुआई पूर्व से फसल कटाई के उपरांत की भी जितने क्षति होती है उसको भी कवर किए गए। तो योजनाओं को जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में ये सारी समावेशित किया गया और बहुत बृहत रूप से इसको किसानों के हित में समग्र रूप से रिस्क कवर करने की योजना बनाई गई है।
1: डॉक्टर साहब, मैं इसी पर यही पूछना चाहती हूँ कि किस प्रकार के जोखिम इस योजना में कवर रहते हैं और कौन कौन सी फसलें हैं मुख्य रूप से, अगर हम बात करें फसलों की, जिनको इसमें कवर किया गया है, मोटे तौर पर अगर हम नाम लेना चाहें कुछ फसलों का।
0: देखिए, इसमें लगभग सभी तरह की फसलें कवर होती है जो राज्य सरकार अधिसूचित करती है, क्योंकि राज्य सरकार को अधिसूचित करना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स प्लस डेटा मुहैया कराना होता है जो फील्ड लेवल पर कितना क्षतिपूर्ति हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे खाद्यान्न का, तिलहन का और दलहन सारे इसमें हैं, प्लस बागवानी फसलें जो है, दोनों तरह की बागवानी फसलें हैं, एनुअल वाला भी है और पेनियल क्रॉप्स भी है। कुछ क्रॉप्स, जैसे दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, जिसके कुछ होते हैं जो डायरेक्ट उपज आंकड़ा गणना की जाती है, जैसे आप क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से करते हैं, उसको हम लोग यील्ड बेस्ड कहते हैं कि यील्ड के आधार पर उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसकी यील्ड की गणना नहीं कर सकते, जैसे आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हुआ, आम की खेती है, लीची की खेती है, जहां उसका जो होता है प्लांट की साइज पर होता है, उसका एज पर होता है, डेंसिटी पर होता है, तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो उसको हम लोग मौसम आधारित बीमा योजना में कवर करते हैं, जिसको RWS रीस्ट्रक्चर वेदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में कवर करते हैं। तो इस तरह की दोनों तरह की है, जिसमें हम लोग अगर टोटल देखा जाए तो हम एग्रीकल्चर क्रॉप में 48 तरह के क्रॉप्स को हम लोग कवर करते हैं इसमें, और हॉर्टिकल्चर में 68 क्रॉप्स को हम लोग कवर कर रहे हैं केवल खरीफ में, रबी में फिर अलग करते हैं। तो इस तरह के आप देखेंगे टोटल हम लोग 200 क्रॉप से ज्यादा हम लोग इस योजना में कवर करते हैं।
2: रोक्सिल, आपने बोला कि अब बहुत ज्यादा वृहद कर दी गई है, इसमें बहुत चीजों को समावेशित किया गया है, और पहले जो है अब इसके अंदर प्रीमियम बहुत कम देना है किसानों, पहले शायद ज्यादा देना होता था, अब बहुत कम देना है, लेकिन प्रीमियम कितना देना है और क्या फसल आधारित है कि इस फसल का प्रीमियम ऐसा होगा, क्योंकि किसानों को प्रीमियम कम देना है तो फिर तो सबको इसका जो है बीमा कराना चाहिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को, और आपने कहा लेकिन स्वैच्छिक है, तो मैं जानना चाहूंगा वो बिंदुओं पर आप रोशनी डालें जिससे हमारे किसान भाई और आगे आए और अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं।
0: देखिए, प्रीमियम दर बहुत कम रखा गया, पहले प्रीमियम दर जो था समान रूप से रखा गया है कि जो है इसमें 1.5% से 2% जो है वो देना होता है दोनों क्रॉप्स को, खरीफ में जो है वो 2% की दर है, रबी में 1.5% की दर है, और जो बागवानी फसलें हैं उसमें 5% की दर होती है, और बाकी जो शेष जो प्रीमियम बचती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती है। इसमें जो है कि कुछ जैसे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिली स्टेट्स है, उसमें जो है 90% जो प्रीमियम जो किसानों के अलावा जो प्रीमियम है उसका जो है केंद्र सरकार वहन करती है, बाकी राज्य सरकार वहन करती है। तो इसमें देखा गया है कि किसानों की भागीदारी जो है प्रीमियम में कम है, सरकार इसमें ज्यादा प्रीमियम देती है जो ओवरऑल प्रीमियम आता है, और क्लेम में भी वैसे फायदा है। जैसे अगर आंकड़ों की बात करें हम लोग, तो अभी तक हम लोग इस योजना के माध्यम से 2,00,000 करोड़ के से ज्यादा का हम लोग इसमें बीमा दावों का भुगतान किसानों को किया गया है, जिसमें किसान को जो प्रीमियम दिया गया है केवल 40,000 करोड़ रुपया जो है किसान ने दिए हैं, उसके एवज में जो किसानों को 2,00,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस वक्त आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात, और आज जिस विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार सहायक आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हमारे साथ इतनी मूल्यवान जानकारी साझा कर रहे हैं, वो विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी। इसी विषय पर अपनी बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा।

0: किसान, अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सुनील। तो डॉक्टर साहब अब काफी बात हुई, अब हम आते हैं इस पर कि इसके लिए पात्रता क्या है, कौन किसान पात्र है इसके लिए, कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं और उसको अप्लाई कैसे करें, कहां पर किया जाए।
4: देखिए इसमें पात्र की बात है तो पहले तो देखना है कि राज्य सरकार ने क्या क्रॉप्स अधिसूचित किए हैं। तो इसमें जो है राज्य सरकार ही क्रॉप को अधिसूचित करती है, तो जो क्रॉप अधिसूचित करते हैं उस क्रॉप्स को बोने वाले हर एक किसान जो है इस योजना के पात्र हैं, चाहे वो खुद का अपना खेत में काम कर रहे हैं या बटाईदार या जिस तरह से कर रहे हैं या ऋणी है या गैर ऋणी है, मतलब दोनों सभी तरह के किसान इसमें पात्र हैं। इसमें केवल यह देखने की है कि जो ऋणी किसान है जो केसीसी के माध्यम से ऋण लेते हैं उसको बैंक जो है स्वैच्छिक रूप से उनका बीमा कर दिया जाता है, जब तक कि वो किसान जो है उसके ऑप्ट आउट ना कर ले। तो ऑप्ट आउट अगर किसान कर लिए हो तो उनसे पुनः निवेदन है कि या तो आप जाके दूसरे माध्यम से कराएं या बैंक को कहें कि हमारा बीमा कर दे। जो किसान जो ऐसे किसान है जो केसीसी माध्यम से ऋण नहीं लेते हैं उस फसल के लिए, फसल मेन चीज है, उस फसल के लिए ऋण लेना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग अभियान चलाते रहते हैं कि जल्दी से जल्दी केसीसी सबको ले और केसीसी सैचुरेशन अभियान भी चलाया हुआ, अभी भी चल रहा है अभियान। अगर नहीं अभियान में अभी तक किसान छूटे हुए हैं, अभी केसीसी नहीं लिए हैं, तो ऐसे किसान जो है वो जाके कॉमन सर्विस सेंटर्स या जो अभी आप सुन रहे होंगे कि ऐप भी हमारे हैं उसके माध्यम से या पोर्टल पर जाके सीधे सीधे बीमा करा सकते हैं या बैंक में भी जो आपका निकटतम बैंक है उसके माध्यम से बीमा कराएं। बीमा कराने के लिए एक अंतिम तिथि होती है, क्योंकि आप बीमा कराएंगे अंतिम तिथि से पहले आप बीमा करा लेंगे तभी इसका लाभ ले पाएंगे। जो जनरली जो है हर एक क्रॉप्स के लिए हर एक राज्य में अलग अलग होती है, मुख्यतः जो है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होती है, कुछ राज्यों में अलग होती है, जिसकी अधिसूचना हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से दी जाती है। जो किसान पढ़े लिखे हैं या अदर हैं उनको हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप जो है आप पोर्टल पर आइए, हमारे जो PMFBY.gov.in है इसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलती है कि कितना प्रीमियम है, किस क्षेत्र में आप कौन बीमा कंपनी काम कर रहे हैं, उनका नंबर क्या है, कितना आपको प्रीमियम देना है पर हेक्टेयर, सम इंश्योर्ड क्या होगा, यह पूरी जानकारी हम लोग पोर्टल पर देते हैं, उसी के माध्यम से दिया जाता है। अब बीमा कराने के लिए दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो देखिए इसमें हम लोग खेती पर आपका किस खेत पर कर रहे हैं और किस क्रॉप पर कर रहे हैं ये दो और कौन कर रहे हैं ये तीन चीज आवश्यक होते हैं, और चौथा चीज होती है अगर आपको क्लेम आया तो हम कहां भुगतान करेंगे, तो ये चार चीज आवश्यकताएं होती है। तो इसके लिए उसी का दस्तावेज हम लोग केवल इसमें निर्धारित किया कि आप खेत का विवरण दीजिए, खेत का विवरण जो है ऑलरेडी हमारे जो डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है भूमि का उसी से हम लोग ले लेते हैं, जहां डिजिटाइज नहीं है वहां खेत का विवरण देना पड़ता है। फसल को स्वघोषणा करना पड़ता है किसानों को कि हम ये फसल लगा रहे हैं, उसके आधार पर उसकी सम इंश्योर्ड होती है और उसकी प्रीमियम निर्धारित होती है। खाता का विवरण हम लोग देते हैं कि किसमें अगर क्लेम आएगा तो क्या होगा। इसके अलावा आधार और हम लोग मोबाइल नंबर लेते हैं ताकि एक ऑथेंटिसिटी बना रहे और हम उनसे संपर्क करता रहे, इतना ही दस्तावेज है। प्रीमियम जो है दर 2% का है, जो सम इंश्योर्ड है उसका 2% आपको किसानों को देना पड़ता है, बाकी जो है वो सरकार भुगतान करेगी।
3: डॉक्टर साहब आपने जुलाई के एक विंडो बताई इसमें अप्लाई करने के लिए, क्या खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए सेम ही होती है?
4: नहीं नहीं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो खरीफ फसलों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है इसलिए किसानों को हम बताना चाहते हैं कि खरीफ पर ही अभी करें और ये अपने क्षेत्र पर आप देख ले जरूर। ये जो है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जनरली होता है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, तो किसान केवल इसको जो है आप जाके पोर्टल पर या अपने कार्यालय से कृषि कार्यालय से कर ले, ये हमें सूचनाएं दी जाती है। इसके अलावा हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जैसे 1 जुलाई से हमारी जो है महीने की बृहद प्रोग्राम चलती है, जिसमें हम पहला जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई फसल बीमा सप्ताह करते हैं, जिसमें हमें हर एक गांव में हमें फसल बीमा पाठशालाएं आयोजित की जाती है, जिसमें हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं, उनको बताया जाता है कि इसका लाभ क्या है, इसको कैसे ले, क्योंकि बीमा कराना ही जरूरी नहीं है, बीमा का लाभ कैसे ले ये किसानों को बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीमा का लाभ लेने के लिए दो चीजें हैं कि पहले इसकी क्षतिपूर्ति में क्षति किस क्षति कवर की जाती है, अगर क्षति आपको हुई तो इसकी सूचना कहां दी जाती है और कितने समय में दी जाती है। तो ये जो चीजों को किसानों को बताया जाता है, हम लोग इसको प्रशिक्षित करते हैं कि इसका लाभ कैसे लिया जाए, कि दोनों पहलू हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है।
5: साहब, आपने उस सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने जिक्र किया पोर्टल का, तो एक बार तो यही अनुरोध है कि ये पोर्टल के बारे में आप दोबारा हमारे श्रोताओं को बता दें क्लियरली कि कौन सा पोर्टल है जहां जाके ये जानकारी ले सकते हैं। दूसरा सवाल मेरे मन में ये था कि ये पोर्टल उनके लिए तो लाभकारी होगा जो पढ़े लिखे किसान हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो थोड़े कमजोर होंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में, उन तक ये जानकारी किस तरह से पहुंचे, तो उसका जवाब आपने माकूल जवाब अभी हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने दे ही दिया। यानी तमाम तरह की कोशिशें जारी हैं, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इन योजनाओं का लाभ उठा सकें जो मुख्य रूप से उन्हीं के लिए चलाई जा रही है। तो ये पोर्टल के बारे में एक बार आप दोबारा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
4: ये पोर्टल हमारा जो है, देखिए हमारा pmfbi.gov.in है, और उसके अलावा जो है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के नाम से भी आप करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे तो ये सारी सूचनाएं आ जाएगी। इसके अलावा जो है, आप जैसे बोले कि बहुत सारे किसान जो है स्मार्टफोन नहीं रखते हैं या जो है नहीं कर रखते, उनके लिए सरकार विशेष ध्यान दी है। इसके लिए जो है केआरपी, जो एक नया तरह का जो केआरपी हम लोग किए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया है, जो हेल्प लाइन नंबर है जो है 1444 7 1 4447, ये 5 अक्षर का जो है ये हम लोग किसानों को कहते हैं याद करें, 5 अंकों का है। इसमें आप जो है कहीं से आप कभी भी किसी भाषा में आप जो है जुड़े और अपने बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें कि कहाँ आपके निकटतम कहाँ बीमा हो रहे हैं, क्या दस्तावेज है, कब क्या तारीख है, तो ये आपको हमें आपको पूर्ण सहायता देगी। नोट केवल हमको इसी केवल इंश्योरेंस करने के लिए, इंश्योरेंस के बाद की भी पूरी सहायता देगी। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है, जो मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि अगर स्मार्टफोन यूज करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी कृपया नोट कर ले, इसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका है 7065514447 7065514447, ये नंबर के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं सूचनाएं।
5: तो हमारे श्रोताओं के लिए हम भी बताना चाहेंगे, ये जो व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर साहब ने अभी कहा यह है 7065514447 7065514447, यानी 7065514447 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप जानकारी ले सकते हैं इस विषय पर। और एक आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब केआरपी हेल्पलाइन, यानी कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन के बारे में आपने कहा, ये हेल्पलाइन नंबर है 1444447, 5 अंकों का ये नंबर आपको याद रखना है। अगर आपको इस विषय से या इस विषय से इतर भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो डॉक्टर आगे बढ़ते हैं, और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। हमने ये तो पूछ लिया कि एप्लीकेशन कैसे देते हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब एक्चुअली में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको कि प्राकृतिक आपदा की वजह से, किसी रोग की वजह से और किसान की जो फसल को अब हानि हुई है, तो उस हानि की गणना कैसे होगी, किसान कैसे उसका दावा करेगा कि मुझको अब फसल बीमा जो मेरी हानि हुई है वो मुझे मिले, उस प्रक्रिया को भी हम जानना चाहेंगे।
4: क्या ये किसानों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप बीमा लेते हैं तो फायदा बताना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें जो है कि आप पहले की योजनाओं में केवल खड़ी फसलों का बीमा किया जाता था, इसमें जो है खड़ी फसलों के पहले, मतलब आप सोइंग से पहले भी अगर जोखिम आती है कि बुआई पूर्व से लेकर फसल कटाई के बाद तक की जोखिम को कवर करते हैं, जो खेतों का जोखिम है। कि जैसे मान लिया जाए कि आपने बुआई कर रहे हैं, बुआई करने की प्रिपरेशन कर लिया और कैसी आपदा आ गई जिसमें आपको बो ही नहीं पाए फसल, तो किसानों को तो जितना बुआई जितना मेहनत लगना था वो लग गया, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो ऐसे जहां किसान अगर नहीं बुआई हुई तो राज्य सरकार उसकी अधिसूचना कर देती है कि ये जो है वो प्रिवेंटेड सोइंग यहां जो है वहां लग गई है, वहां 25% का

0: सम इंश्योर्ड का भुगतान बीमा सभी किसानों को कर दिया जाता है और उसको अल्टरनेट क्रॉप्स को लगाने की इजाजत दी जाती है। अगर वो भी बीमा है तो उसका भी बीमा फिर से कराया जाता है। इसके अलावा खड़ी फसलों में है तो खड़ी फसलों में तीन तरह की जोखिम होती है। एक तो कभी आप मौसम बिना देखेंगे, जैसे अभी मौसम चल रहा है कि खड़ी फसलों में कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बाढ़ आ सकते हैं, ओला आ सकते हैं, तो दो तरह की होती है। एक ऐसे आपदाएं खड़ी फसलों में आती है जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिसको क्षेत्रवार दृष्टिकोण से कहते हैं, और कुछ ऐसे जोखिमें होती है जो कुछ गांव को, कुछ पॉकेट को या कुछ क्षेत्रों को करती है, जैसे आपका ओला वृष्टि हुआ, हेल स्टॉर्म हुआ, है ना, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, या फिर जो है प्राकृतिक आग लगता है, में आप देखेंगे नेचुरल फायर जो होते हैं जंगलों में, या फिर क्लाउड ब्रस्ट होता है जंगलों में, तो ऐसे ऐसे जो होते हैं उसको केवल जहां जहां क्षति होती है उसी को गणना की जाती है और उनको भुगतान किया जाती है। लेकिन सबसे पहला चीज है कि क्षति होती है इसकी सूचना देना आवश्यक है, खास करके जो स्थानीय आपदा के कारण, जो अभी मैंने पांच लिया है नाम, जो आपके स्थानीय आपदा के कारण है, जहां जहां बृहत रूप से होती है वहां संज्ञान राज्य सरकार ले लेती है, लेकिन अगर छोटे स्तर पर हुई है राज्य सरकार संज्ञान कैसे लेगी, तो इसकी सूचनाएं देनी पड़ती है किसानों को। तो 72 घंटे में सूचनाएं दे दे किसान तो आपको आपको लाभ मिल जाएगा बीमा को। इसके अलावा कुछ ऐसे फसलें होती है जो कटाई के बाद खेतों में रखी जाती है, उसको भी 14 दिन तक कवर किया जाता है। अगर उसमें ओलावृष्टि, साइक्लोन, अदर कारण देखते हैं कि बहुत सारे जो आजकल फसलें हो रही थी, जो खासकर रबी क्रॉप्स में देखते हैं कि जो फसलें होती है कटाई के बाद जो खेत में रहती है उसमें बहुत सारे आंधी आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, जिसके कारण पूरे खराब हो जाते हैं, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, तो ऐसे कवर को भी इसमें इस योजना में कवर किया गया है। इसकी गणना की आपने बात किया है तो इसमें जो है गणना की जाती है कि जो कितने प्रतिशत की क्षति हुई है उसमें उसी के आधार पर उसको सम इंश्योर्ड होता है। सम इंश्योर्ड जो होता है हर एक क्रॉप्स का, हर एक जगह का अलग अलग होता है, वो जिला स्तर पर निर्धारित होता है और ये क्रॉप्स में नोटिफाइड ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करती है और इसकी जानकारी आप जब बीमा लेते हैं उस टाइम फिर दी जाती है और पोर्टल में भी इसकी पूरी जानकारी रहती है। तो ये सारी सूचनाएं जो है लगभग जो है पोर्टल पर सारी उपलब्ध है। किसान भाई जो चूंकि अभी 9 साल हम लोग कर चुके हैं तो बहुत सारे शिक्षित हो चुके हैं, बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और चूंकि अगर हम बताएं इसमें लाभार्थियों की तभी तक जो है हमारे पास जो है 12 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो हम आप कह सकते हैं कि लगभग हमारे जो कितने जितने किसान लगभग जो है कहीं न कहीं 9 वर्ष में इस योजना का लाभ लिए हैं, और एक बार जो लाभान्वित हो जाते हैं वो पूरी योजना का पूरा जो है वो समझ लेते हैं और वो एक तरह से कहिए कि वो हमेशा इस योजना से जुड़े रहते हैं।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, एक दो सवाल और मैं चाहूंगा कि आप उनका जो है जानकारी दें, उत्तर दें। क्लेम लगभग कितने दिनों में किसान के खाते में जो है पैसा आ जाता है, दावे का भुगतान जिसे हम कहते हैं बीमा का? और दूसरा, क्योंकि आप लगातार किसानों के बीच में जाते हैं, एजुकेट भी करते रहते हैं, आपको कौन कौन से प्रश्न आपके सामने आए जो या कहेंगे जो भ्रम की स्थिति लोगों में रहती है इस बीमा को लेने के लिए, और उनको हम चाहेंगे कि आप एड्रेस करें कि इसमें जो लोग भ्रमित हैं और नहीं ले पा रहे हैं और वो उनको ये लेना चाहिए?
0: देखिए, ये तो पहले तो है कि आप कितने इसमें निर्धारित किया गया, क्योंकि आप जो है किसानों को हम लोग चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत लाभ दिया जाए, तो ये बीमा योजनाओं में बीमा कंपनियों को ये सुनिश्चित करना है कि जब इसकी गणना हो जाती है, क्योंकि पहला यील्ड की गणना, क्षति की गणना, तो ये राज्य सरकार और बीमा कंपनियां दोनों मिलकर करती है। ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है जिसको हम लोग कहते हैं कि फसल कटाई जो होती है तुरंत करके और उसकी जो यील्ड डेटा है उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, और जब जैसे पोर्टल पर अपलोड होंगे तो आपको 21 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना होता है। अगर 21 दिन के अंदर अंदर भुगतान बीमा कंपनी नहीं करेंगे तो 12% ब्याज दर के अनुसार उसको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। तो ये चीजें हैं कि इसमें जवाबदेही भी फिक्स की गई है। किसानों को भ्रम होती है चीजों को कि भाई ये सरकारी योजनाएं हैं, इसको लाभ कैसे ले, तो इस योजना में पहले लाभ लेने के लिए मैं किसानों से अनुरोध करता हूं कि योजना में जुड़े, जुड़ने के बाद ही इस योजना के बारे में कैसे कैसे लाभ लेना है, क्या क्या कवर है, इसकी विशिष्ट जानकारी हम लोग समय समय पर देते रहते हैं, इसका लाभ लें।
2: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत मूल्यवान जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहां साझा की इस कार्यक्रम के जरिए। हमारा विषय था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार, और अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी पूजा को और मेरे साथ अरविंद को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर।
3: एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर इसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उपराष्ट्रपति ने उद्यमियों से उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का भी आग्रह किया। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष भाग, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र

3:25 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 MHz और शुरू होता है साथियों आपका अपना मन भावन, जो मन को भाता है वही जुबां पे आता है और जैसे ही वो जुबां पर आता है तो आप हमें मेल करते हैं और कैसे करते हैं भला, fmgoldair@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। पहला गीत मेरी तरफ से आप सबके लिए।

इस गीत को सुनते ही एक नई उम्मीद जो है वो दिल में जाग जाती है, और उम्मीद हमेशा हमेशा अपने दिल में हमें जगा कर रखनी है ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। बहरहाल आपके जो संदेशे हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वो पता याद है जिस पर आपको हमें मैसेज करना है, fmgoldairdelhi@gmail.com। और जी पहले हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं पटियाला पंजाब से। सोमदत्त जी हैं, कैरव हैं, ज्योति रानी हैं और गुरमंत कौर मनु हैं। इन्होंने जिस गीत की फरमाइश की है वो भी हमने नोट कर लिया है जी, बिल्कुल नोट कर लिया है। अब यहाँ पर ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और आज़ाद नगर हरिद्वार से ये हमें संदेशा भेजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और भी बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी साहब हैं, फातिमा खातून हैं और सुरीत रमेश साहू जी ने हमें ये मैसेज किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर छत्तीसगढ़ अगर हम चलें तो यहाँ पर हमारे पास हमारे दोस्त हैं, सूरज राजपूत हैं, पुष्पा राज हैं और संतोषी हेम प्रभा हैं और गुनीराम राजपूत जी हैं। गोल्डन रेडियो संघ उत्तर प्रदेश से ये साथी हैं, संगीत पसंद करते हैं, रेडियो सुनना पसंद करते हैं, तो एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने अपना। और राजेश कुमार वर्मा हैं, ये प्रीति वर्मा हैं और कार्तिक हैं, आयरन हैं इसमें। और अगर हम भिलाई छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा जिन्होंने हमें ये मैसेज किया है। और मेरिट कैंट से हमारे पास जो संदेश आया वो भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं दिग्दर्शन जी और कविता गौर जी, आपने अभी तो एक मैसेज किया हमें, और आप इस तरह अगर आप 10-10 मैसेज करेंगे तो हो सकता है कोई जो पहली बार हमें संदेशा भेज रहा है, अपनी फरमाइश भेज रहा है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाए। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आप में से किसी एक की पसंद

0: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
3: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: वेलकम जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 100.1 मेगाहर्ट्ज आपके साथ। आज शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा, हर बार की तरह आपको मैं एक बार फिर वो पता बता दूं जिस पर आपको अपना जो संदेश है हम तक पहुंचाना है, fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। जल्दी जल्दी से हम तक मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि 3:38 और बस 55 सेकंड हो गए, तो फिर आप ये ना कहिएगा कि हमारा जो संदेश है वो नहीं दिया गया। झारखंड से उत्तम कुमार भगत जी हैं, श्वेता भगत हैं, किसु तासु और अर्णव आनंद है, इनके साथ सत्यमानंद भी हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कहूं उत्तम कुमार जी, जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आप उनकी तरफ से नाम ना लिखें, आप उन्हें कहें कि एफएम गोल्ड 100.1 पर एक प्रोग्राम आता है, उसे सुनिए और फिर उसमें अपनी फरमाइश खुद भेजिए, तो मज़ा एक अलग होता है। चलिए, यहाँ ये कस्बा बिलराम से हमारे पास ये संदेश आया है, किसने भेजा है, इरशाद अहमद शाह साहब हैं।

जहां बेगम है और मरियम जी हैं इनके साथ। और भी आपके पता है बहुत सारे संदेशे आए हैं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रेगुलर हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनके नाम भी हमें याद हो गए। कल गाड़ी चला रही थी, मन भावन सुन रही थी, तो मैं जब मैं सुन रही थी वो नाम जो आरजे कह रही थी, तो मुझे याद आ रहा था कि ये वो हमारे साथी हैं जो रेगुलर हमें सुनते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर रोशन लाल देवगन हैं, कौशल्या देवगन जी हैं और हेमलता डिम्पल देवगन हैं। और मुझे जब एहसास होगा कि मैंने बहुत सारे नाम ले लिए हैं तो मैं ना बीच में एक दिलकश दखल अंदाजी करूँगी एक बहुत खूबसूरत मेलोडियस गीत की। कोल्हापुर से हमारे पास संभाजी सुतार जी हैं और चेतन सुतार हैं और इनके साथ हैं सारिका। और बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद एक। गणेश जी आपने दोबारा ये मैसेज भेज दिया है और ऐसे आप अगर करेंगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। चलिए हरजिंदर सिंह भाटिया जी, बहुत स्वागत आपका, आप भी हमारे एक रेगुलर साथी हैं जो रोज़ मन भावन प्रोग्राम सुनते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने जमशेदपुर से हमें संदेशा भेजा है और एंजल भाटिया, इनके साथ सोनू भाटिया हैं और पप्पी भाटिया हैं। अब मुझे एकदम से एहसास हुआ कि नाम जो हैं वो अच्छे खासे मैंने ले लिए हैं और अब बारी है एक गीत की। आप में से ही किसी एक हमारे साथी ने बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश की है। 1960 में ये फिल्म आई और पहले सुनिए इस गीत को, फिर महसूस कीजिएगा।

साथियों, मुकेश जी ने बहुत कम गीत गाए, शायद 1000 भी पूरे नहीं गाए, लेकिन उनके गाए हुए हर एक गीत को अगर आप आंखें मूंद कर सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी आवाज में पूरा का पूरा जो दर्द है वो उड़ेल दिया हो। ये खासियत एक सिंगर की होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले fmgold@delhi@gmail.com जी, आपको इस पते पर हमें अपना संदेशा भेजना है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है आपके संदेश से जब हम पढ़ते हैं। अमोल मनकर साहब, आपने महाराष्ट्र से हमें ये अपनी चिट्ठी भेजी है, डिजिटल चिट्ठी। अमोल जी हैं, इनके साथ शोभा ताई मानकर हैं, और दीपाली और श्लोक कुमार हैं, साथ में और भी इनके तीन साथी हैं, सहदेव दामोदर और शशिकला जी हैं, और सुमेद कुमार भी हैं इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए, और इसी तरह आप हमें अपने संदेशे भेजते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। एक के बाद एक आते हैं संदेशे, कई बार ना ओवरलैप भी हो जाते हैं, लेकिन वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी पूरी कोशिश रहती है। हाँ जी, ओम कुमार जी आप हमें भेज रहे हैं संदेशा, साथ में कुमकुम जी भी भेज रही हैं, तो एक साथ आप सबका नाम ले लें। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और कुमकुम जी हैं, और इसके साथ साथ किशन वंजानी जी हैं, न जाने कहाँ से इन्होंने हमें ये लिखकर भेजा है। उत्तम नगर से बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी हैं, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल हैं। अब आगे अगर बढ़े हम तो चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी हैं, बिमला अनेजा हैं इनके साथ। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, महावीर कॉलोनी सोनीपत से हमें भेजा है ये संदेशा प्रताप वर्मा जी ने। जी हाँ, प्रताप वर्मा जी हैं ये। और इसके साथ साथ अब क्या कहते हैं आप, हम एक गीत सुन ले, चलिए एक एक संदेशा और ले लेते हैं। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और आपने एक गीत की भी फरमाइश की है। गीतों की फरमाइश तो आपके हर मैसेज में सबकी ही होती है, लेकिन हम हमारे भी क्या करें, एक आध गाना ही सुना सकते हैं, हम नाम चाहे हम ज़्यादा ले लें, लेकिन गीत हम किसी एक की पसंद का सुना सकते हैं। लखपत राज जी, वेद प्रकाश चौहान जी और सुबेदार अमर सिंह जी, आपने कहाँ से हमें ये लिखा है, आनंद पर्वत दिल्ली से आपने हमें संदेशा भेजा है। बहुत सारे मैंने नाम ले लिए हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गीत 80s का गाना है, और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे हर बार ये गीत नया सा लगता है। अब ये आप सुनकर बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है क्या। अच्छा, इस गीत में आवाज़ें किस किस की हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप जान ही जाएंगे। लता जी हैं, साथ में सुरेश वाडेकर जी हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

स्वागत जी एक बार फिर आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 और शनिवार की दोपहरी है जो अब कुछ ही देर में शाम में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में फिलहाल मन भावन प्रोग्राम का आप लुत्फ उठा रहे हैं, आपके साथ आपकी दोस्त सीमा वर्मा। और समय जो है वो अब इतना नहीं रहा है हमारे पास कि हम आपको पता बता सकें, लेकिन फिर भी अगर आपको नोट करना है आगे के लिए तो fmgold@delhi.gmail.com आप नोट कर सकते हैं। हमारे पास गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन।

मस्कीन आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन मेघा जी का मैसेज आया चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान खुराना का भी ये संदेश आया है। बहुत शुक्रिया आपके संदेश के लिए। नबी हसन अब्बासी साहब, शहनाज अब्बासी साहब, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन जी और रसीद वारसी, अनम अब्बासी और यशफ अब्बासी जी हैं। आपने हमें कहाँ से ये संदेशा भेजा है? एटा से अभी आपने हमें ये संदेशा भेजा है। वहीं अगर हम भवानीगढ़ पंजाब की बात करें तो परमिंदर सिंह जी का संदेशा आया है और इनके साथ हैं लखन पाल हैं, इनके साथ सुरेंद्र कौर हैं और जसप्रीत है। अब मेरी एक नज़र घड़ी की तरफ है क्योंकि एक गीत तो आपको चलते चलते हमने सुनाना है, बड़ा खूबसूरत गीत है। तो आप अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं नामों से हटकर ज़रा गीत की ओर आगे बढ़ती हूँ और आपको वो खूबसूरत गीत सुनाती हूँ। साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ और बोल कुछ ऐसे हैं कि दिल में उतर जाते हैं।

साथियों, इसी के साथ अपनी दोस्त सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए मनभावन प्रोग्राम संपन्न करने की, और जिन साथियों का हमने संदेशा नहीं लिया है बस उनसे यही कहेंगे कि इतनी आसानी से कैसे भला हारेंगे तुम्हें, थक गए लब तो आंखों से पुकारेंगे।

0: गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। भारतीय प्रवासियों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। इससे पहले प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गया है। इसकी पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। इसके लिए रीवा के किसानों को 150 रूपये प्रति किलोग्राम का मूल्य मिला। ये मूल्य स्थानीय बाजार भाव से अधिक है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Seychelles for his 3-day visit. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Pat

स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। वक्त नोट कीजिए साथियों, 4:11:13। आइए आपको आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर आने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे देते हैं। साथियों, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर हम और आप मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा और आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 पर हर घंटे आप समाचार भी सुनते हैं। और इसी कड़ी में बात अगर करें हम तो 5:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और 5:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 5:30 गाते गुनगुनाते आप सुन सकते हैं मेरे यानी सीमा वर्मा के साथ और हम रहेंगे 80 और 90 के दशक के गीतों के साथ। 6:00 हिंदी में समाचार होंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और इसके बाद कौन आपसे मुखातिब होंगी किस कार्यक्रम को लेकर, ये आप तक हम जरूर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आइए खूबसूरत गीत सुन लेते हैं फिल्म अगर तुम ना होते का।

साथियों, लता जी के गाए हुए इस गीत के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में कौन कौन से कार्यक्रमों का आप आनंद ले सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि आप ट्यून्ड इन हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 के साथ और 6:10 पर आप सदाबहार गीतों के साथ होंगे, साथ आपके होंगी विभा लक्ष्मी। 6:20 पर शाम संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं और 6:30 का वक्त मार्केट मंत्रा का रहेगा। और साथियों, आप 7:25 पर सांझ ढले जरूर सुनिएगा, विभा लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी कुछ खूबसूरत गीतों के साथ और जानकारियों के साथ। एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम 8:10 पर आप सुन सकते हैं जिसका नाम है मधुरिमा, जिसके साथ आप गीतों को तो जरूर जोड़ेंगे लेकिन उनके शास्त्रीय अंग के बारे में भी आप जान पाएंगे। तो अब हम एक गीत सुनते हैं और इस गीत के बाद हम सब मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में चेयर प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समेकित वेतन रहेगा 2,00,000 रुपए प्रतिमाह। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें, सेवाएं और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्वालिटी 2 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 रिक्ति, सहायक CAMO 2 रिक्ति, सहायक 1 रिक्ति, स्टेशन इंचार्ज 2 रिक्तियां तथा प्रशिक्षु तकनीशियन ट्रेनी तकनीशियन 13 रिक्तियां। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए देखिए पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pavanhans.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर टैब पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन पदों के लिए TGT अंग्रेजी 2 रिक्तियां, TGT विज्ञान 1 रिक्ति, TGT गणित 1 रिक्ति, बढ़ई 1 रिक्ति और इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। प्रशासनिक या नीतिगत कारणों से रिक्तियों को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। आवेदकों को इसके लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आवासीय स्कूल है। पशुपालन और डेयरी विभाग आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए रिक्तियां। पशु पोषण विशेषज्ञ 1 रिक्ति, भर्ती की पद्धति रहेगी प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और बायोडाटा प्रोफॉर्मा आदि देखने के लिए आवेदक पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है dahd.gov.in। आवेदन इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं। सुश्री अनामिका निगम अवर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग राइट स्टिल्ट फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपथ नई दिल्ली 1। ईमेल आईडी है anamika.edu.nic.in। बुनकर सेवा केंद्र वीवर्स सर्विस सेंटर खानापारा गुवाहाटी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कनिष्ठ बुनकर 10 पद, कनिष्ठ छपाईकर 3 पद, कनिष्ठ सहायक बुनाई 3 पद, कनिष्ठ सहायक प्रसंस्करण 2 पद और परिचारक बुनाई 7 पद तथा बढ़ई 4 पद। इन पदों के विरुद्ध भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या चयन के समय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नोटिस को रद्द करने का या सुधार का भी अधिकार है। योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रपत्र के बारे में देखिए वेबसाइट पर जानकारी। वेबसाइट का पता है www.handlooms.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके

0: अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज विद शगुन चोपड़ा एंड करिश्मा राय टुडे। Well, Karishma was telling us about the last segment of the program where we pay our tributes to the personalities who made a difference. So in that particular section, listeners, we will be remembering the man who made music magic. Well, more on that later in the show. Welcome. In about 20 minutes, actually. And we also have a selection of news. Our discussion segment, Dateline India, we will be discussing two topics, not just one, but two topics today, and other reports and capsules as well. Let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles for a three-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's Vision Mahasagar.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारी में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं।
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches cooperative-based taxi service Bharat Taxi in 14 major cities in Gujarat.
0: तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन।
1: IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next two days.
0: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक-एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा।
1: Well, listeners, this is our discussion segment, Dateline India. So let's begin with it. Well, I want to begin with the question, what comes to your mind when someone talks about building a strong economy? Well, I'm sure, it was a rhetorical question, it must be massive factories or maybe corporate headquarters or rather towering scrapers. Well, certainly they matter a lot, and I'm not denying the fact that fact, but what if I told you that some of India's biggest economic success stories begin in places much smaller, in a village workshop or in a family owned enterprise or maybe in a tiny manufacturing unit? Well, think about it.
0: बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और हर मोहल्ले में एक ऐसा भरोसेमंद दर्जी होता है जो हमेशा समय पर काम पूरा करता है। और हमारे इलाके की उस पसंदीदा मिठाई की दुकान के बारे में भी जरा सोच लीजिए, जिसके बारे में हर कोई घर आने वाले मेहमानों को बताता है क्योंकि पीढ़ियों से उसका स्वाद वैसा ही बना हुआ है।
1: And just to add there, perhaps a young entrepreneur who started selling handmade products online and now delivers across the country, well, individually they may seem like small businesses, but together they form one of the strongest pillars of India's economy. Well, these are India's micro, small and medium enterprises, which we better know as MSMEs.
0: और हर साल 27 जून को यानी आज दुनिया भर में यूएन एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों एमएसएमई उद्यमों का जश्न मनाने के लिए है जो अर्थव्यवस्थाओं को जमीनी स्तर से मजबूत बनाते हैं। दुनिया भर के कुल व्यवसायों में लगभग 90% हिस्सेदारी रखने, वैश्विक रोजगार का 60-70% हिस्सा पैदा करने और दुनिया के जीडीपी में आधी तक का योगदान देने वाले एमएसएमई आर्थिक विकास, इनोवेशन और आजीविका की रीढ़ है।
1: ऑफ कोर्स, ट्रू। द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड जून 27th एज एमएसएमई डे इन 2017, ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइजिंग देयर वाइटल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो टुडे दीज एमएसएमईज दे आर डूइंग फार मोर देन रनिंग बिजनेसेस। सो they are contributing a lot and they are actually creating jobs, preserving traditional crafts as well.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वे इनोवेशन को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट में मदद कर रहे हैं, और इसके अलावा अनगिनत सपनों को हकीकत में भी बदल रहे हैं। कई मायनों में भारत के एमएसएमई की कहानी भारत के बदलाव की कहानी है।
1: सो करिश्मा, वन स्मॉल आइडिया बिकम्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी, and one enterprise transforms an entire family, This is how actually real economic growth in reality spreads. And as these enterprises continued to grow, India recognized that they needed greater support. That's why the definition of MSMEs was revised last year, giving businesses more room to expand while continuing to enjoy policy benefits. After all, success should never become a reason to lose support. Instead, growing businesses should be encouraged to dream even bigger. Well, in the year 2025-26, this happened exactly, and it became a landmark year for India's MSME ecosystem. More than 8.7 crore enterprises registered through the Udyam registration portal and Udyam Assist platform, bringing millions of businesses into the formal economy.
0: बिल्कुल, और छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंस या लोन मिलना अक्सर सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहता है. सोचिए कि आप अपने वर्कशॉप को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोन के लिए महंगी गारंटी या गिरवी रखने के लिए कोई भी चीज नहीं दे पा रहे. बहुत सारे उद्यमियों के लिए यह एक आम समस्या रही है. इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को मजबूत किया.
1: And how did they did it exactly? Well, they increased the ceiling from 5 crore rupees to 10 crore rupees. So collateral free loan guarantees, they were expanded. India's traditional industries are also writing remarkable success stories. We'll tell you about it with an example. Well, if we consider khadi as an example, once seen mainly as a symbol of India's freedom movement, today it has become a symbol of sustainable growth and rural entrepreneurship, don't you think, Karishma?
0: बिल्कुल, और खादी और ग्राम उद्योग की बिक्री 1,27,000 करोड़ रुपए के शानदार आंकड़ों को पार कर गई है. अच्छा शासन सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, यह तब समस्याओं को हल करने के बारे में है जब लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. उत्पाद बनाना तो बस आधी यात्रा है, ग्राहकों को खोजना भी उतना ही जरूरी है. सरकारी खरीद को बढ़ावा देने वाली पहलों और एमएसएमई उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म के जरिए हजारों उद्यमों को ज्यादा पहचान मिल रही है.
1: एंड करिश्मा, एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट्स, एंड दिस वाज डन अंडर द इंस्पायरिंग थीम ऑफ वाइब्रेंट एमएसएमईज विकसित भारत. And this was made even more special, well, with more than 2/3 of the participating stalls, they belonged to women entrepreneurs.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, कई अन्य लोगों ने एससी एसटी और दिव्यांग उद्यमियों का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि सच्चे विकास का मतलब यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को सफल होने का मौका मिले. हर सफल उद्यम के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पीएम विश्वकर्मा है, जो भारत के पारंपरिक कारीगरों के लिए समर्पित एक योजना है.
1: सो कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, बास्केट मेकर्स एंड मेनी अदर आर्टिजन्स, दे आर रिसीविंग स्किल ट्रेनिंग, अफोर्डेबल क्रेडिट एंड डिजिटल सपोर्ट. एंड इफ वी टॉक अबाउट रूरल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस एंड इवन मॉडर्न स्टार्टअप्स, द जर्नी ऑफ इंडियाज़ एमएसएमईज़ इज बिकमिंग इंक्रीसिंगली इंक्लूसिव.
0: और जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, एमएसएमई की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है. हर सफल उद्यम की शुरूआत एक साधारण सपने से होती है, एक ऐसा सपना जिसे कड़ी मेहनत से संवारा गया हो, जिसे अवसरों का साथ मिला हो और जो इनोवेशन से मजबूत हुआ हो, और इसके साथ ही जिसे आम भारतीयों के दृढ़ संकल्प से ताकत मिली हो.
1: सो ऑर्डिनरी इंडियंस डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, व्हेन मिलियंस ऑफ सच ड्रीम्स दे कम टुगेदर, दे डोंट जस्ट बिल्ड बिजनेसेस, दे बिल्ड एन एंटायर नेशन. एंड परहैप्स दैट्स द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ इंडियाज एमएसएमई स्टोरी. नो ड्रीम इज एवर टू स्मॉल व्हेन इट्स बैक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडिया. हाउ ग्रेट. नाउ वी मे प्रोसीड. Today it's also International Day of Deaf Blindness.
0: तो श्रोताओं, कि आपने कभी ये सोचा है कि कभी बिना ठीक से देखे या सुन पाए दुनिया में चलने फिरने की कोशिश की हो कभी आपने? अब सोचिए कि अगर दोनों ही क्षमताएं चली जाए तो क्या होगा. दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह हकीकत है. डेव ब्लाइंडनेस यानी कि बधिरांधता केवल अंधेपन और बहरेपन का योग नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और बेहद जटिल संवेदी विकलांगता है.
1: So it is a disability with its own challenges, where vision and hearing cannot compensate for one another, making everyday communication as well as mobility, education and even the simplest activities and interactions incredibly difficult. Well, imagine not being able to hear your loved one's voice or see their smile and other people.

0: people, birds, animals.
1: बिल्कुल और बिल्कुल और शगुन जरा सोचिए कि आपको बातचीत करने की जरूरत है लेकिन आपको पता चलता है कि दुनिया आपको समझने के हिसाब से बनी ही नहीं है तो आप कैसे बातचीत करेंगे। जो लोग सुन और देख नहीं सकते उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी विकलांगता नहीं होती बल्कि उनका अदृश्य होना होता है क्योंकि सुनने और देखने की अक्षमता को अक्सर एक अलग ही विकलांगता के तौर पर नहीं पहचाना जाता। इसलिए अनगिनत लोग नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों और यहां तक कि सरकारी आंकड़ों में भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं।
0: Well, yes, when you're invisible in the system, access to education, healthcare, employment and essential services becomes an uphill battle. But inclusion begins with recognition. So recognizing them, the United Nations declared June 27th as the International Day of Deaf Blindness, and this date, it actually marks the birth anniversary of Helen Keller, an extraordinary author, educator, global advocate. Well, we know her for her timeless, she has been a timeless symbol of courage, resilience and determination. So despite being deafblind, Helen Keller broke barriers through education and unwavering perseverance, inspiring generations across the world. So, and she also proved that deafblindness does not define a person's potential.
1: और उनकी जिंदगी इस बात की एक मिसाल बन गई कि जब समाज रुकावटें खड़ी करने के बजाय उन्हें हटाता है तो संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। असल समावेश का मतलब सिर्फ ऐसी जगहें बनाना नहीं है जहां आसानी से पहुंचा जा सके।
0: एग्जैक्टली करिश्मा, इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट नो वन इज अनसीन, नो वन इज अनहर्ड एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। So listeners, as part of our series Prakriti Ki Baat Akashwani Ke Saath, we bring you a conversation on Chhattisgarh's Garbage Cafe. Run by Ambikapur Municipal Corporation, the cafe offers meals in exchange for plastic waste. And in this program, we speak to Ritesh Saini, in charge of the Garbage Cafe.
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 PM. You can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 AM.
1: और श्रोताओं, समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
0: So Karishma, we'll head to Kozhikode first. Well, I want to begin with this. Drugs actually, this idea actually, drugs don't just destroy lives, they threaten the future of an entire generation. I'm sure everybody would agree with me. From stricter enforcement to public participation, the battle against narcotics is gathering momentum. With the centre and states working in close coordination, anti-drug operations are being intensified across the country, and Kerala's Operation Tufan is emerging as a key example of this united effort. Let's find out more details now.
5: The central and state governments are taking strong steps across the country against narcotics that are destroying the new generation. The International Anti-Drug Day was observed on June 26 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi's government to focus on accelerating the fight against narcotics. The Narendra Modi government has adopted a zero-tolerance policy against drugs. Operation Tufan, which is being implemented in Kerala, is strengthening the fight against narcotics. The state government has formulated a plan to suppress the mafia gang by detecting all drugs products, including chemical drugs, crossing the border. Special squads and investigation teams of the police and excise have been formed in each district as part of this. The investigation team is keeping a special vigil to prevent drugs sales by focusing on schools, colleges and universities. Operation Tufan is being implemented by

0: bringing together everyone, including teachers, parents, public representatives, political parties, and voluntary organizations. As part of this, Minister Ramesh Chennithala is traveling all over Kerala and turning prominent individuals into Operation Tufan warriors, especially in the border areas of Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod in Malabar. The investigation teams are paying special attention to seizing the drugs that the drug mafia operating in Bengaluru is trying to smuggle through luxury cars, buses, and other vehicles. The other day, a pledge against drugs was organized in schools in each assembly constituency under the leadership of MLAs. After the announcement of Operation Tufan, 417 cases were registered in Kozhikode district alone till June 25th, and 422 people were arrested. 2,954 cases were registered in the state. 3,176 people were arrested with नार्कोटिक. सुरेश वीके फॉर परिक्रमा, आकाशवाणी न्यूज, कोझिकोड.
1: और बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई की. महाराष्ट्र में बारिश के मौसम में पानी की बूंदों के साथ ही उमड़ता है भक्ति का सैलाब. लाखों वारकरी मन में विठोबा से मिलने की आस को लेकर पंढरपुर का रुख करते हैं. पूरे महाराष्ट्र सहित आसपास के इलाकों से विभिन्न संतों की पालकियां आषाढ़ी वारी में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थान करती हैं. उन्हीं में से है संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बहन संत मुक्ताई की पालकी हाल ही में रवाना हुई. सुनते हैं यह कहानी हमारी मुंबई संवाददाता से.
2: विठोबा के नाम का जय घोष, तार और मृदंग की गूंज के बीच संत मुक्ताई की पालखी अहिल्यानगर जिले के मुक्ताई नगर तहसील के कोथड़ी गांव से पंढरपुर की ओर चल पड़ी है. लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये केवल एक डिंडी है. इसके बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं संत मुक्ताई संस्थान के अध्यक्ष रविन्द्र पाटिल.
3: इस साल 318 साल मुक्ताबाई का वारी का है. मुक्ताबाई की वारी यानी पालखी जो है इसका अनन्य साधारण महत्व है. ज्ञानेश्वर, सोपान, निवृत्ति, मुक्ताबाई ये चार भाई बहनों का जो उपदेश महाराष्ट्र में किया जाता है या उनका इतिहास उसका पुनर्जीवित किया जाता है. जो उन्होंने समाज के लिए उपदेश किया है ज्ञानेश्वर के माध्यम से, उसी तरह से समाज में वारी का अनन्य साधारण महत्व है. महाराष्ट्र एक संतक भूमि है. हमारी संत मुक्ताई की पालखी पंढरपुर जाने के लिए 30 दिन लगते है. 600 किलोमीटर का प्रवास है. 5,000 वारकरी इसमें शामिल होते है. इस साल अनन्य महत्व ऐसा है, इसी संत मुक्ताई के लिए पंढरपुर जाने के लिए चांदी का रथ इस महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहब इन्होंने चांदी का रथ समर्पित किया है. उसके साथ मुक्ताई पंढरपुर में जा रही है.
2: वारी संत भूमि महाराष्ट्र की शताब्दियों से चली आ रही एक ऐसी अनूठी परंपरा है जो विठोबा के प्रति वारकरियों के अपार प्रेम को तो दर्शाती ही है, साथ ही सभी भेदभावों को किनारे रखकर मानवता की पताका ऊंची रखने की सीख भी देती है. परिक्रमा के लिए राजेश यावलकर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे.
4: Now, let's head to Vijayawada. NTR district in Andhra Pradesh has earned national recognition with its innovative Ignite Cell, winning the prestigious Scotch Award for Excellence in Public Service and Citizen-Centric Governance. The award was presented at a function in New Delhi recently. Let's find out more details.
5: The Ignite Cell, which stands for Information for Growth through Nurturing Income-Generating Innovation, Technology and Encouraging Entrepreneurs, was launched in line with the state government's long-term development vision. The initiative operates at the district collectorate and the aspirational blocks of Penuganchipralu and Ibrahimpatnam. A different government department runs the cell each day to create awareness about welfare schemes and development programs while providing guidance on financial assistance, technology, marketing and entrepreneurship. NTR District Collector Dr. Lakshmi Shah said, the initiative has strengthened last-mile delivery of government services, promoted innovation and encouraged self-employment, reflecting NTR District's commitment to effective people-centric governance. The collector described the award as a recognition of the collective efforts of Team NTR District and congratulated officials for successfully implementing the initiative. He said the honor would inspire the administration to work with greater commitment towards achieving the goals of Swarna Andhra 2047 and Viksit Bharat. Allu Murli for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
1: Thank you. और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जहां मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण

0: और इसके साथ ही तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अकिलन को भी आज हम याद कर रहे हैं। वे तमिल साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे और उन्हें कई अवार्डों से सम्मानित किया गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शामिल है।
1: Well, today we're also paying tributes to R.D. Burman, the pluralist who redefined film music, fondly known as Pancham. Well, Pancham, the eminent musician and composer, brought together Indian musical traditions and Western rhythms in a distinctive style.
2: 27 June 1939, S.D. or Mrs. S.D. ko ladka
0: hua. तो आपको बता दें कि वे प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन के पुत्र थे और इसके साथ ही उन्होंने कई पश्चिमी और भारतीय संगीत का अनूठा मिश्रण दिया था।

और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ करिश्मा और शगुन चोपड़ा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर

0: पूरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फौरो ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में राजू रोशन ने राज्य में पहला स्थान और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जोयसास जोस्टेन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवांडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कोलकाता के ताराताला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
2: श्रोताओ नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपट

0: करने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पर ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत एसएलआरएम प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद एसएलआरएम सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबको वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में यह होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया। चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक एसएलआरएम सेंटर है। चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती है, उस टोकन को लेकर आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए और यहां पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
1: यस,
0: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी? आप
1: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको यह समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर है, आप प्लास्टिक को कहां बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए एक किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए

0: में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर एक रुपए प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट टाइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सके, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि दो सीट हमेशा, दो टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको दो टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ, अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूं और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊं, तो एक मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनकी तरफ।
1: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं, तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहां तक कि जो हमारे सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करते हूँ, 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है, 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम

0: डिस्कशन कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीजों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए। जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी, अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं।
1: जैविक है
0: वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं। और वो क्या होती है कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण, वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी बढ़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको। ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज। तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब
0: इसका
1: में?
0: जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था। ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे, तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं,
0: हाँ,
1: उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई,

0: आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
1: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, न केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
0: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
1: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाए फिर प्रेस करते जाए डालते जाए वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पे भी कुछ।
0: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
1: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
0: उसके रैपर
1: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15-20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
0: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: # गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
0: जापान कोरिया यहां से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी।
1: अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

5:31:33 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आज शनिवार की जानदार शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा और मेरे साथ कुछ बड़े प्यारे प्यारे से गाने हैं। बहुत सारे गीत ऐसे होते हैं जो काफी समय से हमने सुने नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सुनते हैं तो लगता है कि क्या बात है, मजा आ गया। तो ऐसा ही मजा आपको आने वाला है। कैसे आने वाला है बताती हूँ आपको। इस म्यूजिक को सुनिए, जरा पहचानते हैं आप।

इस गीत को आपने सुना, क्या जबरदस्त ऑर्केस्ट्राइजेशन, क्या बात है, मजा आ गया। हम आपको ये कह सकते हैं कि गाते गुनगुनाते की जो पहली पेशकश रही वो शानदार रही, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको भी ये जो गीत है बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, अब एक बड़ी खास बात बतानी है। आज हमारे लिए एक बहुत खास दिन है, खास तौर पर जो म्यूजिक लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। आज है 27 जून और आज हमारे पंचम दा का जन्मदिन है। आरडी बर्मन साहब, एसडी बर्मन साहब के बेटे। आज आरडी बर्मन जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत अपने होते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं।

साथियों, और आज हम उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक गीत तो ज़रूर ज़रूर बनता है। बस इन शॉर्ट यही कह सकते हैं कि आज के दिन उनका जन्म हुआ 1939 और 1994 उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। वेस्टर्न रिदम्स और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का अगर कोई मिक्सचर बनाकर एक तालमेल बनाकर लोगों तक किसी ने पहुंचाया है एक्सपेरिमेंट करते हुए और वो कामयाब एक्सपेरिमेंट होते हुए, तो आर्य बर्मन साहब को इस बात का श्रेय जाता है। मजरू सुल्तानपुरी साहब, आनंद बख्शी साहब और उनके दोस्त गुलजार साहब के साथ उन्होंने बहुत बहुत काम किया। काम तो उन्होंने सबके साथ किया, लेकिन कुछ के साथ रंग भी मिल जाते हैं और तरंगे भी मिल जाती हैं, तो कुछ ऐसी बात। और आशा जी के गाए हुए गीत उनकी म्यूज़िक डायरेक्शन में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आशा जी की आवाज़ के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो हर बार कामयाब हुए। हम अपने पंचमदा को एफएम गोल्ड की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मुस्कुरा रहे होंगे हम जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे पंचमदा।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

गाते गुनगुनाते हुए हमारा जो सफर है वो चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ। और अभी तक जितने गीत मैंने आपकी नजर किए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत भाए होंगे, और इस विश्वास के साथ कि आने वाला गीत भी आपकी पसंद का गीत होगा। याद दिला दूं आपको, आज शनिवार की जानदार शानदार शाम गाते गुनगुनाते में आपके साथ सीमा वर्मा।

हम भी आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन घड़ी की तरफ जब देख रही हूं तो अब कहना है कि अब जो गीत मैं आप तक पहुंचाऊंगी वो आज के प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा। और जाने से पहले आज आडी बर्मन जी के साथ बर्थडे शेयर पता है कौन कर रहे हैं? जी हाँ, हम सब के प्यारे नितिन मुकेश साहब, मुकेश जी के सुपुत्र, उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लता जी ने अपने मुकेश भैया, जैसे वो कहती थी, उनके साथ कितने कितने गीत रिकॉर्ड किए, कितनी यादें होंगी, स्टूडियो की यादें होंगी, रिहर्सल्स की यादें होंगी, रिकॉर्डिंग्स की, क्या क्या हुआ होगा। और उसके बाद, उनके जाने के बाद, उनके बेटे नितिन मुकेश के साथ भी लता

ने गीत गाए हैं कुछ, लेकिन कैसा उन्हें फील होता होगा ना कि जहां पर मुकेश भैया खड़े होते थे उनके साथ में ड्यूट गाती थी, आज उनका बेटा मेरे साथ गा रहा है। तो बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स रही होंगी उनके दिल में, और कितना आशीर्वाद दिया होगा लता जी ने जब इस तरह के कभी कोई ड्यूट गीत्स उन्होंने गाए होंगे लता जी के साथ। अब मैंने ड्यूट गीतों की बात की है तो एक गाना मुझे याद आ रहा है, और नितिन मुकेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस गीत को सुनते हैं, और सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे, शाद रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए सुनते हैं ये गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेश

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद

परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 44 44 2371 7106 or 2331 0481. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. आपके फोन हम सीधे कार्यक्रम में आपके सवाल हम शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हैं 2331 4444, 2331 0481 और 2371 7106 पर. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: थैंक यू. नमस्कार.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर गेन्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक. यूएस स्टॉक मार्केट इंडिसेस एज लोअर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टंबल अराउंड 10% दिस वीक.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए. अमरीकी शेयर बाजार में गिरावट और इस सप्ताह कच्चे तेल के वैश्विक दाम लगभग 10% फिसले.

0: दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त देखी गई। इसका कारण आसान नजर आती भू राजनीतिक चिंताएं, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेश में बेहतरी है। घरेलू शेयर बाजार मिले जुले संकेतों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन करते दिखाई दिए, जबकि विस्तृत शेयर सूचकांक, खासकर अगर हम मिड कैप की बात करें तो इसमें थोड़ी बिकवाली का दबाव रहा। उधर अमरीका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति से भू राजनीतिक तनाव कम होते नजर आए और भारत अमरीका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ी, जिससे निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ता नजर आया। हालांकि आईटी शेयरों में गिरावट और कमजोर मॉनसून की चिंताओं के चलते बाजार की चाल में सतर्कता नजर आई। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 298 अंक यानी लगभग आधा प्रतिशत बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 43 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में मामूली बढ़त देखी गई। वहीं बात करें रुपए की तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 7 पैसे कमजोर होकर 94.40 रूपये पर बंद हुआ। श्रोताओं आप चर्चा करेंगे, हमारे समक्ष शिशिर सिन्हा जी बैठे हुए हैं, मगर उससे पहले आइए लेते हैं कार्यक्रम की पहली कॉल। ये है कोलकाता से, इनका नाम है अनिमेश। अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: गुड इवनिंग मार्केट बोन सर।
0: गुड इवनिंग,
1: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता। सर, एट प्रेजेंट द शेयर मार्केट इज राइजिंग एंड स्टॉक मार्केट इज बेटर देन लास्ट ईयर। शुड आई इन्वेस्ट नाउ और आई शुड वेट फॉर द टाइम फॉर मोर एप्रोप्रिएट सिचुएशन?
2: Animesh Babu, you will have to keep 2-3 things in mind. If you are coming to stock market for the first time, then the time is not so appropriate at this moment. If you are a regular investor, so my advice would be whenever there is a dip, there are a number of blue chip shares where the prices are low. You can go and take some small position in that. My only concern at this moment is that what we call as a peace talk between US and Iran, there is still some concern, and that is also causing some kind of disruptions in the market. So when you are going to the market, please buy only a small quantity, not put entire money. And whenever there is an opportunity, whenever the market is on up, and if you are a regular investor, book profit. Proper book profit in installment, invest in installment. That would be the right strategy at this moment.
3: Moving on, the major US stock indices settled lower yesterday. The Nasdaq Composite Index dropped 0.24% to close at 25,298. The index registered its fifth consecutive losing session as investors rotated out of key technology stocks and into more defensive areas of the market. The Dow Jones Industrial Average dipped 0.1% to end at 51,876, while the S&P 500 dropped marginally to settle at 7,354. For the week, the S&P fell 2% and the Nasdaq lost 4.6%, while the Dow outperformed, registering a gain of 0.6%. So, Shishir, what happens in U.S. Markets generally mirrors across the world. We will talk about that after we have spoken to Amit Jha from Delhi. Amit, a warm welcome. Please ask your question.
4: हाँ नमस्कार सभी को
3: जी।
4: सर सिन्हा सर से मेरा प्रश्न है सर कि अब तो जो क्रूड ऑयल है वो 72-73 डॉलर के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो क्या अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे जो प्रेशर था, दबाव था, वो कम होगा सर? और दूसरी चीज सर कि जो आईटी कंपनीज के बारे में है सर कि सेक्टरल वाइज देखा जाए तो आईटी कंपनी आज भी मतलब उतने दबाव में है, चाहे वो एआई का इम्पेक्ट हो या क्लाउड का हो, तो क्या इन सब चीजों से आईटी कंपनी हमारी कब तक उभर पाएगी? क्योंकि अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम स्टॉक खरीद कब खरीद, 30-40% नीचे हो गई है, एक हमने धीरे धीरे

0: तरीके से 10-10 करके भी हमने क्वांटिटी ली, उसके बावजूद अब लग रहा है कि पता नहीं ये पैसा हमने लगा दिया है, ये आने वाले दिन में क्या रहेगा। धन्यवाद सर।
1: देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है तेल कंपनियों के ऊपर, जो आपने कहा कि कच्चे तेल के भाव $72 प्रति बैरल पे आ गए हैं, तो उनके ऊपर दबाव कम हुआ, निश्चित तौर पर दबाव कम हुआ है। और एक आम आदमी के नजरिए से अगर मैं आपके तरफ में मौजूद रहूं तो मैं यही कहूंगा कि दाम घटने चाहिए पेट्रोल डीजल के, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके आधार पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें तय की जाती हैं। एक और बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत जो है उसकी जो व्यवस्था है उसको हम लोग इम्पोर्ट पैरिटी प्राइसिंग मैकेनिज्म कहते हैं। इसको अगर बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूं कि जो पेट्रोल डीजल अगर हम वहां से आयात करें किसी भी देश से और वो यहां पर आकर के जो उसका भाव बनेगा उसी आधार पर खुदरा कीमत तय होती है। दूसरा ये भी होता है कि रोज रोज के जो भाव में उतार चढ़ाव होता है उसके आधार पर आपकी खुदरा कीमतें बदलती नहीं है। तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक अगर मैं आपकी तरफ हूं तो निश्चित तौर पर कहूंगा कि हाँ कीमतों में कमी करने का एक मौका है, दबाव कम हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि दाम घटेंगे। आपका दूसरा प्रश्न आईटी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, एक अजीब सी विडंबना देखिए कि पहले हमने कहा कि एआई आ रहा है इसीलिए आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, अब ये कहा जा रहा है कि एआई कंपनियों पर दबाव है इसीलिए आईटी कंपनियों पर दबाव बन गया है, तो ये दोनों ही परिस्थितियां बन गई हैं। तो अब ऐसे में एक निवेशक होने के नाते आपने कहा कि मैंने किस्तों में थोड़ी खरीदारी करी है, उसमें क्या करें, 30-30%, 40-40% गिरावट आई है। मुझे लगता है कि आईटी कंपनियों में थोड़ा सा एक समय हमें देना होगा, मतलब आप कह सकते हैं 6 महीने से साल भर का, परिस्थितियां शायद जैसे ही ये वैश्विक अनिश्चितता जो है उसमें और गिरावट आएगी तो आईटी कंपनियों में स्थिति बेहतर होने की हम उम्मीद कर सकते हैं।
2: बिल्कुल शिशिर, अपने अगले कॉलर को हम जोड़ते हैं प्रोग्राम में। ये चेन्नई से है, इनका नाम है काशीनाथ। काशीनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: जी नमस्कार,
3: मेरा सवाल ये है शिशिर साहब से
1: जी
3: कि जो बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन होता है उसमें मैं 5% अपना निवेश से 5% करना चाहता हूँ, तो जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में जाकर के डायरेक्ट ऑफिस से करते हैं तो उसका ऑफिस वो कहाँ कॉन्टेक्ट करने से मैं महीना में 1000 रुपया एसआईपी करना चाहता हूँ बिटकॉइन में, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं अपना पूरा इन्वेस्टमेंट का 5-10% बिटकॉइन में होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा।
1: काशीनाथ जी, मैं उन विशेषज्ञों से बिल्कुल ही खिलाफ जाके कहूंगा और वो कहूंगा कि बिटकॉइन में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा माध्यम है जिसके आगे पीछे कौन है हमें कोई नहीं पता है। कल होकर के अचानक उसके भाव में 40% की गिरावट हो सकती है और कल होकर के भाव 50% बढ़ सकता है, तो एक लालच तो हर किसी को होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो है क्या, कौन उसके पीछे है, हमें नहीं पता है। तो जो कोई भी कहता है कि 5% भी लगाइए, मैं कहता हूं 5% भी मत लगाइए, जब आपके पास कई और दूसरे विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो डाकघर की जमा योजनाएं हैं, चाहे म्यूचुअल फंड का एसआईपी हो, वहां पे आप जाएं, आप ईटीएफ में जाएं, बहुत सारे ईटीएफ आपके लिए अवेलेबल है, वहां पर आप लगाएं, आप इन जगहों पर लगाएं जहां पर मूल बचने की उम्मीद बनी रहे, ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर सूद तो छोड़िए मूल पे भी पूरी तरह से बट्टा लगे।
4: लीगल इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है,
1: बिल्कुल नहीं है। और देखिए, हमारे यहां बिटकॉइन जो है जिसको हम लोग कर की भाषा में वर्चुअल डिजिटल असेट के नाम से जानते हैं, और वहां पर बहुत स्पष्ट है कि आप जैसे ही खरीदारी करते हैं या बेचते हैं तो आपको टीडीएस आपका जो है वो 1% का है, उसके अलावा अगर आपने थोड़ी भी कमाई करी तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हैं या नहीं है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके आगे पीछे कौन है हमें नहीं पता है, तो हम ऐसे माध्यम में क्यों जाए जहां पर कोई नियम ही नहीं है। और रिजर्व बैंक बार बार आगाह करता है कि ऐसी मुद्राओं से आपको दूर रहना चाहिए जिसको तकनीकी तौर पर आप मुद्रा भले कह दें कि उसमें वैल्यू ऑफ मनी है, वैल्यू ऑफ स्टोरेज है, लेकिन उसके पीछे कोई आधार नहीं है।
4: जॉइनिंग अस फ्रॉम भोपाल, we have Shankar with us. A warm welcome, Shankar.
5: Thank you, sir. Sir, ये मेरा सवाल है सीमेंट मिड कैप सीमेंट कंपनीज, मिड कैप सीमेंट कंपनीज के बारे में। हाउ इज देयर फ्यूचर? इनका प्राइसेस शेयर की ऑलमोस्ट 52-week लो पे पड़ी हुई है, मोर और लेस, नॉट लार्ज कंपनी। और दूसरा थोड़ा सा बताइए, फर्टिलाइजर सेक्टर कैसा है अभी? उनके भी शेयर कोई ज्यादा नहीं चले, हालांकि

0: ये ऑयल का इनपे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, स्पेशली सीमेंट पे, फर्टिलाइजर पर थोड़ा बहुत आता है प्रोडक्शन पे, लेकिन ऑयल का इस पे तो आता नहीं सीमेंट पे। तो ये क्यों दबी हुई क्यों है, और क्या अभी अगले 6 महीने में इनका फ्यूचर अच्छा है, या फिर बिकॉज ऑफ अलनीनो कुछ प्रॉब्लम रहेगी सीमेंट सेल में भी? थैंक यू सर।
1: देखिए, सीमेंट का जो दो कारणों से हम थोड़ा भाव पे असर देखते हैं, एक तो जब बुनियादी क्षेत्र में यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर निवेश में बेहतरी आती है तो उसके शेयरों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये एक अजीब सी इस समय स्थिति देखने को मिल रही है कि जब सरकार इस साल 11.21 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कर रही है, पूंजीगत खर्च कर रही है, उसके बावजूद सीमेंट के शेयरों में थोड़ी हमने गिरावट देखी है, थोड़ी क्या काफी गिरावट हुई है कुछ खास शेयरों की बात करें तो। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस साल लगभग 10% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और ये अगर मैं 5 साल का CAGR उनका देखूं, मुझे लगता है शंकर जी इस बात से वाकिफ होंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर भी बढ़ोतरी हमने करीबन 12% की देखी है 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। तो सीमेंट में मुझे उम्मीद काफी बेहतर है, हो सकता है एक मोमेंट्री आप उसमें गिरावट देख रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मॉनसून के खत्म होने के बाद जब रियल एस्टेट की गतिविधियां बढ़ेंगी तो उसके ऊपर उसका असर अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा आपका सवाल था फर्टिलाइजर का। देखिए, फर्टिलाइजर के दाम अचानक से कम हो गए हैं, बीच में काफी भाव बढ़ गए थे ग्लोबल मार्केट में, जैसे ही चीन ने संकेत दिए उसके भाव औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो फर्टिलाइजर को लेकर के चूंकि उसमें हमारी आयात निर्भरता काफी ज्यादा है, तो वहां पर थोड़ी सी मुझे मतलब कह सकते हैं कि आपको अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वहां पे अभी दबाव बना रहेगा।
2: दिल्ली से हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि एक रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में किन किन एसेट क्लासेस का होना जरूरी है, यानी कि गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट, फिक्स इनकम, आपका इक्विटी, ये चारों में से क्या चारों का होना जरूरी है, या फिर सिर्फ 3 या 2 एसेट क्लास से ही अच्छा खासा पोर्टफोलियो रिटेल निवेशक बना सकते हैं?
1: देखिए योगेश जी, उम्र के हिसाब से भी निर्भर करता है, जैसा कि अगर आप 30-40 के उम्र ब्रैकेट में हैं तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा हाई रख सकते हैं आप, फिर दूसरे नंबर पे आप फिक्स्ड असेट को यानी फिक्स्ड डिपॉजिट या डेट असेट को आप रख सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप सोना को रख सकते हैं, क्योंकि रियल इस्टेट में क्या है कि रियल इस्टेट आमतौर पर एक बड़ा निवेश मांगता है और एक लंबे समय के लिए मांगता है। तो अगर ये 3 अगर आप देखें, जो मैंने आपसे कहा इक्विटी है, उसके बाद आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है, और तीसरा आपका गोल्ड है, तो अगर आप 40 से नीचे की उम्र में हैं तो 40-40-20 का आप रेशियो रख सकते हैं, लेकिन 40 के ऊपर आप जैसे जाएं इसको आप घटाते जाएं, यानी कि इक्विटी को कम करते जाइए, डेट को थोड़ा बढ़ाइए और गोल्ड में आप निवेश कम करिए, क्योंकि सोने को लेकर के स्थिति है कि सोना एक समय तक तो आपके लिए रिटर्न अच्छा दे देता है, लेकिन वहां पर आपके लिए यह भी जरूरत है कि जो मूल है उसको बचाए रखना, इसलिए आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। और अभी देखिए, इस समय में सोने के भाव 1.65-1.70 तक चले गए थे और फिर वो घट करके 1.40-1.45 पे आ गए, सोने चांदी में भी यही स्थिति देखी। तो अगर 40 के नीचे हैं तो 40-40-20 का रखिए, और 40 के ऊपर जाएं तो इक्विटी में कम करते जाइए, डेट में आप बढ़ाते जाइए।
2: और भिले से हमारे साथ रवि नारायण जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते मैडम, मार्केट मंत्रा को नमस्ते और सीना साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्कार
4: सर, अभी 2 हफ्ते पहले एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से शायद आप ही की बातचीत हो रही थी, तो उसमें अपने FII और DII के, अपने मार्केट के बारे में जब चर्चा हो रही थी तो FII और DII के बारे में बात करते वक्त तो उनका भी मैंने एक बार अप्रिहेंशन शो किया था कि कहीं हमारे DII जो है FII के हाथों खेल तो नहीं रहे, लगभग वही अप्रिहेंशन जो है उन्होंने भी जताया था चर्चा के द्वारा, तो इस पर मैं थोड़ा सा आई वुड बी हैप्पी इफ यू कैन थ्रो लाइट ऑन दैट। और दूसरा सवाल यह है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर जो है, खासकर AI के चलते जो है, जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है जिसमें हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता था, उसकी हालत खराब है। और दूसरी बात यह कि ये हम जो है मैन्युफैक्चरिंग को हमको फोकस ज्यादा करना चाहिए इन द लॉन्ग रन, ये इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए
1: जी
4: अपने जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ये क्या, इज इट नॉट हाई टाइम कि हमारे स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे?
1: मैं समझ गया आपके आपके राय और विचार का स्वागत है, सम्मान है। अब रहा सवाल कि क्या करना चाहिए रणनीतिकारों को कि मैन्युफैक्चरिंग

0: मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ावा देना चाहिए। हमारी सरकार और हमारे नीति नियंता इस पे लगातार काफी बात करते रहे हैं, तो इसलिए मुझे उसमें और कुछ अतिरिक्त जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका पहला प्रश्न था कि क्या जो हमारे डीएफआईज हैं वो एफपीआईज के हाथों से खेल रहे हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्तिगत मत किसी का हो सकता है और मुझे मालूम नहीं कि उस समय मैं था या कोई और था। खैर, मेरी अपनी राय ये रही है कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपने तौर तरीके हैं, उनकी अपनी सोच होती है और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है भारतीय शेयर बाजारों के लिए कि बीते कुछ समय में हमारे जो डीएफआई हैं वो एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि बाजार में उस तरीके की गिरावट हमने नहीं देखी जो किसी एक समय में होता था। पहले कहा जाता था कि अगर एक विदेशी संस्थागत निवेशक को छींक भी आई तो पूरे बाजार को बुखार लग जाता था, अब वो स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है।
1: जितेंद्र जॉइन्स अस नाउ फ्रॉम जयपुर, अ वार्म वेलकम जितेंद्र।
2: हाँ, थैंक यू सर। सर, थोड़ा सा चिंतित हूँ आईटी सेक्टर को लेकर। निफ्टी 50 के दो तीन आईटी सेक्टर है जिसमें एक दो में मैं लेके रखा हूँ, तो सर क्या ऐड कर लूँ? लंबे समय के लिए लिया हूँ तो इतनी निफ्टी 50 का शेयर है और आईटी का, तो ऐसा तो नहीं कुछ ना कुछ तो एआई को लेके करता ही होगा वो।
0: देखिए जितेंद्र जी, अगर अभी आपको याद होगा इन्फोसिस के जो हमारे अमूमन हम लोग कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक खास कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री का एक्सपोजर था। तो जो इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी साहब ने कहा कि हमारी कंपनी जो है वो एआई के दौर में भी जो है वो बनी रहेगी, हमारी कंपनियों की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए है। और ये बात अगर एनविद्या के भी अगर आप देखें सीईओ का, उन्होंने भी कहा था कि जब आपको कुछ ऐसा आईटी एआई करना हो तो उसके लिए आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होगी और ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल आईटी सेक्टर है उनकी जरूरत होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि थोड़े समय के लिए उसमें आप जरूर उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने और साल भर के बाद, कुछ समय के बाद, जैसा आपने खुद कहा कि लंबे समय के निवेश के तौर पर, तो स्थिति अच्छी नजर आ रही है।
3: श्रोताओं, अब ठाणे से हमारे साथ गुरुनाथ जुड़ रहे हैं। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, सवाल पूछिए।
4: नमस्कार मैडम
3: जी।
4: सुशील सर को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मेरे क्वेश्चन है मानसून के बारे में। सर, जो हमारे देश में जो IMD ने जो कुछ प्रेडिक्शन की है कि बारिश हमारे देश में कम हो सकती है, फिलहाल का जो नेचर बारिश का दिखा है ऐसे, मतलब मैं अभी महाराष्ट्र में देखो, इस अब 27 तारीख है, इस तारीख तक 100-150 मिलीमीटर पाउस बारिश तो होती है, लेकिन अभी 15-20-25 मिलीमीटर भी नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब हमारे GDP पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और फिलहाल एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन हमारे GDP में होता है?
0: Okay.
4: और खाद्यान्न पे क्या इसका असर पड़ेगा? थैंक यू सर।
0: गुरुनाथ जी, देखिए मॉनसून की चिंता बहुत ही वाजिब सा है और इस समय जो परिस्थिति है, जो IMD ने कहा है और तमाम एजेंसियां कह रही हैं कि हमारे यहाँ सामान्य से भी कम बारिश रहने का अनुमान है, तो उसका असर निश्चित तौर पर कृषि पर पड़ने की आशंका है। आपका दूसरा प्रश्न था कि कितना शेयर है GDP में, तो 15% से भी नीचे ही है कृषि का अगर उसमें देखें। एक अच्छी चीज हमारे पास ये है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है, तो फिलहाल परेशानी खाद्यान्न की कमी को लेकर के नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात को लेकर के है कि अगर मॉनसून सही नहीं रहा तो बुआई पे असर पड़ेगा या खरीफ की बुआई के ऊपर असर पड़ेगा, और उसका असर आपको रबी में भी देखने को मिल सकता है। तो रबी के लिए भी हमें नमी चाहिए होती है, अगर वो नमी कम रही तो रबी की बुआई और रबी की फसल पे भी असर पड़ सकता है।
1: उमेश जॉइन्स अस नाउ फ्रॉम दिल्ली, अ वार्म वेलकम उमेश।
5: नमस्कार सिन्हा जी, नमस्कार मार्केट मंत्रा
1: जी।
5: मैं बहुत टाइम से आपका प्रशंसक रहा हूँ और ऑलमोस्ट डेली ऑफिस से निकलते हुए मैं सीरियल को सुनता हूँ, आपके विचारों को सुनता हूँ। मेरा क्वेश्चन है रीट और इनविट को लेके, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को लेके, सिन्हा जी क्या सजेशन देते हैं?
0: मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने उमेश जी प्रश्न पूछा है और ये बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि कन्वेंशनल सवाल नहीं है। रीट और इनविट को लेकर के बहुत सारे जो हमारे श्रोता हैं वो चर्चा शायद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का रिटर्न उन्होंने दिया है और जिस तरीके से निवेशकों को उन्होंने पैसे दिए हैं, एक अच्छा विकल्प है। तो अभी कुछ एक सवाल हमारे पास जो आया था कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या असेट क्लास में उसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक हिस्सा जो है आप रिट या इनविट के जरिए आप जा सकते हैं, 5% ही रखें, चूंकि एक तकनीकी प्रोडक्ट है तो उसमें लगाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए।

0: का।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और निकटतम मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। और श्रोताओं, हमारे साथ देव कुमार गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। देव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: धन्यवाद सर। मैं आपसे दो बातें पूछना चाहूंगा। एक तो किसी की, आज मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने ये बताया था कि शेयर मार्केट में सब कुछ लुटाने के बाद ही वो आदमी एक्सपर्ट बन पाता है, ये तो उनकी राय थी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। और मेरे 30 लाख की कुछ पेमेंट है जो मैं एफडी में लगाना चाहता हूँ, और अब ये जो सही है कि मैं सारा का सारा एफडी में लगाऊं या मैं शेयर मार्केट में जाऊं। और दूसरा ये
0: जी देव कुमार जी, देखिए सब कुछ लुटा के शेयर बाजार में अच्छा बन सकते हैं, विशेषज्ञ बन सकते हैं, मुझे मालूम नहीं किनकी ये लोकोक्ति है, जिनकी भी है उनका सादर सम्मान करते हैं, अब उनकी अपनी सोच है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि मैं पैसे 30 लाख रुपए कहाँ रखूं, देखिए आपने फिक्स डिपॉजिट रखिए और डाकघरों की बचत योजनाओं में लगाइए। शेयर बाजार में क्यों आप ये पैसा लगाना चाहते हैं, आपके पास जब मूल बचाने का बेहतर विकल्प मौजूद है तो बट्टा क्यों लगाना चाहते हैं।
1: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
3: मेरा सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 26 एज जो है उससे कौन सा डॉक्यूमेंट मैच करना पड़ता है, वो TIS है कि AIS है?
0: रत्नाकर जी, AIS और अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 भी लेकर के रखें और दोनों को मिलाकर के देखिए, और आजकल काफी कुछ प्रीफिल्ड आने लगा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
4: मूविंग ऑन, वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन हैज सेड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एनी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड लाइज इन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर। Addressing an event on MSME Day 2026, Udayami Bharat, in New Delhi today, he said that in India, the MSME sector represents the courage and entrepreneurial spirit of first-generation entrepreneurs. The Vice President noted that the sector contributes nearly 50% of the country's total exports while consistently maintaining high-quality standards.
5: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. This is not a word just for feel happy. This is the reality, that is what we understand from the great contribution of the MSME. Yes, MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
4: Global crude oil prices registered steep weekly losses as traffic through the Strait of Hormuz improved. During the week, Brent crude August futures plunged more than 10.6% to settle at $71.99 per barrel, while West Texas Intermediate August futures shed over 9.6% to end at $69.23 per barrel. Although geopolitical concerns persist, crude oil prices retreated to pre-war levels as confidence grew that oil supplies would continue to flow through the Strait of Hormuz. Markets had previously priced in the risk of supply disruptions as tensions between Iran and Israel escalated. However, following the 60-day ceasefire agreement, those fears have eased, with investors gradually shifting their focus back to expectations of ample global oil supplies. So, what do you have to say about the rate at which we are getting the oil now, and pretty much close to what it was? Yes,
0: pre-February 27.
4: Correct.
0: I think not just the peace agreement, but also we should consider that what kind of production hike OPEC Plus has decided, and that is going to have some impact on the crude prices, and that's really a good news. We also need to understand that we do not just follow Brent or Texas, we follow what we call as the Indian basket of crude.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म

0: निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria for a 3-day visit to Seychelles. He was given a warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Appreciating the gesture, Prime Minister Modi reiterated that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Modi also thanked the Indian diaspora for the warm welcome at the airport. He said the manner in which the Indian diaspora has preserved and celebrated culture from different parts of India is appreciable. Prime Minister Modi will be the guest of honour at celebrations marking the historic 50th anniversary of independence of Seychelles. US Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration views India as one of the US's closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PM.

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
2: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे न केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशल्स की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर, जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
3: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व को जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिप्रेक्ष्य में आता था, तो महासागर है, इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम डिफेंस है सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी। तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने एम्बेसडर सज्जनार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इस इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है। चाहे हम अगर कोविड 19 के दिनों से देखें, जिस तरह से हमने पेंडेमिक के दौरान कई और देशों के साथ साथ सेशल्स की भी मदद की, हमने वैक्सीन्स पहुंचाई, उसके अलावा खाद्य सामग्री पहुंचाई, और हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले एक 175 मिलियन यूएस डॉलर का आर्थिक पैकेज भी सेशल्स को दिया गया था। तो वहां सेशल्स में इसको किस तरह से देखा जाता है, भारत की जो इमेज की अगर हम बात करें तो किस तरह की इमेज भारत की है?
3: देखिए, भारत की इमेज मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में ही बताया है, जो भारत के संबंध हमारे बहुत ही ऐतिहासिक हैं, बहुत ही पुराने हैं। वहां पर 1770 में हमारे 5 वहां पर जिसे कहा जाए वर्कर्स गए थे, लेबर गए थे, काम करने के लिए गए थे, कोई फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट उनको वहां पर ले गए थे, और वो पहले भारतीय लोग थे जो वहां पर हैं, और हमारा बहुत ही तब से बहुत ही संबंध उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो करीब 6,000 हमारे पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमारा जो डायस्पोरा है उसमें भारतीय मूल के जो लोग हैं करीब 6,000 हैं, करीब 10-11,000 वहां पर प्रोफेशनल्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वगैरह। आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए भारत ने हमेशा सेशल्स की मदद की है, सहायता

0: की है और इसके लिए बहुत ही आभारी है, सेशल्स अपने को मानता है, क्योंकि पहले हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा,
1: जी
0: जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है। अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये स्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था, तो परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मीनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल
0: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया,
1: जी
0: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशेल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में, बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में, 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया, और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है,
1: जी
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है, और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: विशाल
1: सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार। केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहां की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहां पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो 2 या 3 बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है, जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है, और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो।

0: मजबूती में आ गया हो। तो किसी को ये शक शुभा नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश हैं उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है। दूसरा है, चाहे देश छोटे हों परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है। और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है। उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया, उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ये वक्त है सांझ ढले का और आज सांझ ढले में आपके साथ है विभा। नमस्कार। आज के गीत संगीत यात्रा की शुरुआत करते हैं साल 1951 के फिल्म बाजी के गीत से, जिसने अपने मधुर बोल और सुरीले धुन से लाखों दिलों को छुआ। आवाज गीता दत्त की।

0: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
1: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
2: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
2: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

सांझ रले सुन रहे हैं आप विभा के साथ, जिसमें होते हैं वो गीत जो आज भी दिल के किसी कोने में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं और सुनने पर होठों को मुस्कान देते हैं।

ये गीत आपने सुना साल 1952 की फिल्म आन से लता दी और साथियों की आवाज में और संगीत नौशाद साहब का। और अब सुनते हैं श्री 420 से मनादा आशाताई और साथियों की आवाज में गीत जिसके हर शब्द में भाव, हर धुन में अपनापन और अंदाज में एक अलग ही जादू है। गीत कौन सा है, लीजिए सुनिए।

मुड़ मुड़ के ना देख मुड़।

0: सांझ ढले में बस इतना ही। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जो कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को 1 महीने के भीतर सील भी किया जा सकता है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की संख्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से प्रशासन को दें।
2: 1 महीने का टाइम है। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000, नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।

0: दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा कुछ नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से संबंधित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर कार्यक्रम के समापन समारोह में आज सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीक के जरिए समाधान देना था। समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, नए विचार और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
1: हम आपको रोबोटिक लैब्स और स्मार्ट क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बने। आपकी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है जो आज की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्रा सिंह कल चांदपुर खुर्द से चांदपुर कला लिंक रोड और माजरा रोड में उच्च वोल्टेज तारों के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के कुलपति के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई जानकारी में श्री संधू ने बताया कि बैठक में नई तकनीकों के बढ़ते असर और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान में बेहतर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आज के समय में प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करना या संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: विश्वविद्यालय ने बताया कि सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा देने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी सीएसएएस 2026 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और 100 से अधिक बीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि पंजीकरण केवल सीयूईटी यूजी 2026 की आवेदन संख्या के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके पास से प्रतिबंधित नशीले दवाओं की 1300 गोलियां बरामद हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 22 लाख रुपए से अधिक नकद, करीब 35 लाख रुपए के सोने के गहने, 6,20,000 रुपए के चांदी के गहने और एक स्कूटी भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में जमीन और अचल संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 4 स्थानों पर छानबीन की है। यह अभियान सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के ठिकानों पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया गया। छापों के दौरान एजेंसी ने धन के लेन देन, संपत्तियों, कंपनियों के वित्तीय विवरणों और कई अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर और एसेंट के सर्किट विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और सक्षम विनिर्माण भागीदारी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्वाभाविक केंद्र बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों और जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
3: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी में बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि शिविर ने बच्चों को केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार, अनुशासन और संस्कृति मूल्यों से भी समृद्ध किया है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्री गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10,000 पौधे लगाने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अतिरिक्त अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 106,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में यह संख्या बढ़कर 188,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री

0: संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
1: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई।
0: राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कल समझौता हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। श्री सूद ने कहा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
2: फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे जिसमें
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 1,78,000 से 1,87,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला क्वीन अनानास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
0: राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है।
4: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
3: इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल

0: शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रश्नपत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्नपत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Victoria on a 3-day visit to Seychelles. In a social media post, Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. The Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India's and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister also visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Indian Navy's indigenously built survey vessel, large INS Ikshak, reached Port Victoria in Seychelles as part of her operational deployment to the Southwest Indian Ocean region. The Defence Ministry said that the visit coincides with the 50th National Day celebrations of Seychelles. It added that the visit underscores the enduring maritime partnership and long-standing friendship between India and Seychelles. During the port call, INS Ikshak will participate in the National Day celebrations and engage in a series of professional interactions with the Seychelles Defence Forces aimed at enhancing maritime cooperation and interoperability. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has officially acknowledged the resignations of General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra. Treasurer of the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra today issued a statement on this issue. The statement says that the resignations will be discussed in the next meeting. It also assured that the silver bricks and jewellery donated by devotees are accounted for. The trust in its letter said it is deeply saddened, hurt and extremely distressed by recent incidents at the Ayodhya Ram temple. It also confirmed an FIR has been registered in the donation-related case based on the SIT's interim report, with legal proceedings underway. A major paper leak involving the Maharashtra Teacher Eligibility Test, TET, was foiled in Bhiwandi a day before the scheduled examination, with the

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर स्वागत है आपका मधुरिमा में। नमस्कार, मधुरिमा में आज बात राग भैरवी की। राग भैरवी जिसमें रे ग ध और नी को कोमल माना जाता है और म को वादी और सा को संवादी स्वर माना गया है। मुख्य रूप से ये राग सुबह के समय का राग है, पर क्योंकि ये राग इतना मधुर है इसे किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। तो पहले सुनते हैं इस राग पर आधारित एक गीत, बाकी की बातें होंगी गीत के बाद।

राग भैरवी में हमें दोनों तरह के गाने सुनने को मिल जाएंगे, हर्षोल्लास यानी खुशी भरे और करुण या शोक रस से सराबोर गाने भी। तो पहले सुनते हैं वो गीत जिसमें उमंग और खुशी झलकती है, फिल्म श्री 420 से मुकेश साहब की आवाज में।

वहीं जैसा कि हमने बात की थी कि राग भैरवी में हमें दोनों तरह के गाने सुनने को मिल जाएंगे, खुशी भरे भी और गम भरे भी। तो ये था वो गीत जिसमें थी खुशी, और आइए अब सुनते हैं वो गीत जिसमें दर्द का एहसास हो। फिल्म दो बदन से, आवाज मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

मधुरी मां सुन रहे हैं आप और बात चल रही है राग भैरवी की। राग भैरवी भैरवी थाट का आश्रय राग है और इस राग को गाकर महफिल समाप्त करने की परंपरा प्रचार में है, तो उसी परंपरा को निभाते हुए आइए सुनवाती हूँ ये गीत।

और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन। विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले आज की मुख्य समाचार। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंचे। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप के साथ, जहां पर आज ग्रुप एल में पनामा और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे मुकाबले में इसी ग्रुप के क्रोएशिया और घाना का मैच खेला जाना है। दोनों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं इससे पहले मिस्र, बेल्जियम, स्पेन और केप वर्दे राउंड ऑफ 32 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं विश्व कप में कल खेले गए मुकाबलों का पूरा हाल।
1: फीफा विश्व कप के ग्रुप मुकाबले अब अपने अंतिम दौर में हैं और नॉकआउट की रफ्तार पकड़ती दौड़ ने विश्व कप का रोमांच अपने चरम पर पहुंचा दिया है, जहां हर मुकाबला किसी न किसी टीम के भाग्य का फैसला कर रहा है। इसी कड़ी में ग्रुप जी में मिस्र और ईरान के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।
2: The final whistle blows. Two teams that gave it everything here. What a game. What drama in Seattle.
1: और इस ड्रॉ ने मिस्र को विश्व कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में एंट्री दिला दी है। ग्रुप जी में मिस्र दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि ईरान की नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। महमूद साबेर ने मुकाबले के 5वें मिनट में ही पहला गोल दागा और टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि ईरान ने जल्द ही पलटवार किया और मैच के 14वें मिनट में रमीन रेजाइन ने गोल करके स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त हो गया। इस ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एक तरफा अंदाज में 5-1 से हरा दिया। बीसी प्लेस स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। वहीं न्यूजीलैंड का अगले राउंड में पहुंचने का सपना टूट गया है। उधर ग्रुप एच में स्पेन ने उरुग्वे को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ

0: 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं उरुग्वे का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों के गोलकीपरों ने दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि मैच के 42वें मिनट में स्पेन की टीम आखिरकार 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही। बिना ने बॉक्स के किनारे से जगह बनाते हुए तेज शॉट लगाया, जो उरुग्वे के अनुभवी गोलकीपर फर्नांडो मुस्लेरा को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंचा। इसके बाद स्पेन ने ये मैच 1-0 से अपने नाम कर लिया।
1: Baena scores for Spain. 1-0 to La Roja. Gets it right back. Ferran Torres off the crossbar. It is full time. Spain win the group. Uruguay crash down the group stage for a second straight World Cup.
0: एक अन्य रोमांचक मुकाबले में केप वर्डे ने सऊदी अरब के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के साथ ही फीफा विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचकर इतिहास रच दिया है।
1: Cabo Verde came to experience the World Cup. The men from the tiny island in the Atlantic are through to the knockout phase of the FIFA World Cup on their World Cup debut.
0: ग्रुप एच में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केप वर्डे का राउंड ऑफ 32 में गत चैंपियन अर्जेंटीना से सामना होगा। ये उनके देश के फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा और अहम मैच होगा। केप वर्डे अपने वर्ल्ड कप डेब्यू में बिना कोई मैच हारे राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली तीसरी अफ्रीकी टीम बन गई है। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
2: और अब फुटबॉल के बाद बात करते हैं हॉकी की, जहां FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-1 के बड़े अंतर से रौंद दिया। लंदन में खेले गए मुकाबले में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की और एक के बाद एक विपक्षी टीम के गोल्फ कोर्स पर 7 गोल दागे।
3: लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर्स में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम का एक तरफा दबदबा देखने को मिला। पहले पाकिस्तान से 1-0 से पिछड़ने के बाद हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऐसा पलटवार किया कि विपक्षी टीम चारों खाने चित्त हो गई। भारत ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में लगातार अंतराल पर गोल करते हुए मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा और पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया। भारत ने मैच के दौरान 36 बार पाकिस्तान के सर्कल में प्रवेश किया और 13 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, इनमें से 3 पर गोल करने में सफलता मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 18 बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन वह कोई फील्ड गोल नहीं कर सका। भारतीय मिडफील्ड में हार्दिक सिंह और मनप्रीत सिंह ने शानदार खेल दिखाया। वहीं अभिषेक दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह ने लगातार पाकिस्तान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। मैच की शुरुआत में पाकिस्तान ने बढ़त बनाई और 13वें मिनट में अबू महमूद ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद भारत ने दूसरे क्वार्टर में शानदार वापसी की और 19वें मिनट में सुखजीत सिंह ने बराबरी का गोल किया। इसके बाद 26वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने मैच पर पूरी तरह पकड़ बना ली। 34वें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक पर हार्दिक सिंह ने एक बेहतरीन गोल किया। इसके ठीक एक मिनट बाद तेज काउंटर अटैक पर जुगराज सिंह ने चौथा गोल दाग कर भारत की बढ़त को 4-1 कर दिया। 41वें मिनट में सुखजीत सिंह के शानदार पास पर अभिषेक ने गोल कर स्कोर 5-1 कर दिया। 44वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक पर मिले रिबाउंड को राजकुमार पाल ने गोल में बदलकर भारत की बढ़त को 6-1 कर दिया। मैच के 54वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को गोल में तब्दील करते हुए मैच में भारत के लिए 7वां गोल दागा। ये हॉकी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लगातार 17वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में स्पेन से आगे 7वें स्थान पर आ गया है। शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
2: तो एक बेहद शानदार जीत और एक ऐसी ही जीत का इंतजार भारत को इस समय अहमदाबाद में है, जहां इस समय ABC मेंस वॉलीबॉल कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और जब तक ये मैच के लिए समाचार लिखे जा रहे थे, भारत ने पहला सेट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने लगातार 2 सेट जीते हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के ऊपर एक खास जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। सेमीफाइनल मुकाबला एक कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है, लेकिन ग्रुप स्टेज भारतीय टीम ने करिश्माई प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे
0: जी शक्ति? भारत का सेमीफाइनल तक का ये सफर टीम की करिश्माई खेल की कहानी को बयां करता है। भारत ने ग्रुप स्टेज के सभी 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है और शक्ति इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि भारतीय टीम ने इन 5 मुकाबलों के दौरान मात्र 1 सेट ही गंवाया है। भारत ने पहले न्यूजीलैंड को, फिर कजाकिस्तान को 3-0 से हराया, इसके

0: चीनी ताइपे को 3-1 से मात दी। सबसे अनोखा पल टूर्नामेंट का शक्ति यह आया कि भारत ने गत विजेता बहरीन को 3-0 से मात दी। इसके बाद अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3-0 से आसान जीत दर्ज कर ली।
1: जी बिल्कुल, मात्र एक सेट गवाया था भारत ने ग्रुप स्टेज में। क्या फैक्टर्स एनालिसिस किए जा रहे हैं भारत की इस परफॉर्मेंस पे, जो कि रेवोल्यूशनरी चेंज है ये?
0: जी, सबसे बड़ा फैक्टर की अगर हम बात करें, जो उनके कोच है, और मैं श्रोताओं को बताना भी चाहता हूं कि उनका आज जन्मदिन भी है, और कोच जो है वो ड्रैगन मिहेलोविक है, जिन्होंने बेहतरीन नेतृत्व किया है। लेकिन साथ ही खिलाड़ियों का भी शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें चिराग यादव, जोएल बेंजामिन जेबराम, जेरोम चार्ल्स विनीत और सेटर अप्पुवापु मुथुस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम के रैंकिंग को भी सुधारा। इस टूर्नामेंट में जब टीम आई थी तो 58वें पोजीशन पे थी, लेकिन अब टीम की जो रैंकिंग है वो 42वें पोजीशन पे है। और रैंकिंग का ये फायदा मिलता है शक्ति की, आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी जो भारत अच्छा कर सकती है और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकती है।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रशांत। तो भारत को उम्मीद होगी कि ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में टीम करे और वापसी करते हुए फाइनल तक का सफर तय करे। और अब बात बैडमिंटन की, जहां देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
2: थाईलैंड मास्टर्स की विजेता देविका सिहाग ने बड़ा उलटफेर करते हुए जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त रिको गुंजी को हराकर यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। देविका ने महिला क्वार्टर फाइनल में दोनों गेम के अंतिम क्षणों में संयम बनाए रखते हुए गुंजी को 22-20, 21-19 से हराया। अब सेमीफाइनल में देविका का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। डेनमार्क की इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-16, 11-21, 21-11 से आया था। वही महिला सिंगल्स के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रक्षिता श्री को कनाडा की राहेल चांद से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष सिंगल्स में अनुभवी किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लियाओ झू फू को 21-9, 12-21, 21-8 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। श्रीकांत अब सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त युदाई ओकिमोतो का मुकाबला करेंगे। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जेलब्रमेन को 23-21, 21-11 से पराजित कर पहली बार किसी BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में रौनक का सामना चीन के ताइपे के 8वीं वरीयता प्राप्त सू ली यांग से होगा। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब कार्यक्रम में बात महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जहां कल अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू कल अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच खेलने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर उतरेगी, जहां उनके सामने ग्रुप में शीर्ष पर काबिज ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती होगी। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना होगा। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश पर एक आसान जीत दर्ज की है और टीम के हौसले एक बार फिर बुलंद होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने अपने सभी मैच बड़े अंतर से जीते हैं और एक मजबूत रन रेट के साथ ग्रुप में टॉप पर है। सोफी मिलिनियो की अगुवाई में 6 बार की T20 विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने नाम के मुताबिक ही प्रदर्शन किया है। अगर वो ये मैच हारती भी है तो भी उसके लिए सेमीफाइनल में पहुंचना भारत की तुलना में काफी आसान है। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार ने भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है और इस हार से भारत की रन रेट पर भी असर पड़ा है। भारत अपने 4 में से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने 4 के 4 मैच जीत कर शीर्ष पर है। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर टीम के खिलाड़ी राधा यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
4: कोई भी ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं मुझे नहीं करना, मतलब लोग जा रहे रूथलेस प्रैक्टिस कर रहे, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट गेम है, कितना एक दूसरे को साथ में रखना है और एक दूसरे का प्रेशर थोड़ा नीचे को हटाना है, तो उस पे ज्यादा फोकस है।
3: भारत को अपने इन फॉर्म खिलाड़ियों से इस मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा पर होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा से टीम को खास उम्मीद रहेगी। इनके अलावा जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, यास्तिका भाटिया पर भी नजर रहने वाली है। गेंदबाजी में लगातार बेहतर कर रही श्रीचरणी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जिन्हें राधा यादव, नंदिनी शर्मा और रेणुका ठाकुर का साथ मिलेगा। ऐसे में हरमनप्रीत कौर की सुनवाई वाली इस टीम की नजर दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश

0: के खिलाफ मुकाबले में हुई गलतियों को सुधार कर अपने पहले T20 विश्व कप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय टीम लॉर्ड्स के इस मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर इस लक्ष्य पे भी होगी कि किस तरह से इस सफर को ऐसा बनाया जाए कि 5 जुलाई को वापस टीम फाइनल खेलने के लिए इसी मैदान पर उतर सके और हरमनप्रीत कौर की आर्मी अपनी गलतियों से सीख लेते हुए कल ऑस्ट्रेलिया की चुनौती का सामना करना चाहेगी। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत को आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड के 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 18 ओवर और 5 गेंद में 148 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। यह पहला मौका था जब आयरलैंड ने भारत को किसी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हराया है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में सर्वाधिक 50 रन बनाए। वहीं आयरलैंड की तरफ से मैथ्यूज हम्फ्रीज ने 3 और मैथ्यूज हॉलार्ड ने 3-3 विकेट लिए। हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगर आयरलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो लॉकरेन टकर ने टीम के लिए 36 गेंदों पर 50 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसने टीम को एक अच्छी बुनियाद दी और मध्यक्रम को मजबूती दी, जबकि गैरेंथ डैनली के 49 रन ने भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इस श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को इसी मैदान पर खेला जाना है, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड का रुख करेगी, जहां पर भारतीय टीम पहले 5 T20 मुकाबले खेलेगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन के इस कार्यक्रम में कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की सभी खबरों के साथ। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय और सुझाव हमें हमारे स्पोर्ट्स कैन के ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का

0: शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की

0: उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Shri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Following this, Prime Minister Modi also interacted with members of Indian diaspora. He said that Indian diaspora has long served as a vibrant bridge between the two nations, strengthening people to

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या?
2: क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
3: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आयलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटीज, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्य जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
3: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
3: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान,

0: इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कोश और उसके बाद फिर हिमालय फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है।
1: जी
0: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं कोई बड़ा भूकंप आ सकता है लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी की उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसेसरी और कोई रिस्क लूं तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड। ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं किसी सुरक्षित जैसे पलंग है बेड बहुत मजबूत होता है आप उसके नीचे घुस जाएं आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया कवर उस अपने आप को कवर कर लें सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेकर काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया तो अफवाहों पे ध्यान ना दें सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है। जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई तो घरों को सुरक्षित बनाएं पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे कहां भागेंगे कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
2: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर
1: पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉ.

0: डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे सांस सांस इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी, जब वो यहां पर लाकर के जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहां पे साफ सुनाई दे रहा है, कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस पर
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानने चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान। साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं। जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के

0: अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा

0: के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंटवार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होगा। यह पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि इस्तीफे पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी और ईंटों की गहनों का पूरा हिसाब किताब में मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो

0: US Open Badminton, India's Devika Sehwag, Kidambi Srikanth and Ronak Chauhan have reached the semifinals at the Titan Gym in the California State University. Devika caused a major upset, defeating third seed Riko Gunji of Japan in straight sets, straight games, 22-20, 21-19 in the women's singles quarterfinals. In men's singles, Srikanth defeated Chinese Taipei's Liao Zhuofu 21-9, 12-21, 21-8 to stay on course for a possible All-India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zilberman 23-21, 21-11. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, उत्तरी भारत में भी झटके महसूस किए गए। और फुटबॉल में लियांड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घ कालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS रिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के तहत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS रिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगी, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को होर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अंतरिम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तरी इराक में सुरक्षा सूत्रों ने एरबिल के पास हमले की सूचना दी। दक्षिणी मोर्चे पर लेबनान के नवाती इलाके में इसराइल के ड्रोन हमले की खबर है। ये हमला इसराइल और लेबनान के बीच अमरीका की मध्यस्थता में हुए समझौते पर हस्ताक्षर के ठीक एक दिन बाद हुआ है। हिजबुल्लाह इस समझौते को पहले ही खारिज कर चुका है। इसराइल के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लेबनान के कब्जे वाले जमीन के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति ने कहा कि भूकंप की तीव्रता मध्यम थी और इसके केंद्र के आसपास बहुत कम नुकसान होने की उम्मीद है।
4: की जो गहराई है वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और इसके झटके जो है दिल्ली NCR, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और फोर्स के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये जिन रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
1: विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। ईंधन और उर्वरक की बढ़ती कीमतों, सीमित राजकोषीय संसाधनों और खाद्य सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के कारण देश पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस पैकेज में उर्वरक आयात और चावल उत्पादन को समर्थन देने के लिए 30 करोड़ डॉलर शामिल हैं। नगद सहायता, आजीविका सहायता और आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति सहित आपातकालीन व्यय के लिए 71 करोड़ 30 लाख डॉलर आवंटित किए गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमरीका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंडो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको

0: match. And now, before we close, here are the highlights of the bulletin. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Ceasefire between US and Iran under pressure following a series of retaliatory strikes between the two sides. 6.2 magnitude earthquake hits Afghanistan, tremors felt across North India. And in football, Leandro Trossard's double helps Belgium beat New Zealand 5-1 to reach FIFA World Cup knockout stage in Vancouver. That concludes tonight's World News Bulletin. For more updates, stay tuned to Akashvani. Good night.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

10:32 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है हर श्रृंगार आपके साथ। मैं विकास, स्वागत आप सबका।

किशोर कुमार साहब की आवाज थी और इस गीत के लिए कह सकता हूं कि इस गीत के दो वर्जन हमारे सामने देखने को मिलते हैं और दोनों के दोनों गीत कमाल के, एक रफी साहब की आवाज में और दूसरा किशोर दा की। फिल्म का नाम था प्यार का मौसम और गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक रहा आरडी बर्मन साहब का। आरडी बर्मन एक ऐसा नाम, या कहूं हिंदी सिनेमा का एक ऐसा हस्ताक्षर जिनके गीतों को आज भी हम कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर देखते ही देखते हैं, फिर वायरल होती रीलों में या फिर कभी ना कभी किसी न किसी विज्ञापन में। हाँ, हमारे दिल में ये नाम तो बसा ही हुआ है। प्रोग्राम का अगला गीत भी पहुंचाता हूं आरडी बर्मन का ही कंपोज किया हुआ और कोशिश करेंगे आज पंचमदा को याद करने की उन्हीं के गीतों से। कहां? यहीं आकाशवाणी के FM गोल्ड पर, प्रोग्राम हर सिंगार में।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

रफ़ी साहब की बात करूं तो रफ़ी साहब का जो साथ रहा पंचम के साथ वो शुरू हुआ 1961 के करीब और पंचम दा का ये सफ़र खूबसूरत गीतों की लड़ी के तौर पर याद किया जा सकता है और ये साथ जब ख़ास तौर पर रफ़ी साहब का रहा, रफ़ी साहब के बनाए हुए या तैयार किए हुए उनके गीतों को जब पंचम का साथ मिला तो हम कह सकते हैं कि उन गीतों में एहसास, जज्बात और प्यार मौजूद रहा। फिर चाहे आप इस गीत को ही उठा लीजिए, रिलीज तो हुआ था ये 1968 में, लेकिन आज तक यानी 2026 तक ये गीत उतना ही खूबसूरत, उतना ही तरोताजा महसूस होता है।

लता मंगेशकर की बात करूं तो लता जी के सामने तो पंचम शॉर्ट्स में घूमने वाला एक नॉटी लड़का था, लेकिन इसी शरारती लड़के ने लता जी के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीत तैयार किए। दादा बर्मन यानी कि आड़ी बर्मन साहब के पिता, उनका और लता जी का जैसा कि हम जानते हैं एक ठीक ठाक समय तक थोड़ा सा मनमुटाव रहा, जहां पर के गीत उन दोनों ने साथ मिलकर कंपोज नहीं किए, गाए नहीं, और ये जो बर्फ थी वो टूटी पंचम की वजह से। छोटे नवाब वो फिल्म रही जहां पर पहली दफा आड़ी बर्मन और लता जी ने साथ मिलकर काम किया, और उसके बाद तो बस ऐसा लगता है कि एक से बढ़कर एक गीत तैयार होने बस अभी शुरू हुए थे।

छुटपन वाले पंचम दा के लिए पंचम बदमाशी छोड़ दो लिखने वाली लता मंगेशकर जब पहली बार छोटे नवाब फिल्म के लिए गाती हैं तो वो कमाल का गाना बनकर उभरता है, निखर जाता है और जो गाना हमें अभी सुनने को मिला। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। 1961 में ये फिल्म आई थी। ऊपर से इस गाने की जो खूबसूरती है वो है इसमें घुला हुआ राग, राग मालकुंजी। प्रोग्राम का अगला गीत मैं पहुंचा रहा हूं आप तक पड़ोसन फिल्म से। 1968 की ये फिल्म है, मेरे पसंदीदा गीतों में से एक।

पंचमदा को गुजरे हुए तकरीबन 32 साल हो चुके हैं, लेकिन देखिए ना, पंचम कभी गुजरते नहीं, वो रहते हैं मौजूद अपने संगीत में। फिलहाल थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन बने रहिएगा आकाशवाणी के साथ, यानी FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं।

0: take on England in Group L match at East Rutherford in US tonight. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in US. And that is the end of this news bulletin.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:12 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत, आपके साथ मैं विकास। नमस्कार।

इस गीत को सुनकर ऐसा लगता है कि हम किसी न किसी पहाड़ी पर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फोक सॉन्ग हमारे सामने जैसे अलग अलग रंगों में सामने आ रहा है। जैसे लगता है कि रफी साहब दूर किसी पहाड़ी से अपनी आवाज हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम जैसे कि मैंने बताया कि शुरू हो चुका है, गीत मेरे मनमीत और आपके साथ मैं विकास हूं। और फिल्म जो अभी आप तक पहुंची यानी कि जो गीत था वो था प्यार का मौसम। इस फिल्म से 1969 की ये फिल्म थी, मजरू सुल्तानपुरी का ये गीत लिखा हुआ और रफी साहब और लता जी की आवाज थी। अगला गीत पहुंचता है आप तक 1989 की फिल्म से, फिल्म का नाम है परिंदा और प्यारा सा गीत है आशा जी की आवाज में और साथ निभा रहे हैं उनका सुरेश वाडकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:35 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत। आपके साथ इस सफर में मैं विकास। पंचमदा की कंपोजिशंस आप तक पहुंच रही हैं और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे और पंचमदा की कंपोजिशंस का सबसे ज्यादा अगर फायदा देखा जाए तो वो आशा जी को हुआ। हो सकता है वो इसलिए भी क्योंकि आशा जी उनके स्टाइल के लिए सही आवाज रही, लेकिन लता जी एक जगह पर कहती हैं कि पंचमदा ने उन्हें वो गाने दिए जो वो उनके लिए सही समझते थे। और उन्होंने एक जगह उनसे कहा कि जो गाने मैं आपको ध्यान में रखकर कंपोज करता हूं वो गीत मैं कभी भी आशा जी को आगे भेजता नहीं, और वाइस वर्सा, यानी ठीक इसका उल्टा, जब मैं आशा जी के लिए कंपोज करता हूं तो वो गीत मैं आपको नहीं देता। और इस तरह लता जी के पास रहना बीती जाए और बीती ना बिताए जैसे गीत गए।

पंचम दा को वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था ये संगीत और उन्होंने अपने संगीत में उसे भरपूर जगह दी, एक्सपेरिमेंट किया, कई देशों को जब जब घूमा, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लाए और उन्हें अपने गानों में आजमाया भी। लेकिन तबला और सरोद बढ़िया तरीके से बजाने वाले आरडी बर्मन ने कई सारी शास्त्रीय धुनों को भी तैयार किया। अगर मैं कुछ गीतों की लिस्ट यहाँ शेयर करूं, आपको बताऊं, तो शायद समय निकल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गीत मैं आपके लिए बता ही देता हूं। जैसे मेरे नैना, सावन बाधो, राग शिवरंजनी, राग तोड़ी का रहना बीती जाए, और यमन कल्याण में बीती ना बिताई रहना। ये कुछ ऐसे गीत जो आज भी हम पसंद करते हैं, सुनते हैं, और जब जब रेडियो पर या अपने घरों में हम इन्हें बजाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप उन गानों को गुनगुनाना न शुरू कर दें। फिलहाल घड़ी बता रही है कि विकास, अब तुम्हारे स्टूडियो छोड़ने का वक्त आ चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केन्द्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इस पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थीं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही थीं। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को रश्मि कुकरेति का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम जो कहानी आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंजलि और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। अंजलि बहुत कुछ करना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसकी जिंदगी एक जगह स्थिर होकर रह जाती है। वहां होती है निराशा, वहां होता है गहन अंधकार, लेकिन उस अंधकार में हाथ थाम कर जो उजाले की ओर लेकर चलता है वो होता है सच्चा दोस्त। कुछ ऐसी ही रूपरेखा है इस कहानी की। आइए सुनते हैं पानी पर लिखी कहानी अंजलि।
1: साहिल दौड़ता भागता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अंजलि ने उससे कोई मदद चाही है और वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अंजलि परेशान हो जाएगी, ऐसा न हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भारतीय रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से खींच नहीं हुई बल्कि सुकून की सांस ली उसने। एक नींबू पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। अंजलि उसकी छोटी बहन साक्षी की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर साक्षी के साथ अंजलि भी घर पर आया जाया करती। साक्षी जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अंजलि भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने के लिए जोर से साक्षी को किसी न किसी बात पर डांट देता। साक्षी सहम जाती और अंजलि जल्दी से अपने घर चली जाती। जब साहिल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अंजलि का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने साक्षी को समझाया।
2: सारा दिन खीखी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी?
3: हाँ भैया।
2: इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती ना करो। अरे उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है, दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है।
3: अंजलि बहुत अच्छी लड़की है भैया, घमंड तो जरा छू भी नहीं गया है। बहुत घुलमिल कर रहती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब थोड़े ही होते हैं भैया।
2: जिससे चाहो दोस्ती रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीर सहेली की देखा देखी कोई ऊटपटांग मांग न कर बैठना।
3: ठीक है।
1: अब साक्षी उसके सामने कभी अंजलि को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अंजलि को देखा नहीं और वो भूल गया। साक्षी कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। 2 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और साहिल उसे चिढ़ाए जा रहा था।
2: ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी फैशन परेड में? कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कमाल है, कैसा कॉलेज है तुम्हारा?
3: भैया परेशान मत करो।
1: माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा, तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की नीली साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली,
4: साक्षी है?
2: साक्षी।
1: और दरवाजा खुला छोड़ अंदर चला गया पर बरामदे से देखता रहा।
2: ये कौन सी सहेली है साक्षी की, इसे तो कभी नहीं देखा।
1: साक्षी साड़ी संभालती हुए कमरे में आई और चीख पड़ी,
3: अंजलि हाय, तो कितनी सुंदर लग रही है।
2: तो ये अंजलि थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो 2 पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई?
1: दोनों सहेलियां घर से निकल गईं और वो खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अंजलि ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में साक्षी से पूछ भी लिया,
2: वो अंजलि थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अंजलि से अभी दोस्ती है?
3: हाँ, लो हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी, हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं।
2: ओह नहीं नहीं, वो कभी देखा नहीं ना घर पर।
3: वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर पर होते हो तो मैं अंजलि को लाती ही नहीं। और वैसे भी तुम घर में रहते ही कितनी देर हो, कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज। पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? बताओ।
2: नहीं नहीं, मतलब वो तो यूं ही पहचाना नहीं ना, इसलिए।
1: पर अब वो अक्सर साक्षी से अंजलि के बारे में पूछ लेता। साक्षी भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती।
3: अच्छा भैया, वो तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं क्या? अंजलि के लिए ला दो ना प्लीज।
2: ठीक है, मैं ला दूंगा।
1: या कभी कभी अमुक राइटर की कोई किताब लाने को कहती, वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे साक्षी भी समझ गई थी अंजलि के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जब अंजलि जब भी उसके सामने पड़ती, घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था। पर साक्षी बताती कि अंजलि भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है।

0: उसे पता था अंजलि और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब साक्षी ने ही बात शुरू की।
1: भैया, अंजलि की शादी की बात चल रही है। तुम भी तो कितनी अच्छी जॉब में हो। अंजलि बहुत बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अंजलि हमारी भाभी बन जाए।
2: साक्षी, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो अभी 4-5 साल तक शादी की बात सोच भी नहीं सकता।
1: क्यों भला?
2: अरे, बहुत से काम निपटाने हैं। घर की मरम्मत करवानी है, रिनोवेट ही करवाऊंगा मैं तो पूरा। और हाँ, गाड़ी लेनी है। मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, और सबसे बड़ी बात, तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है साक्षी।
1: पर तब तक अंजलि के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिजूल की बातें सोचना छोड़ते हैं। वैसे भी अंजलि को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए।
1: भैया, अंजलि वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी।
2: बेकार की बातें मत कर। अच्छा, चल जा, जा चाय बना के ला, चल।
1: क्या भैया, आप कभी भी मेरी बातें सीरियसली नहीं लेते, ठीक है?
0: अंजलि उसे अच्छी लगती थी। माँ और साक्षी से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी आवारा गर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अंजलि कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। साहिल को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके बालों की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता।
2: इतना भी क्या घबराना? अरे, इतने दिनों में भी उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ उसे? ठीक है।
0: एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया।
2: अब वो नोट्स साक्षी ने दिए थे, ठीक थे ना?
3: हाँ, अच्छे थे।
2: ठीक है। और वो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई किताब चाहिए तो बताने में संकोच नहीं करना।
3: जी, जरूर।
0: फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फायदा जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर भला क्यों कदम बढ़ाना।

उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अंजलि को खूब अच्छा घर और वर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। कुछ महीनों बाद सुना कि अंजलि की शादी तय हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अंजलि उसी रास्ते से गुजर रही थी। अंजलि ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अंजलि नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अंजलि की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। साक्षी की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब दो दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। अंजलि की विदाई के बाद ही लौटा। अंजलि का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अंजलि की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अंजलि के रंग बिरंगे कपड़े और दुपट्टे वगैरह सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था, उसके मन के एक कोने जैसा। साक्षी से अंजलि की शादी की बातें, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी के किस्से सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वो मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी अंजलि के लिए कि वो हमेशा खुश रहे।

0: दो साल बाद साक्षी की भी शादी हो गई। साक्षी की शादी में अंजलि अपने एक साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा साक्षी कब से उसके पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो। रोज ही माँ कोई न कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती तो वो बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि साक्षी के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई साक्षी कह रही थी,
1: भैया जानते हो अंजलि के साथ क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: उसके हस्बैंड।
2: क्या हुआ उसके हस्बैंड को?
1: He's no more.
2: Oh no.
1: हाँ भैया, अंजलि तो पत्थर हो गई है। आंसू भी नहीं बहते उसके, सारा दिन छत घूरती रहती है।
2: मुझे लगता है एक बार मुझे जाना चाहिए। अंजलि के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हालचाल जरूर पूछते हैं। उनके इस दुख के समय में मुझे उनसे मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए, कल ही चलना तुम मेरे साथ।
0: अंजलि और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी अंजलि ये पहाड़ सा दुख? माँ को जैसी ही खबर मिली वे अंजलि के घर चली गईं। अंजलि को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए थे। साक्षी भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही अंजलि के घर चली जाती, रोज रात में रुंधे स्वर में अंजलि की दशा का वर्णन करती। ये सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक हो जाता। एक नज़र अंजलि को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर दो पल उसके साथ बैठेगा तो सही, अंजलि को इतना तो जता दे कि उसके दुख से वो भी कितना दुखी है। दूसरे दिन साक्षी के साथ अंजलि के घर गया, जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। अंजलि की माँ बाहर वाले कमरे में ही अंजलि के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। साक्षी अंदर चली गई, वो अंजलि की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उठी ये जानने के लिए कि अंजलि ने कुछ खाया है या नहीं। साक्षी का बड़ा सहारा है, अनय और अंजलि को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, कहती हुई उसे अंदर बुलाकर ले गई। अंजलि एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। साक्षी पलंग पर अनय को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अंजलि ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती ही रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अंजलि ने। अंजलि की माँ ने साक्षी से पूछा, अंजलि ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर है। अंजलि की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। साहिल अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। अंजलि खिड़की से बाहर देखती रही। अनय ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद साक्षी भी चली गई, पर वो सुबह शाम अंजलि को फोन करती और उसे भी अंजलि का हाल चाल पता चलता रहता। साहिल ने साक्षी से ही अंजलि को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर साक्षी का कहना था अंजलि बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन अंजलि से वो मिलने गया।
2: अंजलि तुम अहम कर लो, देखो घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी बहलेगा।
3: नहीं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और पापा भी कहते हैं अभी रहने दो।
2: अरे लेकिन अगले महीने सेशन शुरू होने वाले हैं, अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। जरा सोचो अंजलि, तब तक क्या करोगी, ऐसे ही दुख में डूबी रहोगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे।
3: देखो साहिल, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इतना है मेरे पास कि आने के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
2: नौकरी के लिए कह कौन रहा है।

0: अरे वो तो बाद की बात है, अभी एडमिशन तो ले लो। अच्छा फिर भले तुम यूनिवर्सिटी मत जाना,
1: मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना।
0: फिर क्या करोगी, यूं ही उदास बैठी रहोगी? अरे तुम अनहे की तरफ देखो, तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तुम्हारी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखो बचपना छोड़ो, मैं एमए का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूं, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। देखो तुम समझ नहीं रही हो, जैसे मैं साक्षी को डांट सकता हूं ना, वैसे तुम्हें भी। चलो चलो अभी फॉर्म भरो।
2: ठीक है। शायद अंजलि ने गुस्से में कुछ कहने के लिए सिर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अनय को देख चुप हो गई और फॉर्म भरने लगी। साहिल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने साक्षी को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन साक्षी ही जबरदस्ती अंजलि को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अंजलि सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी। एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार अंजलि के घर गया भी और पूछा,
0: अंजलि पढ़ाई ठीक चल रही है ना? देखो कोई जरूरत हो तो जरूर बताना।
3: हाँ हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी।
0: कैसी हो?
3: मैं ठीक हूँ, आने चलो देर हो रही है।

0: है।
1: समझ नहीं पाया, उसकी नाराजगी इस बात पर थी कि उसने अब तक उससे बात नहीं की थी या इस बात पर कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है।

अंजलि ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से एमए पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे ये सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अंजलि आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अब भी अक्सर साहिल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अंजलि को यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। साक्षी समझती थी अब वो कुछ नहीं कहती। इस बीच साहिल को दूसरे शहर में एक कंपनी में

0: बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और उसे दूर जाना पड़ा। अनय के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और अंजलि उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अंजलि को एक नजर भी नहीं देख पाया, मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, या तो किसी बहाने से एक नजर तो देख लेता। अंजलि की मनःस्थिति समझता था, इसलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। साक्षी के जरिए अंजलि की खबर मिलती रहती थी। अंजलि की पीएचडी पूरी हो गई और अब एक कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। कभी अपने शहर जाता और अंजलि पर नजर पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हालचाल पूछ लेता। अब अंजलि की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वो अंजलि को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले अंजलि को अपने दुख से उबरने देना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अंजलि को ये न लगे कि वो उसे कोई सहारा देने के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और फिर जैसे एक राह मिल गई, साक्षी का फोन आया।
1: भैया।
2: हाँ?
1: तुम्हारे शहर के कॉलेज में ही एक सेमिनार है जिसमें अंजलि को भाग लेना है।
2: ओ।
1: हाँ, और ठहरने का सारा इंतजाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है। नया शहर है और अंजलि ने कभी अकेले सफर भी तो नहीं किया, वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना प्लीज।
2: वो तो मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन क्या ये सब अंजलि ने तुम्हें कहा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, अंजलि ने ही फोन पर मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूँ।
2: ओह, तब तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा।
1: वो तो मुझे मालूम है भैया।
0: उसे रात भर नींद नहीं आई, ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब स्टेशन पर था। क्या पता अंजलि कैसे बात करेगी, अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों। पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही साक्षी से कहा है तो वो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ट्रेन रुकी, वो कोच के सामने ही खड़ा था। अंजलि गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी, उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी।
2: वेलकम वेलकम, बैग उठा लूं? अरे डर लग रहा है, कहीं तुम नाराज होकर ये ना कहो कि मैं तुम्हारी हेल्प।
3: साहिल, नाराज होना होता तो तुम्हें इन्फॉर्म करती।
2: तो चलें।
3: इसीलिए तो आई हूँ, बताओ कहाँ चलना है।

साहिल ने बैग हाथों में लिया, अंजलि सहज रूप से उसके साथ चल दी। अजनबी पन की दीवार गिर चुकी थी, दीवार के पार उसे दूर तक जाते एक खुशनुमा रास्ते पर दो जोड़ी पैर चलते नजर आ रहे थे। उनके बीच कोमल सा कुछ उग रहा था।

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 31 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार 1:10 पर गीत सुहाने मेरे यानी राखी के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति

0: डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए एक महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दिल्ली से TET प्रश्न पत्र लाए थे और कथित तौर पर उन्हें लगभग 1.5 करोड़ के सौदे में बेचने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini.

डिटेक्टिव फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया मुकुल रॉय ने। जब मन शांत हो, रात सुहानी हो या सफर लंबा हो, तभी गीत दिल के सबसे करीब आ जाते हैं। इनकी सादगी, मधुर बोल और दिल को छू लेने वाले सुर आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने बरसों पहले थे।

0: बारिश फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और चितालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चितालकर रामचंद्र ने। पुराने गीत सिर्फ धुने नहीं होते, वो यादों का एक खूबसूरत कारवा होते हैं। हर गीत अपने साथ किसी बीते पल की खुशबू, किसी मुस्कान की गर्माहट और किसी अनकही भावना की मिठास अपने साथ लेकर आता है।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन कुछ पल सुकून तलाशता है तब यही मधुर नगमे हमारा हाथ थाम लेते हैं। इनकी हर पंक्ति हर सुर और हर एहसास दिल के किसी न किसी कोने को छू ही जाता है।

माया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला गीत था। इसकी हर पंक्ति में जज्बातों की गहराई थी और हर सुर में एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर गई। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। ये भी उन्हीं गीतों में से था जिसने बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दिया और मन को भावनाओं से भर दिया।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फंटूश फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि टूटे हुए मन को दिलासा देने वाली एक सच्ची आवाज है। इस गीत के शब्द जैसे जीवन की कठिन घड़ियों में उम्मीद का हाथ थाम लेते हैं। जब मन उदास हो, रास्ते धुंधले लगने लगे और दिल भारी हो जाए तभी गीत बड़े प्यार से कहता है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।

फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। सदाबहार गीत समय की सीमाओं से बंधे नहीं होते, बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो वही अपनापन, वही सुकून और वही एहसास फिर से ताजा हो उठते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ गीत हमेशा दिल के सबसे करीब बने रहते हैं।

अदा फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। बहजाद लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज में एक ऐसी नरमी, सादगी और गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। उनकी गायकी में शोर नहीं बल्कि एहसासों की खामोश गूंज सुनाई देती है। जब वो किसी दर्द भरे गीत को अपनी मखमली आवाज में गाते हैं तो हर शब्द मानो दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: जब प्यार किसी से होता है फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केन्द्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्तान जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमरीका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both the nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Mark.

0: वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो, ये गाओ,

भ्रष्टाचार फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रात सुरमई है, चांदनी की हल्की हल्की चादर धरती पर बिछी है और हर तरफ एक मीठी सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसी रात में दिल अनायास ही किसी अपने को याद करने लगता है। कुछ अनकही जज्बात, कुछ मीठी यादें और कुछ पुराने गीत सब मिलकर इस रात को और भी हसीन बना देते हैं। सच्ची तो है, सुरमई रातें अक्सर दिल की सबसे खूबसूरत कहानियां अपने साथ लेकर आती हैं।

बीबी हो तो ऐसी फिल्म से आपने गाना सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब दिल किसी पर ठहर जाता है तो लाखों चेहरों की भीड़ में भी वही एक चेहरा सबसे अलग, सबसे अपना और सबसे खास नजर आता है। शायद यही मोहब्बत की सबसे प्यारी पहचान है।

तेरी मेहरबानियां फिल्म से आपने गाना सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, माफ कीजिएगा, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कहते हैं प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, हो जाता है। यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये न किसी वजह का मोहताज होता है, न किसी हिसाब किताब का। कब कोई अनजाना चेहरा अपना सा लगने लगे, कब किसी की मुस्कान दिल में घर कर जाए, इसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कहा गया है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां दो दिलों के बीच की दूरियां मिट जाती हैं, फिर धड़कनों की आवाज भी अपनी और पराई नहीं लगती।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 27 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले

0: प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किष्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्पिरर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani today at 11 a.m. in the morning.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

इशारों इशारों में ये हुनर अपने आप ही आ जाता है जब मोहब्बत हो जाती है। और जनाब, रात जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही तेरी यादें करीब आती जाती हैं। दिन की भीड़ में तो हम खुद को संभाल लेते हैं, मगर रात की खामोशी हर बार तेरा ही नाम पुकारती है। काश ये फासले भी रात की तरह गुजर जाते और सुबह तेरे साथ होती, तेरे नाम होती। और ऐसे में अगर वो शक्ल, वो मासूम सी शक्ल याद आ जाए तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। सच्चा प्यार सिर्फ किसी का हाथ थामने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, खुशियों और मुश्किलों का साथ निभाने का नाम है। जब रिश्ते भरोसे, सम्मान और अपनापन से बनते हैं तो जिंदगी का हर सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो प्यार बांटते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे खूब

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, निकले हैं दिल से मेरे यूं अरमान देखना। भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, वो भी है मेरे हाल से अनजान देखना, निकले हैं दिल से यूं मेरे अरमान देखना।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में कल आज और कल फिल्म का ये गीत। चलिए सुनते हैं हमराही प्रोग्राम में सुरभि के साथ।

मेरे गीतों मेरे गजलों को रवानी दे दे, मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे। मुद्दतों तरसा हूं मैं तुझसे मोहब्बत के लिए, ख्वाब में आके मुझे यादें वो पुरानी दे दे। तेरी राहों में बिछा रखी हैं पलके मैंने, मेरी आंखों को मसर्रत का तू पानी दे दे। मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे।

और इसी गाने के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी

0: कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि तीन लोग अब भी लापता है। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2,000 से ज्यादा चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई जिससे चारधाम क्षेत्र में सुरक्षित भरोसेमंद और बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मौसम विभाग ने आज असम मेघालय पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों में आंध्र प्रदेश राजस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with a special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani today at 11 a.m. in the morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार। जिंदगी का हर नया कदम अपने साथ नई उम्मीदें, नई खुशियां लेकर आता है। हर शुरुआत खास होती है क्योंकि वहीं हमें नए अनुभव, नई मंजिलों तक पहुंचाने का रास्ता मिलता है। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए, दिल खोलकर आगे बढ़ते रहिए और हर पल को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि खूबसूरत सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।

ये दुनिया उसी की होती है जो दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट और इरादों में सच्चाई रखता है। दौलत और शोहरत से ज्यादा कीमती होते हैं अच्छे रिश्ते और नेक कर्म। इसीलिए हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक इंसान की बड़ी पहचान है। दुख कितना भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दुख को आप धीरे धीरे चीजों के साथ बदल कर खुशियां पा सकते हैं। तो चलिए गीतों का सहारा भी लेते हैं, जब दिल उदास हो, मन उदास हो, सुनते हैं ये गीत रफी साहब की आवाज में। फिल्म है कश्मीर की गली।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए। अपनी आंखों को रखो पुष्ट की जानिब अपने, जो करे वार उसी वक्त दबोचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए।

अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। पास अपने जो नया कोई फसून साज आया, हो रहे उसके हमें याद तेरा नाज आया, याद तेरा नाज आया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ अरुणिमा। आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। याद में तेरी कल अश्क बहाना होगा, कल तेरा शहर भी छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले।

और देखिए चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ ही चुके हैं। अरुणिमा धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ है, तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हेमंता की आवाज में, फिल्म है 16 साल। लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। आज कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। चलिए सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत हेमंता की आवाज में।

और इसी गाने के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। 5:10 पर भोर सुहानी में एक बार फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें, ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे।

0: मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयोर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermony, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team, SIT, to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting 3 alleged members of the racket. Following the incident, the Maharashtra State Council of Examination postponed today's TET examination. A revised date for the test will be announced later. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has urged Indian companies to strengthen engagement with their UK counterparts to translate emerging opportunities under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA into sustained business growth. The minister said this while leading the India-UK Partners in Progress business plenary in London. The US military said it struck multiple targets in Iran at the direction of

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार। सुबह का समय हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज से पूरे उत्साह के साथ उठिए और आज के दिन को अपनाइए। जैसे हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, वैसे ही जिंदगी भी हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर देती है।

भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जिंदगी में सुख और दुख दो मेहमान की तरह हैं, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता। हर परिस्थिति में जो मुस्कुराना सीख लेता है, आगे बढ़ना सीख लेता है, वही इंसान जीवन का असली विजेता होता है। तो हर पल को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर पल, हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाता है और आपके दिल का आलम भी ठीक रखता है।

सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। जिंदगी के रास्तों में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वही चुनौतियां आपको मजबूत बनाएंगी। इसीलिए हमें और आपको सभी को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और हार तो कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लगातार कोशिश ही एक दिन हम सबकी, आपकी, मेरी, सबकी एक बहुत बड़ी सफलता बनकर सामने आती है।